फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉक्टर शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

चिंतन महर्षि वे महर्षि वेदव्यास का कथन है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थ है, मीठे या प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इसलिए मनुष्य को सदैव मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी या बोलने में क्या दरिद्रता, क्या किफायत करना। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 303। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनेगा श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 6। कलाकार है गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7:00 भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राकेश रोशन पर। सुनिएगा सुबह 9:30 और रात 9:30 पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत सुनेगा गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति तेज श्री कामले की। 11:00 विविधा के अंतर्गत केंद्रित होगा ये कार्यक्रम मुकरी आदेश श्रीवास्तव और भूपेन हजारिका पर। 12:00 यादों की महफिल, 1:00 सुरीला सफर, 2:00 त्रिवेणी। पर 2:30 पर सदाबहार नगमे प्रोग्राम, 3:00 मन चाहे गीत, 3:30 पर नाट्य तरंग। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिए आंख की किरकिरी भाग 2, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण, रूपांतरकार और निर्देशक हैं नंदलाल शर्मा। शाम 4:00 पिटारा में उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुति तेज श्री कामले की। शाम 5:00 छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। फौजी साथियों का कार्यक्रम विशेष जयमाला होगा शाम 7:00 से। महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा सुनिएगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत, प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। 7:45 पर साज और आवाज हवा महल में, रात 8:00 सुनिए प्रहसन मलाई वाला दही, मूल कन्नड़ लेखक M. गोविंद, निर्देशन पुरुषोत्तम दारव्हेकर का। 8:15 पर चित्रलोक, 9:00 आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राकेश रोशन पर। रात 10:00 छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, 11:00 सुने विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 303।

लंका में श्री राम के वानरदीज सेनानियों ने उत्पात मचा दिया है। मंदोदरी की अपने पति रावण से प्रार्थना है कि वो विषय भोग छोड़कर उन प्रभु की शरण में चला जाए, कौशलाधीश की दया उसे प्राप्त हो जाएगी।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आज आपने सुना भाग 303।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना इस श्रृंखला में आज की कड़ी में डॉक्टर शकुंतला भरणे जी से हम पूछते हैं कि किराना घराने की आज किस विशेषता की बात होने वाली है, ये जो गायकी है इसका निरालापन किस अंदाज में आप आज बताने वाली हैं?
2: इस किराना घराने की जो खासियत है
1: जी,
2: ये
1: जी।
2: सब उनके जो गुण है इंटरकनेक्टेड है। आज हम सोचेंगे मिंड का सुंदर प्रयोग इस

0: सागा, ऐसा जो हम
1: एक सुर से दूसरे सुर पर जाते हुए बिना रुके जो ये निरंतरता बनी रहती
0: है। निरंतरता उसकी जो मेलोडी जो है
1: उसे मिंड कहते हैं। वाह,
0: इस घराने की गायकी में एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना टूटे अत्यंत सहज और मधुर ढंग से पहुंचने की एक शैली को विशेष महत्व दिया जाता है। स्वरों का कोमल और प्रवाहपूर्ण मेल ये भी इसकी खासियत है। मीन के माध्यम से स्वर आपस में इस प्रकार जुड़ते हैं कि गायन में निरंतरता और मधुरता बनी रहती है। यही किराना घराने की गायकी को अत्यंत और आकर्षक बनाता है। राग का भाव अधिक प्रभावी बनता है। मीन के प्रयोग से राग के सूक्ष्म भाव और स्वर सौंदर्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। श्रुति का सुंदर प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं मिंड के द्वारा। स्वरों के बीच जो स्थित सूक्ष्म श्रुतियों का भी प्रभावी प्रयोग हमारे घराने में किया जाता है। इसमें गायकी में नजाकतता और एक परिष्कार आता है। विलंबित लय में मिंड का विशेष प्रभाव जो होता है कि किराना घराने में विलंबित लय होने के कारण कलाकार को मिंड का विस्तार पूर्वक प्रयोग करने का अवसर मिलता है, इसलिए वो बहुत ही नजाकतदार लगती है। इससे प्रत्येक स्वर का सौंदर्य पूर्ण रूप से उभर कर सामने आ जाता है। सुंदर मिंड प्रस्तुत करने के लिए स्वर पर गहरा एकदम डीप ऐसा नियंत्रण, श्वास का संतुलन और नियमित रियाज तो हमें यहाँ आवश्यक है। इसलिए मिंड इस घराने की उच्च कोटि की स्वर साधना का प्रमाण मानी जाती है।
1: जी,
0: मेरे गुरुजी
1: जी
0: विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल मिंड गायकी तो उनकी खासियत थी।
1: अच्छा,
0: जिन रागों में मिंड है वही राग वो गाती थी ज्यादा। शुद्ध कल्याण, बागेश्री, दरबारी कानड़ा,
1: अच्छा
0: रागेश्री, ऐसे राग आज हम उन्हीं का गाया हुआ थोड़ा सा बागेश्री सुनेंगे। उनकी आवाज पहले बहुत पतली थी
1: जी।
0: और वो सब गाती थी, भावगीत गाती थी, गजल गाती थी, ठुमरी गाती थी।
1: अच्छा,
0: उसके बाद टॉन्सिल्स हो गए
1: जी,
0: और टॉन्सिल्स के वजह से उसका जो ट्रीटमेंट हुआ वो बोल नहीं पाती थी।
1: ओ।
0: बाद में उनकी जो आवाज हो गई वो एकदम थोड़ी पुरुषी
1: अच्छा
0: आवाज हो गई, वजन खरज अच्छा, वाली अच्छा, आवाज अच्छा। और वो गाना जो उनका हो गया वो और भी अच्छा हो गया। अच्छा। लोगों को पसंद हुआ और क्लासिकल ही उनका ज्यादा लोगों को पसंद हो गया और उसने सोचा कि अभी तो लाइट गाने में मतलब नहीं है।
1: अच्छा।
0: इसीलिए वो क्लासिकल ही गाती थी।

0: बागेश्वरी राग में बहुत सारे गाने हैं
1: जी,
0: बहुत ही प्यारा राग है, लेकिन गंगूबाई जी बागेश्वरी में पंचम नहीं लगाती थी, बाकी सब लोग पंचम लगाते, और पंचम का जो सुरीलापन और ये जो नजाकत है, ये पंचम बिना लगाए भी उनकी जो गायकी है तो बहुत ही अच्छा दिखता था उन्हें।
1: तो ये किस तरह का प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है कि आरो आरो के जो स्वर है किसी राग के चल में, उसमें से कोई एक स्वर न लगाए बिना भी उसको राग का जो है प्रस्तुतिकरण हो सकता है?
0: पंचम का महत्व बागेश्वरी में नहीं है वैसा भी।
1: अच्छा,
0: पंचम का महत्व मा पधा मा गा सारे सा ऐसा होता है
1: जी,
0: और ये राग का सौंदर्य बढ़ाता है इसीलिए लेते हैं, लेकिन पंचम का इतना इम्पोर्टेंस मध्यम लगा के ही वो बागेश्वरी ज्यादा गाते हैं।
1: अच्छा,
0: और वो बोलती थी पंचम का कुछ काम ही नहीं, इसीलिए मैं पंचम नहीं लेती और ये जगह नहीं लेती थी वो। ऐसा है।
1: तो क्यों ना इस राग पर आधारित एक गीत सुन लिया जाए।
0: बहुत ही गाने हैं, लेकिन मेरा बहुत ही प्यारा गाना है वो अनारकली फिल्म का, जाग दर्द इश्क जाग।
1: बहुत सुंदर गीत है, आइए सुनो।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा वित्त कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों द्वारा बनाई गई कंपनियां भी विश्व का नेतृत्व कर सकती हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनी को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: श्री शाह 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर विदेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वीडियो अप्रैल 2024 का है जब दुबई हवाई अड्डे पर तेज बारिश हुई थी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर में सीतापुरा स्थित आईएम डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट पीजी की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। पिछले महीने की 23 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्यों को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन
1: विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.8%
2: क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: इंदौर में कल मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर इंदौर मेट्रो ट्रेन को रवाना किया। मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि इंदौर मेट्रो रोजाना सुबह 9 से शाम 7 बजे तक चलेगी। इंदौर मेट्रो नागरिकों को हर 15 मिनट के अंतराल पर मिलेगी और रोजाना 70 से

0: अधिक फेरे लगाएगी। मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मेट्रो के दूसरे चरण के शुरू होने से आवागमन और सुगम होगा तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश के अन्य शहरों में भी धीरे धीरे मेट्रो का विस्तार होगा।
1: इंदौर के इतिहास का एक ऐसा दिन बन गया कि जब मेट्रो इस रूट पर चली है और इसका जनता को जितना लाभ मिलने वाला है ये अच्छे याद रहेगा। एक बड़ी जनरेशन ऐसी है जो मेट्रो को सवारी के नाते से लाभ उठाएगी, उनका जीवन जो है उसमें ईज ऑफ लिविंग के नाते से सरल बनेगा, उनका समय बचेगा, पंक्चुअलिटी आएगी। अभी आने वाले 3 साल के बाद ये मेट्रो जो है जो अंडरग्राउंड मेट्रो के साथ जब जुड़ जाएगी तो जो शहर के पुराने बाजार है उनके साथ जुड़ेगा, रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ेगी, मेट्रो जो है एयरपोर्ट के साथ जुड़ जाएगा, इंदौर शहर के अधिकांश लोगों को इसकी अप्रोच मिलेगी।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मेट्रो का यह सुगम सफर कई कारणों से महत्वपूर्ण होगा जिससे यातायात में भी मदद होगी।
2: मनोहरलाल खट्टर साहब ने बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश में इंदौर का दूसरे चरण की परियोजना का प्रारंभ होना ये इंदौर के लिए नहीं प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारे आवागमन की दृष्टि से मेट्रो का सुगम सफर कई कारणों से बहुत महत्व करेगा। जब आबादी के बड़े यातायात के साधन में ये मदद होगी और आधुनिक तरीके से भी हमारे लिए गौरव की बात है। मेट्रो अब हमारे लिए ये रूटीन का सफर होने जा रही है।
0: गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश सहित 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 6 अप्रैल 2016 को गुजरात हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। बाद में 15 मार्च 2018 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और अनुसंधान क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 6 शिक्षकों और शिक्षाविदों को भी सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में डॉ. अर्चना शुक्ला, शैलेंद्र प्रताप सिंह, संगीता यादव, प्रोफेसर सौरभ दत्ता, रीना गुप्ता और ज्योति बाला राठौर शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिक्षकों ने अपने नवाचारों, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित की है। वहीं धार में भी 208 सेवानिवृत्त शिक्षकों और 13 विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के मंडीदीप और ओबेदुल्लागंज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सुबह 10:30 बजे सिविल अस्पताल मंडीदीप पहुंचकर पौधरोपण सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 1 बजे ओबेदुल्लागंज के शासकीय सांदीपनी स्कूल पहुंचकर लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम तथा मेधावी छात्रवृत्ति कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए के मैच में भारत ने पाकिस्तान को कल 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए मात्र 56 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बाएं हाथ के स्पिनर श्रीचरणी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। वहीं भारत ने महिला एशिया कप के ग्रुप ए के इस मैच में पाकिस्तान को 18 ओवर 1 गेंद में सिर्फ 55 रन पर ही समेट दिया था। T20 अंतर्राष्ट्रीय के इतिहास में पाकिस्तान का यह सबसे कम स्कोर था। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कल पक्षी भ्रमण एवं गिद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को गिद्धों की पहचान, उनकी जीवन शैली, भोजन, आवास तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में पक्षी विशेषज्ञ डॉ. संगीता राजगीर ने बताया कि गिद्ध प्रकृति के महत्वपूर्ण सफाईकर्मी हैं। वे मृत पशुओं के अवशेषों को शीघ्रता से समाप्त कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्योपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। श्योपुर का आपदा डैम अपनी 45 फीट की भराव क्षमता के बाद ओवरफ्लो हो रहा है। वहीं विजयपुर में बारिश से क्वारी नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। नदी पर बना पुल डूब जाने से विजयपुर टेटरा मार्ग बंद हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के गुना, श्योपुर और शिवपुरी सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। सतना के चित्रकूट में हाल में आई बाढ़ के बाद अब मुख्य सड़कों और प्रभावित इलाकों में जमा गाद एवं मलबा हटाने के बाद आवागमन बहाल हो गया है। जिला प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई, पेयजल तथा स्वास्थ्य सुविधा और भोजन तथा आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने में जुटी हुई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार और उनके अंगों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में लिप्त कटनी जिले के शिकारू शेरू पारदी और शेरू सिंह को शहडोल जिले के ब्योहारी से कल गिरफ्तार किया। गोगा नवमी के अवसर पर कल छड़िया निकालने की 128 वर्षों की परंपरा के तहत खंडवा और आगरमालवा में वाल्मीकि समाज द्वारा चल समारोह निकाला गया। झाबुआ के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में कल जल और वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के संदर्भ में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तथा प्रभावित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर रीवा कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। शिवपुरी में मलेरिया विभाग और न्यायपालिका की संयुक्त टीमों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग की जा रही है। अशोकनगर में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की पहल माय भारत के तहत 30वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के जिला स्तरीय चरण का शुभारंभ हो गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय एवं विश्वरंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय टैगोर नाट्य महोत्सव का शुभारंभ आज होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक मजबूती को प्रदर्शित करती है जीडीपी में 7.8% की तिमाही वृद्धि। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की इंदौर में मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और महिला क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कांच की गुड़िया फिल्म का ये गाना, मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में, शब्दकार हैं शैलेंद्र।

ऐ मेरे दिल कहीं और चल, तलत महमूद की आवाज में आपने सुना शैलेंद्र का लिखा गीत दाग फिल्म से। संगीत निर्देशन शंकर जय किशन का था। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।

हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आज पार्श्व गायिका सुषमा श्रेष्ठ का जन्मदिन, जिन्हें बाद में पूर्णिमा के नाम से जाना गया। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुषमा श्रेष्ठ ने बाल कलाकार से लेकर 90 के दशक के शीर्ष बॉलीवुड गायिका तक का सफर तय किया। उन्होंने सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में फिल्म अंदाज के इस गाने को गाने में आवाज दी। अंदाज फिल्म का ये गीत तभी आप सुन रहे थे। आवाजें मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और सुषमा श्रेष्ठ की थी। हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने, शंकर जयकिशन का संगीत आपने अभी सुना।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
3: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
3: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
5: तेरा जवाब नहीं,
3: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
5: प्यार का राग सुनो रे।
3: बजता है छाया गीत विविध भारती से सदा।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं। मजरूह सुल्तानपुरी गीतकार थे और संगीतकार थे आर डी वर्मन।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।

नौशाद के संगीत निर्देशन में आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया गीत। शकील बदायनी के बोल थे, फिल्म का नाम राम और श्याम था। लीजिए अब सुनिए आंखों आंखों में ये गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
2: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 trillion मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
3: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
4: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल

0: पूर्व मध्य से गुजर रहे तीन तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े तीन जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में तीन ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये टी20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां टी20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोके और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आए ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला टी20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. iBRICS summit to be held in New Delhi on the sidelines of BRICS summit on the 12th and 13th of this month. Over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
4: दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड ना करें
3: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees.
4: Deshi defense manufacturing. अपने ऑल टाइम हाई पर है आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है
3: The Prime Minister said the SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He said, stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni has left their mark in every sector from arts to politics. Mr. Modi added that together 140 crore Indians will make India both Viksit and Atmanirbhar.
4: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे आत्मनिर्भर भी बनाएंगे आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा
3: The Prime Minister highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Sri Ram and bowed to his enduring vision. Education Minister Prahlad Joshi in his speech praised SRCC for maintaining its high standard over the years. He said today India is the third largest startup ecosystem under the leadership of Prime Minister Modi. He said that there is a requirement of skilled human resources in the global market. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, who was serving as Lieutenant Governor of the islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a BJP Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh and has also served as Deputy Chief Minister of the state. Talking to Akashwani News, Dr. Sharma said, whatever assignment is given by the party to him, he will try his level best to perform it.
5: Whatever instruction the Honorable Prime Minister gives are always acceptable to everyone. I always worked as a party worker and it is our responsibility to follow whatever directions our party leadership gives. My only desire is to fulfill the trust that the Prime Minister has placed in me.
3: In Chhattisgarh, the National Investigation Agency's special court in Jagdalpur has convicted all 10 accused in Cheram Valley Maoist attack case under various charges. A total of 11 accused were tried in the case, of whom one died during the trial. The court found all 10 accused, including two women, guilty of the murder of 29 people and attempt to murder 15 others. The order on the quantum of punishment has been reserved for September 16th. In May 2013, Maoists attacked a convoy of Congress leaders in Jhelum Valley. 29 people, including senior Congress leaders, were killed in this dastardly attack. Jharkhand Urban Development Minister Sudhiv Kumar Sonu passed away at Mercy Hospital in Giridih after suffering a heart attack. He reportedly complained of ill health late at night and was brought to the hospital at around 2 a.m., where he passed away at around 4 a.m. The news of the minister's demise has cast a pall of grief across Giridi and the entire state of Jharkhand, with a large number of supporters, party workers and well-wishers reaching the hospital. Chief Minister Hemant Soren described Sudhdev Kumar Sonu's demise as a personal loss and said that he had dedicated his life to the struggle for Jharkhand's identity, rights and self-respect. This is Akashwani giving you the news.
6: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
3: More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS Summit on the sidelines of BRICS Summit in New Delhi on the 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS Summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. The summit comes at a critical juncture as BRICS economies adapt to shifting trade dynamics, U.S. tariff pressures and high dollar clearing costs. As BRICS Chair 2026, India will be hosting the 18th BRICS Summit on September 12th and 13th at Bharat Mandapam in New Delhi. Union Home Minister Amit Shah arrived in Goa last night on a three-day visit, during which he will chair the 28th meeting of the Western Zonal Council. Today, he is scheduled to chair a Home Ministry meeting, address a press conference,

आपकी प्यारी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। आपका हमेशा दूसरों की मदद करने वाला स्वभाव आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है। और इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की गर्म चाय, पोहे जलेबी का नाश्ता और मनोरंजन के साथ खबरें जानकारियां, यही तो होता है हम सभी का मॉर्निंग रूटीन। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी नीरजा। बिना देर किए जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं गीत फिल्म सलामी इश्क से। स्वर अदनान सामी के हैं, गीत लिखा समीर ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

0: तनु वेट्स मनु रिटर्न फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। स्वाति शर्मा राजेश शांडिल्य की आवाजें थी। वायु ने इस गीत को लिखा था, तनिष्क बागची का संगीत था।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
4: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रहना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रहना से कोई लेना देना नहीं है।
3: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
4: साईं बाबा तक पहुँचना

0: मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, श्रेया घोषाल की आवाज़ थी। अमाल मलिक और प्रीतम ने इस गीत को लिखा था, अमाल मलिक का संगीत आपने सुना। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चलिए इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर होंगे।

0: टाइगर जिंदा है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अतीफ असलम की आवाज में शाद कामिल के बोल थे, विशाल शेखर की धुन थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जब से मोहब्बत हो गई है।
1: सोनू निगम और पलक मुछाल की आवाज़ों में बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा और अनु मलिक और मिथुन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस समय आप चित्रलोक कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक।

0: सनम तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। शब्बीर अहमद के बोलते हिमेश रेशमिया का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है। इसका उद्देश्य है लोगों को संतुलित आहार और सही पोषण के महत्व के बारे में बताना, मोटापा, मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाव करना। आज के इस भागदौड़ में हम अक्सर स्वाद के चक्कर में सेहत को भूल जा रहे हैं और काम की व्यस्तता में पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो आइए हम ये संकल्प लें कि हम स्वयं अच्छा और पोषक भोजन बनाएंगे, खाएंगे और अपने परिवार के साथ ही समाज को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गाना जावेद अली, सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

संगीतकार थे। फिल्म का नाम था दावते इश्क। आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के अंतर्गत सुनेगा नाट्य तरंग में यादों के अंतर्गत सुनेगा नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुति तेजश्री कामले की।

श्रोताओं आपको फिर से बता दें, शाम 4 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के अंतर्गत सुनिएगा नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, संपादन सहयोग योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में आपको अब सुनवा रहे हैं गोल्ड फिल्म का गीत। यासीर देसाई की आवाज है, गीतकार हैं अर्को प्रभो मुखर्जी, संगीतकार भी हैं अर्को प्रभो मुखर्जी।

0: यासिर देसाई की आवाज में आप सुन रहे थे गोल्ड फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार थे आरको प्रभो मुखर्जी।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

चिंगारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमानी कपूर की आवाज़ में। समीर के बोल थे आदेश श्रीवास्तव का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

6 सितंबर 1949 को मुंबई में जन्मे राकेश रोशन, संगीतकार रोशन लाल नागरथ के पुत्र और संगीतकार राजेश रोशन के भाई हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। और अब तो राकेश रोशन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है। लेकिन पिता संगीतकार रोशन के अचानक देहांत के बाद राकेश रोशन के लिए अपने करियर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को राकेश रोशन का नाम सजेस्ट किया एक्टिंग के लिए और आखिर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से राकेश रोशन की एक्टिंग की कहानी शुरू हुई।

0: गाना।
1: ये गाना जो अभी आपने सुना, अभिनेता जलाल आगा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन सपोर्टिंग रोल में थे। बतौर अभिनेता उन्होंने अधिकतर सपोर्टिंग रोल्स ही किए। सोलो हीरो के रूप में उनकी कम ही फिल्में आई, लेकिन जो भी आई वो भी यादगार रही, और उनका संगीत तो सुपर डुपर हिट रहा।

0: दोनों ही फिल्मों में हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में गोविंदिया गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं बात पूछता हूँ।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं। इनमें एक फिल्म याद आती है, फिल्म खूबसूरत। हालांकि फिल्म में टाइटल रोल रेखा का था, लेकिन राकेश रोशन और रेखा की जोड़ी ने बहुत ही कमाल अभिनय किया।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं जिनमें राकेश रोशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे राकेश रोशन खुश नहीं थे। इसीलिए 1980 में राकेश रोशन ने स्थापित की अपनी फिल्म निर्माण संस्था फिल्म क्राफ्ट और फिल्म बनाई आप।

ये फिल्म कामचोर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था और यहीं से शुरू हुआ राकेश रोशन की फिल्मों में क शब्द का कमाल। यहां से आगे राकेश रोशन ने जो भी फिल्में बनाई उनका शुरुआती अक्षर क रहा और अब तो राकेश रोशन एक ब्रांड बन गए। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान भी संभाल ली। फिल्म थी खुदगर्ज।

खुदगर्ज की सफलता के बाद राकेश रोशन सफलता की गारंटी माने जाने लगे। खून भरी मांग 1988 में रेखा के साथ, फिर किशन कन्हैया 90 में, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला, और इसके बाद कुछ वर्षों तक बतौर अभिनेता कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आए। लेकिन सन 2000 में बिग बैंग के साथ आए अपने बेटे को लेकर ऋतिक रोशन के साथ कहा, कहो ना प्यार है।

0: इस फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता को तो सभी जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फिल्म का नाम है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। इसके बाद राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी ने सफलता का एक नया मकाम हासिल किया। यहाँ ये भी बता दें आपको कि खूबसूरत फिल्म में रेखा के साथ अभिनय करने वाले राकेश रोशन ने अपनी दोस्ती को निभाया और रेखा को कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में बहुत ही दमदार भूमिका दी। तो अब वो फिल्में जिन्होंने सफलता का इतिहास रचा, कोई मिल गया।
1: यूं तो हम तुम मिलने को मिलते रहे पर क्यों आज ऐसा लगा

0: फिल्मकार राकेश रोशन पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। खरगोन जिले में नए कपास सीजन का मुहूर्त कल मंडी में होने जा रहा है। खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इसकी नीलामी शुरू होगी। कपास यानी सफेद सोने की आवक और नीलामी से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और बाजार में रौनक आती है। मंडी सचिव शर्मिला निमामा ने किसानों से आग्रह किया है कि वे कपास मंडी में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अपनी उपज लेकर आएं और उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया का लाभ लें। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर खरगोन में पिछले दिनों कलश वंदन यात्रा और समरसता संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और विधायक बालकृष्ण पाटीदार सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जिले के 28 मंडलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मिशन बेंचमार्क के तहत सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए बेंच और डेस्क उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जनभागीदारी और समाज के सहयोग से स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ सेवा कार्य से जुड़े लोग आगे आ रहे हैं। खरगोन जिले में पिछले दिनों न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, फुटपाथ व्यवस्था, हेलमेट के उपयोग और स्कूल कॉलेजों में सुरक्षा जागरूकता पर जोर दिया गया। खरगोन जिला प्रदेश के 90 फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने आकाशवाणी को बताया कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन, बेहतर सड़क व्यवस्था और लोगों में जागरूकता जरूरी है। खरगोन जिले में सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 3 सितम्बर को बामंदा कसरावत के बाद अब 11 सितंबर को ऊन, 18 सितंबर को महेश्वर तथा 25 सितंबर को दूधगांव और बड़वा के बेड़िया में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रहेगा। 18 से 35 वर्ष की आयु के 8वीं से स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और आईटीआई उत्तीर्ण युवा इसमें शामिल हो सकेंगे। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से ई क्लास की शुरुआत की गई है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कलेक्टर गुरु प्रसाद ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 से ई क्लास का शुभारंभ किया। जिले के करीब 80 विद्यालयों के लगभग 5000 विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय कंट्रोल रूम और स्टूडियो से अनुभवी शिक्षक विद्यार्थियों को लाइव कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 156 वरिष्ठ नागरिक 15 से 18 सितंबर तक मुंबई स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैत्य भूमि की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा प्रभारी ने बताया कि पात्र वरिष्ठ नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। खरगोन जिले की विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी को लेकर भारत सरकार के जनजातीय कार्य विभाग की सचिव रंजना चोपड़ा ने केरियाखेड़ी और महेश्वर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बुनकरों, वन अधिकार पट्टाधारियों, स्व सहायता समूहों और विद्यार्थियों से संवाद किया। माहेश्वरी साड़ी, ग्रामीण पर्यटन, आदि सेवा केंद्र और होम स्टे जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। सचिव रंजना चोपड़ा ने बताया कि स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कौशल को बाजार से जोड़कर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने पिछले दिनों खरगोन जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। छात्रवृत्ति, आवास, छात्रावासों में भोजन, पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र के पानवा में निजी औद्योगिक इकाई का बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। इस परियोजना में करीब 106 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। महाप्रबंधक धनंजय शुक्ला ने बताया कि जिला प्रशासन निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से सहयोग कर रहा है। खरगोन जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जांच के लिए एकत्र दूध के नमूनों की रैपिड जांच में मिलावट नहीं पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचएल अवस्या ने बताया कि दुग्ध और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए नियमित जांच जारी रहेगी। और अंत में बात जिले के झिरन्या के एकलव विद्यालय की छात्रा अनुराधा की, जिसने अपनी लगन और मेहनत के दम पर वो सफलता हासिल की है जो कई बालिकाओं के लिए प्रेरणा है। अनुराधा का चयन मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में MBBS पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। अनुराधा अपने गांव से डॉक्टर बनने वाली पहली छात्रा बनने जा रही हैं। खरगोन जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे खरगोन जिले की चिट्ठी। ये आकाश
1: शो करने जा रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पर हम लोग इतने भोले थे कि हमें ये नहीं पता था कि ये जो शोज होते हैं इसके पैसे कमाते हैं हम लोग। ये नहीं जानते थे हम। बेचारे पापा मेरे अपना जमा पूंजी तोड़ के और उसमें से हमको लेके मुंबई पहुंचे। एक छोटी सी जगह ढूंढी, रखा वहां पे, और अकेले रह नहीं सकते थे, बहुत छोटी बच्ची थी वो, 18 साल की दीपाली, तो उसको एक पीजी में रखा गया जहाँ पे दो और लड़कियां कमरा शेयर करती थी। पैंड्रा में एक पीजी में रहना शुरू किया। और एक दिन अचानक ऑफिस से फोन आया कि आप, और शोज होने लगे मुंबई में, शोज होने लगे, और एक दिन अचानक से ऑफिस से फोन आया कि आप आइए और अपना चेक लेके जाइए। तो हमें पता नहीं था चेक क्या, चेक तो गए तो पता चला जितने भी हमने स्टेज शोज किए थे अब तक उसके पैसे मिलते हैं,
2: और वो अच्छी रकम थी,
1: और वो बहुत अच्छी रकम थी।
2: आंखें एकदम,
1: खेल तो वहां से पलट गया सर।
2: हाँ।
1: ये रकम तो हम कैसे समझाएं कि
2: बिल्कुल
1: ये क्या हो गया था। कुछ समय के लिए जब पहली बार चेक मिला और हम बाहर ऑफिस के बाहर निकल के पापा को जब चेक बताए जो अमाउंट था, उस पे जो अमाउंट लिखा था वो हम पढ़े भी नहीं, क्योंकि हमको लगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने कुछ हजारों में अमाउंट बताया पर वो कुछ लाखों में था। ये स्थिति थी, जीवन वहां से पलट गया मेरा। दैट फर्स्ट चेक गेव मी द कॉन्फिडेंस कि अब हमको मेरे माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर है, हमको बहुत हमको लगता है कि बेटियों को ऐसे ऐसे पाला जाता है कि समाज कर देता है, माँ बाप नहीं
2: थोड़े में खुश रहना,
1: वो संतोषी पैदा ही संतोषी होती है, पैदा होंगी और नहीं तो समाज बना देगा कि भाई तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, इतने में ही खुश है बेटी। हाँ ये बात तो सही है, पापा पढ़ने तो भेज रहे हैं। तो मेरे अंदर एक बहुत गिल्ट फील होता था कि मेरे पापा को इतना, मेरे पापा मेहनत करते हैं हम और हमको, मेरे पर सारा खर्चा कर देंगे, दीदी को भी पढ़ाना है तो कैसे होगा। लेकिन वो चेक वो जीवन में एक दूसरी दीपाली को लेकर आया बाहर,
2: और उसके बाद वो एक अलग उड़ान शुरू हुई,
1: एक अलग उड़ान शुरू हो गई।
2: लगातार शोज हो रहे थे और हर शोज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था
1: और इंडियन आइडल ने तब तक अप्रोच कर दिया कि आप इसे होस्ट करिए।
2: हाँ हाँ।
1: तो जो पिछले साल जो लड़की कानपुर के एक लाइन में खड़ी थी जिस शो में एक हिस्सा बनने के लिए, इस साल वो लड़की उस शो को होस्ट करने जा रही थी।
2: बिल्कुल।
1: तो अब वो लड़की वो थी ही नहीं जो दीपाली पैदा हुई थी पटना में।
2: हाँ।
1: वहां से खेल बदलने लगा, कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा।
2: बिल्कुल। यहाँ कामयाबी भी आ रही थी, काम भी आ रहा था, और जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही थी।
1: करेक्ट।
2: परिस्थितियों के मुताबिक बदलना, अपने आप को संभालना। यहाँ मैं आगे की बातचीत करने से पहले एक गाने का जिक्र करना चाहता हूँ। गंगा मैया तो है पीरी चढ़े हुए को गाना जो आप गाती हैं बहुत सारा, पहले वो गाना सुनते हैं उसके बाद आगे की यात्रा की बात करते हैं।
1: बिल्कुल। हाँ।

0: राम।
1: क्या बात है, ये गाना तो जैसे हमारी संस्कृति का
0: हिस्सा
1: बन चुका है, हमारे मानस का हिस्सा बन चुका है। मुझे याद है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कहा जाता था कि पहले बनारस जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा मैया देखो, फिर गांव वापस आओ।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: तो ये एक पूरा एक दौर था जब इस फिल्म को लेके दीवानगी थी। ये गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना हमने सुना गंगा मैया तो है पीले चढ़े बो, और बिहारी लड़की यहाँ आते आते अभिनय के मैदान में भी उतरने वाली थी, ये कैसे हुआ है?
1: ये गजेंद्र सिंह जो हैं, हाँ, जो सारे गामा
0: जो उसके प्रोड्यूसर थे,
1: डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका अचानक एक दिन फोन आया। उस समय भोजपुरी का एक नया चैनल लॉन्च हुआ था और उन लोगों को नए शोज बनाने थे और
0: बड़े धूमधाम धड़ाम तरीके से शुरू हुआ।
1: बहुत धड़ाम, मतलब बंबई में बहुत बड़ा ऑफिस था भोजपुरी चैनल होने के बाद भी, जितना बड़ा उनका ऑफिस था हिंदी वाले भी दंग रहते थे कि ये क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो उस वक्त का जो दौर था,
0: सीरियल बनने लगे, रियलिटी शो बनने लगे, जाने क्या क्या हो रहा था।
1: तो ये उन्होंने गजेंद्र सिंह ने ही एक दिन फोन किया, और ये वो गजेंद्र सिंह है जो दीपाली के दिमाग में सारे गामा के डायरेक्टर है, जो जिनको सोनू निगम एक जमाने में होस्ट करते थे और हम बचपन में देखा करते थे। तो फोन आया कि गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था, अच्छी बात है, ओके बाय, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हुआ कि खुद गजेंद्र सिंह ने फोन किया। फिर दोबारा कॉल आया, दीपाली मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, साईं बाबा प्रोडक्शन, सारे गामा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब हमको समझ आया कि अरे ये तो असली वाले गजेंद्र सिंह है। तो हम बोले हाँ जी सर, हाँ जी जी सर बोलिए। तो हम एक शो बना रहे हैं भोजपुरी में है, तो हम चाहते हैं कि तुम उसमें एक्टिंग करो। बोले सर हमको एक्टिंग नहीं आती है। तो बोले वो तुम्हारा काम नहीं है डिसाइड करना, तुम्हारा काम है हाँ बोलना, तुमको आती है कि नहीं आती है ये तो डायरेक्टर बताएगा, हम बताएंगे तुमसे कराएंगे, हम करा लेंगे, हमको पता है। एंड दैट्स हाउ दिस बड़की मलकाई नाम था इस सीरियल का, ये शुरू हुआ मेरे जीवन में। और एक्टिंग का हमको सच में, मतलब ठीक है कि मूड इंडिगो में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल गया था, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेंगे। बट क्योंकि उस जमाने में बहुत अच्छे पैसे थे, हमको ये भी नहीं पता था कि पर डे बेसिस पे सीरियल में पेमेंट होते हैं, सो आई थॉट कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हुआ क्या कि इंडियन आइडल में मेरे ना वोकल कॉर्ड्स फट गए चिल्लाने की वजह से। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि अब तुम जीवन भर कभी गा नहीं सको, तो तुम गाना तो भूल ही जाओ, ये तुम्हारा करियर यहाँ पे गाने का खत्म होता है। और मेरे वोकल कॉर्ड्स का जो उस समय कुछ, जो एक वो लैरिंजियोग्राफी या कुछ कहते हैं उसको, उसके पिक्चर्स देखे उन्होंने, तो पिक्चर्स में वोकल कॉर्ड्स लिटरली फट चुके थे और खून बह चुका था, पूरा रेड सोर रेड था मेरा वोकल कॉर्ड। तो हम भी डर गए, हमको लगा कि, तो वो ही उन्होंने बोला कि कुछ दिन तक तो तुमको बिल्कुल साइलेंस पे रहना होगा, क्योंकि उसको रेस्ट देना जरूरी है। और फिर उन्होंने बोला कि सिंगिंग एज अ करियर भूल जाओ, क्योंकि अब तुम अपने वोकल कॉर्ड्स को फाड़ चुकी हो चिल्ला चिल्ला के वो रियलिटी शो होस्ट करने के चक्कर में, तो गाना तो तुम गा नहीं सकती हो, और अगर बहुत बोलोगी तो जो बोलने वाली आवाज है वो भी चली जाएगी। तो हो सकता है वो उनका डराने का तरीका हो एक छोटे बच्चे को, इस बहाने शायद ठीक हो जाए, बट आई टुक इट वेरी सीरियसली। तो जब ये एक्टिंग का ऑफर आया तो हमको लगा ठीक है, करियर सिंगिंग में तो है नहीं जीवन अब मेरा, मेरा तो गला चला गया है गाने के हिसाब से, तो एक्टिंग कर लेते हैं। तो एकदम शिद्दत से हम उसमें घुस गए एक्टिंग करने में, और फिर मतलब फिर बाकी जगह से भी ऑफर्स आने लगे और हम करने लगे, रियाज और गाना तो कहीं चला गया जीवन से।
0: और ये जो गले की समस्या थी, इसके बारे में पहले पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वोकल कॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ता
1: नहीं
0: है।
1: नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद, पर अभी हम सोचते हैं कि अगर कोई बोले कि इतना बड़ा रियलिटी शो होस्ट करना है आपको लेकिन आपके गले पे असर पड़ेगा, तो भी हम ना नहीं बोलते,
0: बिल्कुल
1: नहीं बोल पाते।
0: कैसे संभाला फिर अपना गला उन दिनों में, जबकि ये कहा गया कि पूरी तरह से साइलेंस रहना है वगैरह वगैरह?
1: उस वो कुछ दिन तो हम बहुत परेशान रहे, क्योंकि बहुत दर्द होता था गले में, तो हम बहुत रोते भी थे, माँ थी मेरे पास यहीं पर अंदर ही अंदर अब समझ आ गया था कि मेरा करियर तो है ही नहीं म्यूजिक में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा दिमाग, क्योंकि हम आई वॉज अ डूअर होता है ना, कुछ लोग करने वाले होते हैं, तो हमको करना था कुछ। अब हम आ चुके थे मुंबई और शोज जो थे वो पैसा दे रहे थे, हमको नहीं पता था कि शोज से पैसे आएंगे, पर अब तो आ चुके थे, चस्का तो वहां से भी लग चुका था, और यहाँ पे म्यूजिक करियर जाता रहा। तो ऐसे में एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ, तो हमको लगा ठीक है, मतलब तो कुछ कला से रिलेटेड करने में है ना, तो ये भी तो यू नो
0: इसी
1: का आर्ट का ही एक रूप है ना एक्टिंग, और अच्छा है, डिसेंट है। भोजपुरी का जो उस समय इमेज था, मतलब वल्गर गानों का, ये शो उस इमेज को भी तोड़ रहा था, एक अच्छा डिसेंट पारिवारिक एंटरटेनिंग शो, तो हमको लगा सही है। तो पहले कुछ दिन, कुछ ही हमको लगता है कुछ है ही महीने का डिप्रेशन रहा होगा और उसके बाद फिर चीजें पलटने लगी. आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट.
0: और उसके बाद फिर वो जो एक्टिंग का सिलसिला चल पड़ा, उसमें कौन कौन से सीरियल्स आए वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए.
1: सबसे पहले तो बड़की मलकायन था, फिर उसके कुछ दिन बाद दूरदर्शन नेशनल पर अनुदामिनी करके एक शो आया, वो बहुत हिट हुआ. उसमें मेरा वैम्प का रोल था.
0: ये अलग चैलेंज हो गया.
1: सो मेरे लिए, बट ये चैलेंजेस बहुत काम कर रहे थे, क्योंकि वो चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपको वो करनी पड़े तो आप अपने आप को फिर और बेहतर पहचानते हैं कि अच्छा ये भी सक्षमता है, ये भी करने में सक्षम होंगे हम, ये भी. ये सारी चीजें आप, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है. जब आपने अपने ऊपर कोई कैप नहीं लगाया है कि हम यही करेंगे, तो फिर आप एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं इंसानी तौर पे. तो वो मेरा शुरू हो गया था अनजाने में.
0: बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी अपनी तरह से
1: आई वॉज अलाउइंग कि जीवन को जैसे बहना है बहू. क्योंकि अब तो हम जो सोच के आए थे कि हम बहुत जल्द, मेरे पापा बोले थे कि अब ये मुंबई जाएगी और हिंदी फिल्मों में गाने का कोशिश करेगी, वो तो मेरा चूर हो गया 2 ही महीने में जब डॉक्टर ने बोला नहीं पॉसिबल है. तो फिर हमने एक्टिंग को एक्सेप्ट किया और भारत की शान, दूरदर्शन पे ही एक रियलिटी शो होता था भारत की शान, उसको भी होस्ट किया. जय हनुमान एक सीरियल आता था सोनी एंटरटेनमेंट पे, उसमें एक्टिंग की, उसमें भी वैम्प का रोल था, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, महाराणा प्रताप, बस थोड़े से अनजाने, नीम नीम शहद शहद, बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, इस तरह के छोटे छोटे

0: शोज में अच्छे इंपॉर्टेंट रोल्स कर करके आई थिंक मेरे कुछ 6 साल निकले।
1: और ये जो गायकी वाला मामला था
0: वो तो बस महीने में जैसे 20 दिन की शूटिंग और 10 दिन जो बचा है उसमें कभी कोई शो मिला तो कर लिया।
1: और गला तब तक
0: संभल गया था पर रियाजी गला नहीं था वो। वो तो उसके अंदर का चोट हील हो गया था। वो मेरे दिमाग का फितूर था कि वो चोट हील नहीं होगा अब कभी कुछ नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम शोज जो उस समय होते थे उस समय शोज में प्रायोरिटी ये नहीं होता था कि सुरीला गाओ, ऑडियंस नाचनी चाहिए। तो गाने के ऊपर उतना प्रेशर है नहीं। कोई भी गाना चला दो ऑडियंस नाच रही है। तो शोज अच्छी मेरी अच्छी कट रही थी कि शोज भी चल रहे थे और एक्टिंग भी चल रहा था। और अब करियर तो है नहीं म्यूजिक में सिंगिंग में, तो रियाज तो करने की जरूरत है नहीं। ऐसा जीवन चल रहा था मेरा।
1: और मम्मी पापा तब तक पटना में ही थे?
0: वो लोग पटना में ही थ्रू आउट रहे, मतलब पूरे टाइम वो लोग पटना। पापा क्योंकि सरकारी नौकर थे तो वो शहर तो नहीं छोड़ सकते थे। माँ आना जाना करती थी ऑफकोर्स, वो बेचारी बट गई थी अपने पति और अपने बच्चे के बीच क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो बैंगलोर में LLB कर रही थी। okay. और वो प्रॉपर लाइफ जी रही थी जो एक उस उम्र का बच्चा जीता है, हॉस्टल लाइफ, यू नो, क्लास जा रहे आ रहे। पर उनकी ये बेटी जो थी वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई थी। मतलब एक बंदा है उस रियलिटी शो के बाद उसने बोला चलो बेटा मैं तुमको मोंटी शर्मा से मिलवाता हूँ। हम लोग पहुंच गए यशराज के स्टूडियोज में, मोंटी शर्मा उनके सामने बैठ के, सांवरिया फिल्म आई थी तब, आने वाली थी, आ गई थी, और उन्होंने गाना भी सुना। और हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो रणबीर कपूर से भी मुलाकात हो गई। तो ऐसा लगा कि वाह अब तो बस प्लेबैक मिल ही जाएगा। और वो ही टाइम था जब जो रियलिटी शो उसको होस्ट करने के ठीक पहले का टाइम, जब मेरा गला बिल्कुल रेडी था, जब माँ बाप को लगा था कि ये प्लेबैक में कुछ करेगी। और हमने मुलाकात की, हम जब घर वापस आए तो उस बंदे ने जिसने हमें मिलवाया बिना मांगे, उसने हमारी जो मीटिंग करा दी उसके एवज में उसने बोला कि उसकी कोई विदेशी मित्र मेरे पास रहेगी 3 महीने के लिए। तो मेरी माँ को ये बात खटक गई क्योंकि ये बात उसने तब नहीं बोला जब वो हमें मिलवाने ले जा रहा था,
1: ये बाद में बोला गया
0: जब उसने हमें मिलवा दिया। और जब मेरी माँ ने मना कर दिया कि नहीं अनजान कोई लड़की नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तो उसने बोला पर मैंने तो तुम्हें मोंटी शर्मा से मिलवा दिया था, तब भी तुम मना कर रही हो मुझे। तो हमें ये गेम समझ आया कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले, फेवर्स कोई फ्री में
1: करण बनते हैं।
0: हाँ, यहाँ कोई आपके लिए फ्री में नहीं कुछ करेगा, वो आपको लेके। और वो बहुत क्लियरली उसने बोला कि बट हम तो अभी तुमको मोंटी शर्मा से मिलवा के ला रहे हैं भाई,
1: तो ये तो मानना ही पड़ेगा।
0: तो ये तो तुम कैसे मना कर रही हो, मतलब तुम ये मना कर रही हो तो मतलब हम तुमको अब जीवन में कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। तो अब हम लोग पटना से उठ के यहाँ आए हुए, हमारी तो दुनिया हिल गई। और मेरे पिताजी वैसे भी बहुत पुलिस वाले हैं, वो दुनिया के एक उस आयाम को देखते होंगे जो हम नहीं देखे हैं। तो उनको डर भी बहुत लगता है अपनी बेटियों के लिए, हर बाप को लगता है, पर पुलिस वाले थोड़ा ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा गंदगी देखते हैं, जो गंदा साइड है, जो कठिन साइड है जीवन का वो ज्यादा देखते हैं। तो मेरे पापा हमको उस दिन एक बात समझाए कि बेटा किसी भी काम को करने के लिए अगर झुकना पड़े तो मत जाना, अपनी इज्जत अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखना। और अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि उस जगह पे तुमको डर लग रहा है तो वहां से हट जाना, निकल जाना, काम नहीं मिले मत करना, पर कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये छोटी बच्ची है ये काम मांगेगी तो एवज में उससे क्या मांग ले, ये पता नहीं जज कर पाए कि नहीं कर पाए। और क्योंकि दीपाली एक किताबी बच्ची थी,
1: अक्षरशः मान लिया उसने,
0: शब्दशः उस बात को हमने कर लिया फॉलो। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद वोकल कॉर्ड्स फट गए, ये सब कुछ, यू नो, ये अपने आप ये चीजें होती चली गई कि सिंगिंग से मेरा नाता रिश्ता टूट गया पूरी तरह से 2012 तक।
1: और ये सारा समय आपको जो है ये ले जा रहा था एक्टिंग की दुनिया में।
0: एक्टिंग करते करते ऐसा लगने लगा कि ये एक्टर जो है उसको तो सारा काम वही करना होता है जो डायरेक्टर बोलता है। तो बनना तो हमको डायरेक्टर है, आई एम अ लीडर।
1: ये यानी मंजिल जो है वो हर एक पड़ाव पर नई नजर आती रही।
0: बिल्कुल।
1: और यहाँ से FTI दिखने लगा।
0: बिल्कुल।
1: मतलब ये बहुत बड़ा टर्न नहीं था कि सिंगिंग से एक्टिंग और एक्टिंग से डायरेक्शन?
0: हाँ, टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था। लेकिन हम बोले ना कि ये मेरा सौभाग्य है कि कभी कोई, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या कर रही हो, तुम करना चाहती क्या हो। कभी कोई नहीं हमको ये सवाल पूछता था।
1: आपने एक दिन ये तय कर लिया कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर डिप्लोमा लेना है।
0: हाँ, और इस

0: की छूट दे दी कि तुम
1: रेगुलर क्लासेस
0: नहीं आओगी तो चलेगा। तो वो वहाँ पे आई थिंक मेरा लक फेवर्ड मी एंड ग्रेजुएशन इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया, क्योंकि माँ बाप का ये भी था कि बेटा डिग्री तो चाहिए, बिना डिग्री के बिहारी जीवित नहीं रह सकता है।
1: लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत जरूरी बात है, और उसमें आपने इस पर फोकस किया ये भी उतनी ही बड़ी बात है कि एक तरफ जब एक्टिंग का मामला चल रहा है, प्रोफेशन सेट है, उसकी बात
0: प्रोफेशन सेट है, पैसे सेट है, मतलब एक 18-20 साल की लड़की के लिए जितने पैसे हम कमा रहे थे, अभी भी सोच के हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम गलत रास्ते कैसे नहीं गए, ये कौन सी कृपा थी मेरे ऊपर।
1: ये सारे संस्कारों का खेल,
0: ये सारे संस्कारों का खेल है, ये मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे। और 6 साल बाद जब हम सोचे कि हमको और पढ़ना है, FTII जाना है, तो वो मेरे पिताजी बोले बेटा तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी कोई कमाई नहीं, कोई काम नहीं, तुम घर आओ, मेरे पिताजी मेरे साथ बैठ के FTII की तैयारी शुरू कर।
1: एक गजब। तो आपने तब एक्टिंग भी छोड़ दी?
0: छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुंबई से वापस घर पटना।
1: ये तो बहुत बड़ा टर्न था।
0: हाँ, ये काफी बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था।
1: FTII की तैयारी किस तरह की?
0: एक तो पता नहीं था कि फिल्म देखा कैसे जाता है। फिल्म देखना हमें मसाला फिल्में देखने आती थी, मनमोहन देसाई जी की जो ग्रैंड सक्सेस फिल्म जो बिहार में चलती थी, मेरे लिए फिल्म देखना मतलब एंटरटेनमेंट, बट FTII वाज अ सीरियस बिजनेस। और वहां पे जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो मेरे अंदर ये था कि डायरेक्टर जो बोल रहा है वही करना पड़ता है, तो भैया जो लीडर है हमको वही बनना है, जिस भी प्रोफेशन में हम काम करें जो लीडर है हमको तो वही बनना है। ये छोटा जो क्या बोलते हैं बाल मन जिसको कहते हैं, वो अपना ही कुछ इन्फ्लुएंस निकालता रहता है। तो जैसे एज अ कैरेक्टर हमको ऐसा लगता था कि मेरे कैरेक्टर को ये लोग रुलाते बहुत है, इतना नहीं रो सकती है कोई, वो पलट के क्यों नहीं बोल रही है जब उसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है। तो ये जो कहानी लिख रहा है ना, हमको वहां बैठना है, सो दैट आई कैन टेल माई ओन स्टोरी, मे बी यू नो ये मेरे दिमाग में, ये
1: टू कंट्रोल द थिंग्स एंड टेल योर स्टोरी,
0: करेक्ट, टू टेल माय स्टोरी इन माय वेज, क्योंकि आप जो दिखाते चले जा रहे हैं ये सच नहीं है। इतनी प्रताड़ना कोई इंसान जीवित तो नहीं सह सकता है, वो कभी तो रिटेलिएट करेगा। तो वो रिटेलिएशन भी वो उस कैरेक्टर का बहुत सीमित दिखाते थे कि वो बस उसने एक बार ऐसे देख लिया चौंक के, बट मेरे नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो हमको लगा ये कर कौन रहा है, ये खेल क्यों हो रहा है। और मेरी डायरेक्टर से बहस भी होती थी कि सर कभी तो आप पलट के मुझे जवाब देने दो इनको। तो डायरेक्टर ने बताया कि भैया जो राइटर लिखेगा और जो डायरेक्टर बोलेगा यही होगा। तो मेरे दिमाग में अच्छा तो हम अपनी कहानी बनाएंगे, तो हम जाएंगे डायरेक्टर बनने। तब पता भी नहीं था कि FTII नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है। इंटरनेट पे दुनिया खोल के पढ़ के पता चला हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें तैयारी लगेगी, रिटन होगा, अगर वो क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू होगा, ये मतलब एक छोटा UPSC का छोटा सा फॉर्मेट।
1: तो उसकी तैयारी के लिए दीपाली यहाँ से एक्टिंग वैक्टिंग सिंगिंग विंगिंग सब छोड़ के चली गई पटना और तैयारी शुरू कर दी।
0: बिल्कुल,
1: ये कहानी बहुत गजब की है भाई। इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं। पिताजी तैयारी करवा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं।
0: हाँ, फिल्में देखी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के लिए फिल्में देखी जाती हैं। आप सोचिए, हमको बहुत आश्चर्य होता है कि कितने कमाल के हैं ये लोग जिनके बीच हम पैदा हुए हैं। इनको कुछ नहीं पता है,
1: नहीं, ये एक
0: लेकिन ये लगे हुए हैं।
1: हाँ,
0: लगे हुए हैं। हमको भी नहीं पता है कि FTII में घुसने के लिए फिल्में देखनी पड़ेंगी। हमको ये पता है क्रिएटिव होना जरूरी है, एंड आई एम क्रिएटिव। तो जब मेरा रिटर्न हुआ तो उसमें जो जनरल नॉलेज मेरा अच्छा था, जनरल अवेयरनेस अच्छा था, तो वो चीजें तो सॉर्टेड थी। क्रिएटिव राइटिंग करना था जो डायरेक्शन के कोर्स के लिए था, वो सॉर्टेड थी। किसी एक फिल्म की समीक्षा अगर आ जाए, किसी स्पेसिफिक फिल्म का एक सीन डिस्क्रिप्शन आ जाए या एडिट पे बात आ जाए, वहां हम थोड़े अटकते, बट आई वॉज रेडी कि उसमें भी हम कुछ बात बना के लिख सकते हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है। वर्ल्ड सिनेमा तो पता भी नहीं था, सिनेमा देखना भी नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा उसको एज अ एक्टिंग शूटिंग वही दिमाग में रहा। इसलिए शायद हम थोड़े डेड इमोशन थे, मतलब मेरे अंदर जो जज्बात थे ना वो काफी डेड थे। तो तैयारी शुरू की हमने वर्ल्ड सिनेमा के बारे में सिर्फ पढ़ के, क्योंकि फिल्में नहीं थी मेरे पास देखने को, मेरे लैपटॉप में वो CD प्लेयर नहीं था, मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं था जिसमें हम CD लगा के वर्ल्ड सिनेमा की बात देख
1: सके, या किसी अलग अलग जरिए से सिनेमा को डाउनलोड कर लें और जमा कर लें और शान बगा लें,
0: कुछ भी नहीं आता था। मेरे

0: हाथ में बस इतना ही था कि वो रिटर्न क्लियर करना है जैसे भी, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच गए हमको उसमें से नहीं छांट सकता है. तो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी. एक्चुअली मेरा विश्वास था कि हम कभी रिजेक्ट नहीं होंगे. वो रियलिटी शो हारने की वजह थी क्योंकि हम मन से हारे हुए थे. एक लड़की नहीं जीत सकती थी इसलिए वो लड़की नहीं जीती. एक लड़की सोच रही थी वो एफटीआई में निकाल लेगी इसलिए उसने निकाल लिया. यही मन के हारे हारे मन के जीते जीते ये सत्य है.
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं क्योंकि बहुत देर से हम बात कर रहे हैं. तो अब दीपाली कौन सा गाना सुनाएगी?
0: अब दीपाली के जीवन में जो मोड़ आया है वो है छोटी

0: इजाजत तक का सफर तय कर लिया। यहाँ से दीपाली चली आती है पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन हो जाता है।
1: करेक्ट।
0: इंटरव्यू सब तोड़ फाड़
1: सब
0: करती
1: सब
0: हुई।
1: सब
0: है ना,
1: सब सब।
0: तो मतलब दीपाली
1: और जो लिस्ट निकलता है वो लिस्ट में सबसे नीचे का नाम है, क्योंकि वो रैंकिंग के बेसिस
0: सबसे नीचे का नाम है।
1: 12 सीट होते हैं, इनमें से 6 जनरल कैटेगरी और 6 रिजर्व्ड कैटेगरी। तो वो जो 6 सीट है उनमें सबसे नीचे मेरा नाम है, मतलब हमने जस्ट क्वालिफाई कर लिया,
0: बच गए।
1: हाँ।
0: और कौन कौन लोग हैं हमारे साथ वहाँ पर
1: अलग अलग? अच्छा, ये एक अच्छी बात थी कि 12 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट अलग स्टेट का था।
0: बिल्कुल।
1: ये आई थिंक ये कॉन्शियस प्रोसेस है उनका सिलेक्शन का, क्योंकि मेरे बैच में केरलाइट भी था, कर्नाटका भी था, हम बिहारी, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो अब क्या होता है, आप अपने प्रांत में, अपने स्टेट में अपने ही तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। शायद इसलिए FTII जैसा इंस्टीट्यूट बनता है, बहुत बहुत सोच विचार के। अभी इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं तो हमको FTII के मेरे दिन याद आ रहे हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ भी ऐसे ही स्टूडियोज हैं। बिल्कुल। यही है ही वो।
0: बिल्कुल।
1: वो प्रभात खबर स्टूडियो हुआ करता था, प्रभात स्टूडियोज शांताराम जी का। तो अभी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस ऑफिस की तरह ही, हमारे ऐसे ही स्टूडियोज होते थे, हमारे ऐसे ही क्लासेस होते थे।
0: हाँ।
1: तो बट द बेस्ट पार्ट वाज कि सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के थे, सारे ग्रेजुएट्स थे। तो आप एक उम्र, अब आप एक जीवन का एक नजरिया, एक एक्सपीरियंस, एक एहसास, आपका दिल टूट चुका है, अब तक आपको प्यार हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप जीवन में फिनेंशियल स्ट्रगल समझ चुके हैं, आपने वो सारी चीजें, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हैं तो आपने एक उम्र तो जी ली है, एक हिस्सा एक्सपीरियंस कर लिया है, और उसके बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां वर्ल्ड सिनेमा की बात हो रही है। और सिर्फ सिनेमा, सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हो रही है, ये देख के समझ आ रहा है कि जो मेरे अंदर जो एहसास चल रहा है, इटली में बैठा 100 साल पुराना डायरेक्टर भी उसी एहसास को दिखाने में कामयाब हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: ये समझ आया, सिनेमा इज केपेबल, व्हाट इज सिनेमा केपेबल ऑफ, ये FTII ने समझाया कि इंसान जीना कैसे है, पर्सपेक्टिव क्या होता है।
0: देयर इज नो बाउंड्री इन ह्यूमन इमोशंस,
1: देयर इज नो बाउंड्री। और आप अपने जीवन का कैमरा कहाँ रख रहे हैं और अपने जीवन को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, नॉट जस्ट लिटरली, फिजिकली आप कैमरा कहाँ रख के एक सीन लगाते हैं, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है कि क्यों इस वक्त हम इस लड़ाई को छत से देखा जा रहा है, इस लड़ाई को डायरेक्टर ने नीचे से क्यों नहीं दिखाया। ये चीजें, ये जो पर्सपेक्टिव है, जो फिजिकली और नॉन फिजिकली, मेंटली ऑल्सो, हमको समझ आया कि अच्छा नजरिया होता क्या है एक्चुअली, ये FTII ने सिखाया हमको।
0: और यहाँ वर्ल्ड सिनेमा जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में था, कुछ भी देख सकते थे, डिस्कस कर सकते थे।
1: बिल्कुल। हमारे जो फैकल्टी थी, जो विजिटिंग फैकल्टीज थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े समझदार लोग थे, बहुत सहनशील समझदार लोग थे, क्योंकि ये सारे जो बच्चे आए थे ये सब अपने अपने घरों से लड़कर आए थे। मतलब कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग के बाद पहुंच रहा है, किसी ने जो, ये वो बच्चे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो वेट कर रहे थे उस दिन का जब वो अपने माँ बाप को बोलेंगे अब तो मेरा चलेगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जब उन्होंने थोड़े से पैसे भी कमा लिए हैं कहीं से कैसे। तो ये एक ऐसा बाउंड्री था, जो फिजिकल बाउंड्री था FTII का, जिसके अंदर सिर्फ आजाद पंछी थे।
0: और ये सारे सिनेमा के जुनूनी लोग,
1: ये सब सिनेमा लवर्स, और इनकी बातें, इनके डिस्कशंस, इनके एक्सपीरियंसेस, इनका जीवन को महसूस करने का तरीका ही अलग था। ये देखते ही कुछ और थे, जो हम लोगों को नॉर्मल दिखता था ये उल्टा देखते थे उन चीजों को। और ऐसे लोगों के साथ मेरा सौभाग्य हुआ कि हम इन लोगों के बीच में गए, मेरे जैसा सीधा चलने, सीधे रास्ते चलने वाला इंसान एक बोले तो एक खुले पिंजरे में घुस गया था। और वहां पर लोगों को सिनेमा देखने का तरीका, उस पर डिस्कशंस, अपनी फिल्में बनाना है आपको, आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो मेरा एक साल का जर्नी था FTII में, आई डिड टेलीविजन डायरेक्शन फ्रॉम देयर। एक साल बाद जो नाम सबसे नीचे था वो वहां से टॉपर बन के निकलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: और हमारे यहाँ जो टॉपर होता था उसको विधु विनोद चोपड़ा स्कॉलरशिप मिलती है। सो आई रिसीव्ड दैट स्कॉलरशिप इन FTII। तो मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो जर्नी होगा,
0: पूरा ट्रांसफॉर्मेशन,
1: पूरा मतलब दीपाली कई फेजेस में बनी और टूटी है, FTII उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत, दीपाली को अडल्ट बनाया एफटीआई ने इन टर्म्स ऑफ हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस. वहां पे हम पहली बार रोना सीखे पब्लिकली.
0: अच्छा.
1: दूसरों के सामने भी रोया जा सकता है. यह अभी तक नहीं हुआ था मेरे साथ और एफटीआई के अंदर पहली बार हुआ जब हम किसी के साथ बैठकर कुछ बात करते हुए और हम रो पाए. और वो एक इतना कैथार्टिक फीलिंग था. वो इतना अच्छा है महसूस हुआ जब ये
0: हल्का
1: हुआ.
0: हो जाना.
1: इतना हल्का महसूस हुआ तो समझ आया कि जीवन कुछ और ही है. मतलब आप कुछ और ही समझ रहे थे अब तक.
0: तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था. और वहां पूना में सिनेमा की दुनिया में रहकर एक तरह से खुद से मुलाकात हुई.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही कहा आपने.
0: यहाँ एक गाना सुन लें.
1: बिल्कुल.
0: उसके बाद मुंबई की तरफ आते हैं.
1: बिल्कुल.
0: कौन सा गाना होगा?
1: लिए

0: एकदम सत्य है ये।
1: दीपाली के साथ बिल्कुल यही हो रहा था,
0: बिल्कुल यही हो रहा था।
1: ये जावेद साहब की बोले हैं।
0: हाँ,
1: मशाल फिल्म का गाना है और हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक है
0: जी,
1: है ना, सुनते हैं ये गाना।

0: यहाँ से फिर बम्बई आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ चूंकि अब कैमरे के पीछे रहने की ट्रेनिंग हो गई है,
1: करेक्ट,
0: तो अब क्या करना है?
1: अब टारगेट तो यही था कि बड़े किसी डायरेक्टर को पकड़ लिया जाए और उनके असिस्टेंट बन जाते हैं, जीवन धन्य है यहाँ से। अब यही तो अब करना क्या है, FTI से करके सिनेमा बनाना है, करेक्ट। तो एक साल वही छोटे मोटे एड्स, म्यूजिक वीडियोस असिस्ट करने का काम शुरू हो गया,
0: कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह,
1: कॉर्पोरेट फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, या यू नो किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ प्री प्रोडक्शन का 15 दिन में लोगों की जरूरत है, क्योंकि अभी नाम नहीं है मेरा। वो इंडियन आइडल वाली दीपाली यहाँ नहीं चलने वाली है,
0: बिल्कुल,
1: वो जो फेमस वाली है जो सिंगर बनी थी या जिसने होस्ट किया था। और एक अच्छी बात क्या हुई मेरे साथ, जो कि उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी, कि कोई हमको पहचानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो इतना एवरेज इंडियन फेस है कि आप यू नो जैसे एक एक एक पर्सनालिटी होती है ना, एक अलग किस्म की खूबसूरती, जैसे ऐश्वर्या राय है, वो एवरेज इंडियन ब्यूटी नहीं है, वो स्टैंड आउट इंडियन ब्यूटी है। वो कहीं भी खड़ी होंगी हजारों लाखों की भीड़ में भी तो आपकी नजर उनके चेहरे पर चली जाएगी, पर एक एवरेज इंडियन बिल्ट फेस मेरा वो है। तो रियलिटी शो से निकले भी थे तो भी लोग हमको जल्दी पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि मेरा वैसा कुछ है नहीं, वो पहचानने वाला कोई फीचर नहीं है स्ट्राइकिंग, तो वो मेरे फेवर में काम करता था, क्योंकि फिर हमको ताने कम सुनने पड़ते थे कि अरे तुम तो रियलिटी शो जीत के या जो भी करके आई हो तो तुम ये काम क्यों कर रही हो, तो ऐसा भी सुनने मिलता था।
0: एक एनोनिमिटी मिली,
1: एक अनोनिमिटी मिली, और वो एक अज्ञातवास जो मेरे जीवन का बहुत सुंदर अज्ञातवास था, क्योंकि अब हम उस लेवल पे थे कि हम कुछ भी कर सकते थे, कोई नहीं पहचानता है हमको। वो इतना एम्पावरिंग होता है, क्योंकि जब आप जब जस्ट रियलिटी शो से निकले तो आपको सब जान रहे हैं, अगले एक दो साल तो डेफिनेटली आपको लोग जान रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 5 स्टार्स में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप रोज फ्लाइट ले रहे हैं, आपका जीवन अलग चल रहा है, और अचानक से करियर जो है वो धीरे धीरे अपना मोड़ लेने लगता है, और आप एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जब आप FTI से निकलते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप यू आर रेडी टू बी अ स्पॉट बॉय टू अ डायरेक्टर, आप उस बीच में कुछ भी हो सकते हैं, आप
0: बहुत सही
1: खुल चुके हैं, आप बिल्कुल निर्लज्ज हो चुके हैं, आप हर काम करने को तैयार है, क्योंकि टारगेट ध्येय ये है कि आपकी फिल्म बननी चाहिए,
0: हाँ।
1: या जिसकी फिल्म बन रही है उसका पूरा सहयोग होना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: वो पैशनेट लोग ही कर सकते हैं,
0: टीम की तरह अब काम अब करना
1: अब जो इंडिविजुअल दीपाली, इंडिविजुअलिस्टिक दीपाली थी, अब वो समाज के साथ जिसके कोई दोस्त नहीं होते थे, अब उसके दोस्त बनने शुरू हुए, अब दीपाली एक अलग आयाम में घुस रही थी अपने जीवन के, और यहाँ पे दोस्ती आई मेरी लाइफ में। इसके पहले तक हम बहुत अकेले थे, बहुत अकेले थे। तो जब हम मुंबई वापस आए तो क्योंकि बैचमेट्स और FTI का तो हम मशहूर हैं, बैचमेट्स और
0: अलुमनाई
1: हमारा काफी तगड़ा है,
0: वहाँ एक तरह का कनेक्शन जो है जोरदार होता है,
1: बहुत जोरदार होता है, और वो क्या है, वो बिल्कुल इतना इतना गहरा है कि समय की सीमा उसमें मायने ही नहीं रखती। कम से कम समय में आप इतनी गहराई से, क्योंकि काम ही ऐसा है, आप एक काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आप जुड़ेंगे ही उस लेवल पे। तो वहां से मेरी लाइफ में दोस्ती शुरू हुई, दोस्तों के साथ काम शुरू हुआ, कुछ ऐसे दोस्त बने जो मतलब मेरे जीवन से भी प्यारे हैं, मेरे जान से भी प्यारे हैं मेरे दोस्त। वो लोगों के साथ मुंबई में मेरा असिस्टेंट बनने का सपना और स्ट्रगल और जो भी रास्ता है वो शुरू हो गया था, और एक साल तक ये बड़ा अच्छा चला। इस बीच एक दिन कैफी आजमी साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हर साल, शबाना आजमी जी और बाबा आजमी जी, दे वर लुकिंग फॉर सिंगर्स जो गाना गा सके उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और एक अच्छा मंच कई नए टैलेंट को भी जगह देने का, क्योंकि वो आंगन ऐसा है कि यू नो हर कोई वहां बैठना चाहता है, वो आप गए होंगे आई एम श्योर जानकी कुटीर में,
0: पृथ्वी हाउस में होता है,
1: पृथ्वी हाउस में, पर पृथ्वी हाउस के ये इधर जो जानकी कुटीर है उसका नाम, हाँ, उस वो उन्हीं का आंगन है जहाँ कैफी साहब रहते थे, तो वहीं पे एक छोटा सा स्टेज लगा के, और
0: वहां करते हैं।
1: उनकी मंशा भी यही है कि नए टैलेंट को, क्योंकि वो इतना प्योरिटी से और इतनी शिद्दत से और इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम है कि इतने बड़े बड़े समझदार गुणी लोग वहां बैठते हैं कि वहां कोई भी गाने को तैयार हो जाएगा, बट ये देखिए ये उनका बड़प्पन है कि उनको नए टैलेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि वो भी अपना टैलेंट नए लोग भी दिखा सके। और मेरे एक दोस्त को, क्योंकि हम गाते थे तो उसको पता चला कि बाबा आजमी को असिस्ट करता था, तो उसने बोला चल तू भी चल, गाना चाहिए उनको, सिंगर्स चाहिए। तो हम बोले मेरा क्या काम है वहां पे, हम तो शोज वोज करते हैं, अब उनको अच्छे सिंगर चाहिए होंगे, नहीं नहीं तू चल। और हम पहुंचे और बाबा आजमी आए बाहर, एक तो वो दिखते भी कैफी साहब जैसे ही है तो काफी ऐसा फील हो रहा था, ओ माय गॉड, यू नो बाबा आजमी। एंड उन्होंने बोला आप सुनाइए, आप क्या सुना सकती हैं। तो हमने गाना गाया कैफी साहब का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बाबा आजमी डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने बोला आप करती क्या है, क्योंकि आप जिसके साथ आई है वो तो मेरा असिस्टेंट है, तो ये आपका दोस्त है, तो मतलब आप सिंगर तो नहीं है, तो आप करती क्या है। तो आई सेड के सर हम अभी डायरेक्शन पास आउट हैं एफटीआई से और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना जीवन इसी में व्यर्थ कर देंगी, मतलब आप गाना क्यों नहीं गाती हैं। तो आई सेड सर वो एक डॉक्टर ने बोला था कि हम गाना नहीं गा सकते हैं जीवन भर। तो बोले वो पागल है, वो डॉक्टर पागल है जिसने ये बात आपको बोली है। अब हुआ ये कि वो इतने साल में ये दीपाली की आवाज हील कर चुकी थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो दीपाली के पास नहीं था क्योंकि आवाज तो पैदा हुई है जिसके साथ आप वो आवाज तो वैसी ही रहेगी ना। गला खराब हो सकता है, आवाज नहीं जा सकती छोड़ के, आप पैदा हुए हैं उसके साथ, उस मशीन के साथ। तो जब बाबा आजमी ने ये बात बोली ना, तो उनके एक अनजान इंसान, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन वो अगर आपके लिए इतनी शिद्दत से कुछ महसूस कर रहा है तो वो उनकी आंखों में दिखता है। तो बाबा आजमी की आंखों में दिखा कि उनको इस बात की छटपटाहट हो गई कि ये बच्ची अपना जीवन बाकी कामों में व्यर्थ कर क्यों रही है जब ये ऐसा गाती है। और ये बात मेरे साथ रह गई, और उन्होंने उस साल हमको वहां मौका भी दिया कैफी साहब के महफिल में ये गाना, उनका सबसे फेवरेट गाना है बाबा आजमी सर का, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं,
0: अनुपमा फिल्म का।
1: और वो उनको मेरी आवाज इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि इस गाने के लिए भैया मार्केट में बहुत बवाल होता है कि हम गाएंगे तो हम गाएंगे, सिंगर्स लूटने के लिए दौड़ते हैं, बट आई वॉन्ट टू गिव दिस सॉन्ग टू यू।
0: वाह वाह वाह,
1: ये कॉन्फिडेंस जब बाबा आजमी सर ने मेरे अंदर दिखाया तो हमको लगा कि यार ये हम सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं।
0: फिर से एक दो रहा गया
1: फिर एक दो रहा गया
0: आगे बढ़ने से पहले वही गाना सुनना चाहिए।

कितनी सुंदर पंक्तियों को चुना आपने गाने के लिए, बहुत शानदार गाना है। और ये इस गाने के सबसे अच्छे अंतरों में से एक है, पलकों की ठंडी सेज पर। क्या बात है, क्या बात है।

0: ये गाना कहता है ऐसी भी बातें होती हैं और दीपाली की जिंदगी में ऐसी ही बातें हो रही थी। गाना वापस लौट गया था
1: बिल्कुल। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज में। जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। सुपर है डुपर है।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार।
0: मनीषा जी,
1: जी जयंत जी,
0: बस एक दिन पहले हमने शिक्षक दिवस मनाया।
1: जी हाँ, सभी शिक्षकों को हमारा प्रणाम।
0: और शिक्षक की बात होती है तो कबीर का एक दोहा बरबस याद आ जाता है,
1: जी।
0: सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समंद की मसी करूं, गुरुगुन लिखा न जाए।
1: वाकई ये बात तो बहुत सच है कि गुरुगुन लिखा न जाए, इसीलिए तो गुरु को और शिक्षक को भी बहुत महत्व हमारे जीवन में दिया गया है। सबसे पहली शिक्षक तो माँ होती है जो उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, और कई बार तो जो पहला अक्षर होता है वो भी बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है।
0: और जैसे घर में माँ चलना सिखाती है, समाज में कैसे चलना है,
1: जी हाँ,
0: ये गुरु से ही सीखा जा सकता है।
1: और वही जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, वो सब वही जाकर संस्कारित होते हैं और समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सके इस योग्य बनते हैं। और उसका पूरा दायित्व शिक्षक का होता है, क्योंकि बच्चे अपना ज्यादातर वक्त तो स्कूल में ही बिताते हैं और बड़ा एक्टिव वक्त बिताते हैं। जयंत जी,
0: जी
1: एक बात और मैं कहना चाह रही थी कि 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस भी है।
0: देखिए कितना अच्छा संयोग है।
1: जी हाँ, और विश्व साक्षरता दिवस आरंभ हुआ था 1967 में, तब से लेकर अब तक हम निरंतर इस दिन को मनाते आ रहे हैं। और आज भी कहते हुए कई बार अफसोस भी होता है कि हमारे देश का भी कुछ हिस्सा अभी तक साक्षर पूर्णतया हो नहीं पाया है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जारी है।
0: अवश्य, और आज की तारीख में, आज के जमाने में जिस साक्षरता की बात की जाती है वो है डिजिटल लिटरेसी।
1: जी हाँ, अगर डिजिटली लिटरेट होंगे, यानी अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स के जरिए डिजिटल दुनिया में कदम रखेंगे तो वो भी बहुत जरूरी है। और कई बार तो घरों में हमने देखा है कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने दादा दादी नाना नानी को डिजिटली साक्षर कर रहे हैं, तो इस चीज का अवश्य ख्याल रखा जाए कि न केवल साक्षरता बल्कि डिजिटली साक्षर होना भी आज के युग में तो बहुत आवश्यक हो गया है,
0: बेहद आवश्यक है। और मनीषा जी, श्रोताओं को इंतजार है कि हम क्या लेकर के आए हैं इस सुंदर संयोग पर उनके लिए।
1: जी हाँ, ये एक संयोग है। और मैं ये चाह रही थी कि हमने जब इतनी सारी बातें की साक्षरता पर और शिक्षकों पर, तो शिक्षकों के प्रति हमारा जो सम्मान है विविध भारती की ओर से, हम उनको जो सम्मान देना चाह रहे हैं वो होगा गीतों का एक छोटा सा पुष्प, क्योंकि कई फिल्मों में आपको याद होगा जैन जी, बहुत सुंदर कुछ गीत पिक्चराइज किए गए हैं कई अभिनेत्रियों पर, कई कलाकारों पर, जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में सीधे सीधे बातचीत है और वो गीत बहुत मीठे हैं।
0: तो चलिए गीतों का ये गुलदस्ता नजर करते हैं अपने श्रोताओं को,
1: और आइए याद करते हैं उन पुराने गीतों को जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का प्यारा सा संबंध हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है।

0: जयंत जी
1: जी,
0: भारतीय मनीषा में अक्षर को ब्रह्म माना गया है और नाद को भी ब्रह्म माना गया है। नाद ब्रह्म की भी हम उपासना करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आज इन गीतों के जरिए और हमने अपने अक्षरों के जरिए जो आपके समक्ष ध्वनि के रूप में आए, हमने उसके जरिए सम्मान दिया है उन शिक्षकों को जिन्होंने अपना जीवन अहर्निश लगा दिया उन छात्रों को शिक्षित करने में।
1: जी, और इन शिक्षकों का सम्मान होता है हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को, जो हमने मनाया
0: जी
1: शिक्षक दिवस के रूप में। और मनीषा जी, शिक्षा का ये तो एक चलन हुआ
0: जी,
1: मगर शिक्षा के और भी कई साधन हैं, बहुत से मार्ग हैं, माध्यम हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, और फिल्म भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है।
0: जी हाँ, बल्कि मैं तो कहूंगी कि जिंदगी के पग पग पर हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन जैसे जयंत जी ने कहा ना कि मनोरंजन की जो हमारे साधन है उनके जरिए भी हम निरंतर शिक्षित होते हैं। जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। किसी ने कहा है ना कि जीवन सिखाती बाद में है, पहले परीक्षा ले लेती है। तो ऐसी ही कुछ कहानियां हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कई ऐसे किरदार हैं जिनको हमने पर्दों पर देखा है और उनके जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वाकई बहुत एजुकेट होते हैं और बहुत इंस्पिरेशन यानी उनसे बहुत ज्यादा हमें प्रेरणा भी मिलती है। फिल्मों में यूं तो नायक नायिका और निर्देशक निर्माता संगीत इन तमाम लोगों से बनकर तैयार होता है एक सुंदर सा गुलदस्ता, और फिल्में हमारे सामने आती हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है कॉमेडियन का।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से हंसते खेलते हुए कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं ये हास्य अभिनेता।
0: जी हाँ, और एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक जमाने में हास्य अपने उच्चतम स्तर पर था। उस जमाने में जयंत जी जो फिल्में बना करती थी उसमें जो हास्य अभिनेता होता था वो बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता था, और उन पर कुछ डायलॉग्स तो ऐसे बने हैं जिन्होंने उन कलाकारों को अमर कर दिया। अब आप मेरा इशारा समझ रहे हैं मैं
1: किस
0: हास्य अभिनेता की बात कर रहा हूं।
1: आज याद करने वाले हैं जाने माने अभिनेता मुकरी साहब को।
0: वाह,
1: और मुकरी साहब का जिक्र होते ही मनीषा जी बताइए कौन सा डायलॉग याद आता है।
0: अरे शराबी फिल्म का सदी के महानायक अमिताभ जी द्वारा कहा गया वो डायलॉग कौन भूल सकता है कि मुझे हो तो नथू लाल जैसी हो
1: वरना ना हो,
0: वरना ना हो। और देखिए हमारे चेहरों पर भी हंसी खिल गई क्योंकि
1: और
0: वो...
1: अपने श्रोताओं को बता दें मनीषा जी, उनका असली नाम था मोहम्मद उमर मुकरी
0: जी,
1: और उनका महाराष्ट्र का जो कोकण इलाका है वहाँ अलीबाग में 5 जनवरी 1922 को उनका जन्म हुआ था और 4 सितंबर है उनका स्मृति दिवस।
0: हम आज मुकरी जी को याद कर रहे हैं, और श्रोताओं मुकरी जी के बारे में कुछ और भी हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्हें फिल्मों में जो पहला ब्रेक दिया था
1: जी,
0: वो ब्रेक दिया था देविका रानी जी ने, और उनके बारे में जो सिफारिश की थी वो थे उनके स्कूलमेट दिलीप कुमार साहब। उन्होंने देविका रानी जी से कहा था कि इन्हें मौका मिले, और उनकी पहली फिल्म आई थी

0: प्रतिमा, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार जी के साथ अभिनय भी किया था।
1: जी बिल्कुल, बॉम्बे टॉकीज की ये फिल्म थी और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो 600 फिल्मों में हमने उन्हें देखा।
0: बताइए इतने बड़े कलाकार और तकरीबन 50 वर्ष तक का उनका जो फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूशन है उसे कौन भूल सकता है।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से नथुलाल याद आते हैं, वैसे एक और किरदार है, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी
0: तैयबअली। ऐसे बहुत ही अमर किरदारों को उन्होंने पर्दे पर उतारा। जयंत जी,
1: तो मुकरी साहब की कौन सी नायाब रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं के लिए आप लेकर आई हैं मनीषा जी?
0: एक रिकॉर्डिंग है हमारे पास जयंत जी, और देखिए इस रिकॉर्डिंग में, बल्कि सुनिए इस रिकॉर्डिंग में, मुकरी जी ने किस बेबाकी से और कितनी जिंदा दिली के साथ अपनी बात कही है कि सुनते सुनते आपको बहुत आनंद आएगा। तो पेशे खिदमत है ये खास रिकॉर्डिंग मुकरी साहब की। आइए श्रोताओ सुनते हैं, ये हम आपके लिए खास तौर पर लाए हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनकर।
2: सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप तो मेरी आवाज से पहचान गए होंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मुकरी। आप तो समझ गए होंगे, कद का वगैरह तो आपने पर्दे पे देख लिया है। वैसे मेरा जो गानों का टेस्ट है वो एक अजीब किस्म का है। मैं गानों में शायरी और धुन को बहुत ही नजाकत और उसके अंदर सही अल्फाज वगैरह चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता वो जैसे आजकल गाने, तूने देखा मैंने देखा, मैंने सुना तूने सुना, आप पीपल के झाड़ के नीचे प्यार करेंगे, वो ये चीजें मुझे साहब ने बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्योंकि गाना हो तो जरा मजे का, कि तबीयत खुश हो जाए, यानी एक मूड आ जाए, एक किसी चीज में खो जाए। ये वो गाने, जैसे मसलन एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन गाना सुनाने से पहले मैं उसका जरा आपको उसकी स्टोरी सुनाऊं कि क्या हुआ। जब साहब मेरी शादी हुई, मतलब शादी हो रही थी, तो उसमें शादियों में जो रस्म और रिवाज होते हैं, तो हमने हमारी बीवी को कभी देखा ही नहीं। हमारे माँ बाप ने हमारी शादी हमारे फिल्म लाइन में होते हुए भी, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने अपनी बीवी को ही नहीं देखा और शादी कर दी। अब हमको ये फिक्र है उसके पता नहीं कितने लंबे दांत होंगे, कितनी ना बड़ी नाक होगी, क्या होगा, चीक चीक के दाग होंगे, पता नहीं। इंसान अपने अपने ख्याल में कुछ ना कुछ सोचता रहता है। लेकिन जब हमारे सामने उस रस्म में आईना लाके रखा तो हमने देखा, वाह वाह हमारी बीवी गोरी चिट्टी है, मुझे बड़ी पसंद आई। लेकिन जब उसने मेरा मुंह देखा तो उसने ये गाना शुरू किया।

0: थे।
1: महमूद साहब ने एक पिक्चर का प्रोग्राम बनाया। महमूद साहब मुझे बड़ा तकदीर वाला समझते हैं। वैसे वाकई में मेरी कुछ कुदरत की बड़ी मुझ पर मेहरबानी है और मैं बड़ा खुदा से और भगवान से और जो ईश्वर से जिससे आपका आप हर एक के अपने अपने जो है उससे मैं बहुत डरता हूँ। और न किसी का दिल दुखाना, न किसी का गिबत करना, न किसी की बुराई करना, इन चीजों से अपने को कोई लेना देना नहीं। काम अपने को मिलता है, रोटी अपने को मिलती है, रहने को अच्छी तरह से मिलता है, तो फिर इन तमाम चीजों से मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात कि अपने को किसी किस्म की लालच भी नहीं है। तो महमूद साहब जब प्रोग्राम में वो कहते हैं यार तू तो बड़ा लक्की है, मैं हर मेरी पिक्चर तेरी वजह से हिट हो जाती है क्योंकि मैंने उसके पड़ोसन में काम किया, कुंवारा बाप में काम किया। तो जब ये महमूद साहब पिक्चर बना रहे थे जनता हवलदार, तो बस बार बार मेरे आ रहे रोज खाने बीने खाने करने लगे कि मैं और तू दोनों इस पिक्चर में क्या तेरा रोल होगा और ये होगा वो होगा। तो जो राजेश खन्ना साहब ने जो रोल किया था वो तो बोले मैं कर रहा हूँ और मेरा रोल तू कर रहा है। बाद में गोलियों के चक्कर में उन्होंने उनका रोल जो था वो राजेश खन्ना को दिया और मेरा रोल जो रोल था वो खुद ने कर दिया। उसके बाद पिक्चर हो गई फ्लॉप, पिक्चर की डिलीवरी भी नहीं गई। तो जिस दिन आए फिर मेरे यहाँ, तो मेरे उनका फैमिली रिलेशन है, तो मेरी बीवी ने खाना भी ना लगा। मैंने कहा महमूद तू बड़ा उदास मालूम हो रहा है। तो कहने लगा यार वो मैं गाना लगाता हूँ, वो मुझसे का भूल हुई जिसकी सजा मुझको मिली। मैंने बोला वो सजा ये मिली कि तूने मेरे को नहीं लिया ना पिक्चर में, इसलिए वो तेरे को सजा मिली कि डिलीवरी नहीं गई।

मैंने हीरा के अंदर सुल्तान अहमद साहब की पिक्चर में काम किया, हीरा में। तो कल्याण जी आनंद जी साहब ने कहा कि भाई जो ये गाना मुकरी का है ये किसी गाने वाले से नहीं, हम मुकरी से गवाएंगे। सुल्तान अहमद कहने लगे साहब मुकरी कैसे गा सकेगा, वो तो गाना गाता ही नहीं। कहने लगा नहीं हाँ हम उससे गवा लेंगे। तो किशोर कुमार साहब ने जो मेरे साथ जो सुनील दत्त का प्लेबैक दे रहे थे वो गाना किशोर साहब ने मेरे साथ जरा मेहनत की उस गाने में और मैंने वो खुद गाना गाया। वैसे पहले बॉम्बे टॉकीज में मैं पहला, मुझे जब बॉम्बे टॉकीज में दिलीप कुमार साहब के साथ काम मिला प्रतिमा में, जो मेरा रोल था जिससे मैं फिल्म आर्टिस्ट बन गया, तो एक गाना था ठुमक ठुमक क्यों छलना मेरे अंगना आओ जी अजी आओ जी अजी आओ जी आओ जी ठुमक ठुमक। ये गाना साहब महमूद के वालिद मुमताज अली साहब ने मुझे बराबर इसकी रिहर्सल वगैरह करवा के मुझे तैयार किया और ये मैंने खुद अपने से गाया। वैसे मैं कोई गाना बिना गाने वाला तो मुझे आता नहीं है, ना मुझे ताल सुर का पता रहता है, लेकिन ये एक गाना गाया था और मैंने फिर ये गाना गाया जो हीरा के अंदर मैंने गाया, वो सुन लीजिए। मैंने मेरी अपनी आवाज है।

0: जयंत जी, मुकरी जी की आवाज सुनकर उनकी पूरी शख्सियत सामने आ गई और बहुत आनंद आया उनके इस रिकॉर्डिंग को सुनकर। बहुत बेबाक और बहुत हंसते हुए उन्होंने अपनी बात कही थी, बहुत खुश मिजाज व्यक्ति।
1: मनीषा जी, हास्य अभिनेता जिस तरह से बहुत जरूरी हिस्सा होता है फिल्मों का, वैसे ही फिल्मों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है फिल्म का संगीत।
0: वो तो मैं कहती हूँ फिल्मों की आत्मा है।
1: बिल्कुल, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जहां बात हो रही है, आज के दिन याद आ रहे हैं विशेष रूप से संगीतकार आदेश श्रीवास्तव।
0: बहुत कम उम्र में एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जो हमारे दौर के थे, आदेश श्रीवास्तव जी, उन्हें हमने खो दिया। ये भी एक बहुत दुखद पहलू रहा कि 4 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है और 5 सितंबर उनका स्मृति दिवस। बहुत कम उम्र में, मैंने कहा ना, जैसे 51 वर्ष की उम्र में वो हमारे बीच से चले गए। कुछ एक बार विविध भारती को ये मौका मिला था इस युवा संगीतकार से मिलने का, और आदेश श्रीवास्तव साहब एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए थे जिनका संगीत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।
1: जी, जानी मानी गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की छोटी बहन विजेता पंडित से उनका विवाह हुआ था।
0: जी हाँ, और सुलक्षणा पंडित जी और विजेता पंडित जी पंडित प्रताप नारायण की पुत्रियां हैं, तो पूरा जो परिवार है उनका वो संगीत में रचा बसा है। इसके अलावा उनके जो भाई हैं सुलक्षणा पंडित जी के, जतिन ललित, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में जतिन पंडित जी ने भी बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया। आदेश श्रीवास्तव जी उसी परिवार से थे। जन्म उनका हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर में।
1: जी, और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन भी किया था, सना नाम की ये शॉर्ट फिल्म थी। और आपको बता दें कि सबसे पहली बार उन्हें जो ब्रेक मिला था फिल्म संगीत के लिए, वो थी फिल्म कन्यादान 1993 में, और उसमें लता जी और उदित नारायण का गाया हुआ एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, आगे आओ प्यार करें। इस फिल्म से सिलसिला शुरू हुआ और फिर बहुत सी फिल्में हमें मालूम है, चलते चलते, बागवान, कभी खुशी कभी गम, आंखें, रहना है तेरे दिल में भी एक गीत उनका था।
0: फिल्मों में उनके गीत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और आज हम श्रोताओं उनकी वो रिकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आए हैं जो हमने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी। विविध भारती तशरीफ लाए थे आदेश जी और उनसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। उनकी स्मृतियां हमारे पास हैं और वो हमारी धरोहर हैं।
1: तो चलिए सुनते हैं ये नायाब रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म लाइन में आने से पहले मैं बता दूं श्रोताओं को कि मैं जबलपुर का रहने वाला हूं और जबलपुर में मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था। तो हमारे एमपी के पूरे स्कूलों का कॉम्पिटिशन था म्यूजिक, तो उसमें मैं एक ही गाने में ड्रम्स बजा रहा था और एक कोंगा होता है वो बजा रहा था, और उसमें जज आए थे श्री सपन जगमोहन जी। तो उन्होंने मुझको वहाँ पे देखा एंड देखा कि एक ही गाने में एक दो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कभी टर्न वो चेयर होती थी रिवॉल्विंग चेयर, उसमें पलट के ड्रम्स बजा रहा हूँ, फिर टीचर बेचारे मेरे स्टिक लिए खड़े रहते थे, वो स्टिक पकड़ाते फिर मैं ऐसा सब चेंज होता था। तो मेरे को जगमोहन अंकल ने बुलाया, बोला कि आर यू प्रोफेशनल? आई सेड नो, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो स्कूल का स्टूडेंट हूँ, बस स्कूल की तरफ से आया हुआ।
3: क्या उम्र रही होगी?
2: आई वॉज आई थिंक 13 साल का हुआ मैं। तो बाद में जब सपन अंकल से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला तुम बॉम्बे आना चाहोगे? तो मैं ऐसा सब बोलते हैं बट कोई बुलाता नहीं है। बोले नहीं, एक शर्त पे, तुम जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे उसके बाद तुम बॉम्बे में आ जाना, मैं तुमको रखूँगा अपने साथ। तो अब उन्होंने एक जो थी एक लालच तो दे दी थी बॉम्बे की, और मुझको अपने सपने आने लगे बॉम्बे के कम उम्र में ही। तो मुंबई के मुझको समय सपने आने लगे और मैं भी सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो वाकई में मुझको यहाँ बुलाएंगे। और मैं मेहनत पढ़ाई में मैंने चालू कर दी, और वो दिन आ गया जब मैंने 11th का एग्जाम दिया एंड तो मैं सीधा बॉम्बे आया। वाकई मैं रिजल्ट के लिए वेट नहीं किया, मैंने एग्जाम्स दिए और आ गए। मेरे को जब आया तो मैं यहाँ अंकल के पास आया तो बोले अरे तुम तो सचमुच में आ गए। तो मैं कहा आपने बोला था इसलिए आ गया मैं।
3: रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा आपसे?
2: पूछा उन्होंने कि रिजल्ट, मैं कहा रिजल्ट तो अभी नहीं, मैं एग्जाम दे के आया हूँ, तो दो महीने अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर चला जाऊंगा। तो बोले अच्छा। फिर उन्होंने काफी समझाया और इधर के हिसाब से ट्रेनिंग, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह चालू हुई। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, इतनी स्ट्रगल की है इस लाइन में। जो आज मेरे सीनियर म्यूजिशियन है, जो आज मेरे साथ बजाते हैं एज ए म्यूजिशियन, वो हमेशा उनकी हर किसी की मैंने दुआएं लेके और आशीर्वाद लेके इस लाइन में कदम रखा।
3: पहली फिल्म कौन सी मिली आपको?
2: सबसे पहली फिल्म मैंने की एक कन्यादान, जो सुधाकर बुकाडे जी ने फर्स्ट ब्रेक दिया मुझको। और जैसा कि हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ, एक आदमी का नाम इसमें हमेशा लेता हूँ जिसने मेरे को ये फिल्म दिलाई थी, वो थे जैकी श्रॉफ। फिर सुधाकर बुकाड़े जी आए एंड सेटिंग की, और एक ही दिन की सिटिंग में उन्होंने कुछ 32 सॉन्ग्स निकाले मेरे से उसमें से फिर हमने सेलेक्ट किए तब जाकर उनकी लगा था मैं चार तीन फिल्म उनकी कर चुका हूं अभी चौथी फिर उनकी लॉन्च होने वाली सेकंड फिल्म थी फिल्म आओ प्यार करें रिलीज पहले वो हो गई तो उसका गाना था बहुत पॉपुलर हुआ था हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका ये काफी हिट हुआ उस बट एक और गाना था चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर और क्योंकि एक गाना और था जिसमें

0: एक स्त्री का भी हाथ होता है, ऐसी जीवन संगनी पा करके आपको अपने जीवन में क्या बदलाव, रचनात्मक बदलाव महसूस हुआ?
1: विजयदा का, जैसे आपको बताऊं मैं कि विजयदा से शादी करने के बाद मेरा, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, मेरा करियर चेंज हो गया। और कई लोग उससे इस मामले में चिढ़ते भी हैं कि इसने जो है इसको चेंज कर दिया। अच्छा था, म्यूजिशियन था, हमारे साथ काम करता था, अब म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। तो म्यूजिक डायरेक्टर बनाने में उसका हाथ नहीं है, लेकिन मेरे को चार्जअप करने के लिए कि तुम जिंदगी भर म्यूजिशियन बन के क्या करोगे। और जब अच्छा मेरा क्या था कि मैं गाने, आपको बताऊं मैं एज ऑफ व्हेन आई वाज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड, और मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम चले थे तब गाना बनाया था मैंने इंदिरा जी के लिए जबलपुर में। तो मेरे को एक था कंपोजिशन का, एक शुरू से शौक था। फिर बॉम्बे आके मैं 79-80 से मैं गाने बना के रखता जा रहा था। मेरे पास स्टॉक में कम से कम 2000 गाने थे उस समय,
0: अपना एक बैंक
1: की बना के रखता। मेरी मम्मी पूछती थी तू बुला किसी को सुनाता तो है नहीं, तू बनाता ही रहता ऐसा क्यों? मैं कहा अभी नहीं, जब होगा तब सुनाऊंगा मैं। तो ये ऐसा होता था शादी के पहले, माँ मेरे को काफी वो करती थी,
0: कंट्रोल करती थी।
1: शादी के बाद विजेता आ गए तो विजेता ने बोला कि, तो फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा फिर मैं एज ए म्यूजिशियन कहीं पे भी काम नहीं करूंगा। बड़े भाई हैं, उनने भी काफी मुझको इसमें सपोर्ट किया। मेरे स्ट्रगल पीरियड में जब मैं बॉम्बे आया तो वो मेरे साथ थे यहाँ पे, और आज भी उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। बट वो जबलपुर में है, मैं बॉम्बे में हूँ। आज भी मैं जैसे बनारस भी गया था मैं बीच में, तो बनारस में इतना प्यार, वहाँ पे एक इंटीरियर में इतना प्यार मिलता है जब उनको पता चलता है तो कि फिल्म लाइन से जुड़े हैं, गाना सुनते हैं लोग, तो इतना वो लोग इज्जत और इतना मान सम्मान देते हैं और उससे ज्यादा प्यार देते हैं।
0: आदेश जी, आपकी यादों में कहीं बचपन के किसी उम्र के हिस्से में रेडियो किसी रूप में जुड़ा रहा?
1: मैं जबलपुर में था तो एक शाम को 6 बजे प्रोग्राम होता था युववाणी का। वो युववाणी में होता था कि एमपी के सब कलाकारों को मौका मिलता था, फिर उसमें मैंने भी गाया था। लेकिन जब तक गाया नहीं था तो मैं शाम को 6 बजे वो बैंड वाला रेडियो होता था, वो धागा रखता था उसमें सब। और मेरे मोहल्ले में भाई के बगीचे में सबसे बड़ा रेडियो मेरे घर में ही था, तो सब आ जाते थे सुनने के लिए। फिर मैं उसको लाउड करके तमाम उसमें एम्पलीफायर वगैरह लगा के मैंने और स्पीकर एक्स्ट्रा लगा के लगाता था। इंटीरियर में आज भी हमारे जो देहाती खुशबू जिसको बोलते हैं, जो गाँव में, आज भी रेडियो को ही ज्यादा महत्व देते हैं, और आज भी विविध भारती ही सुनते हैं। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं अपने चाहने वालों से बात करूं, और उसका जरिया है विविध भारती का ये प्रोग्राम।
0: मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अपने बचपन के और कॉलेज के जमाने में वो कौन से गीत खास उससे आप गुनगुनाया करते थे?
1: मेरा एक फेवरेट गाना था, मैं बहुत गाता था वो, कांटों से खींच के आंचल।
0: अच्छा, क्या वजह थी इसकी?
1: ये उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता था मुझको, और फिर उसके बाद मेरे को मदन मोहन जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे। मुझको सबसे ज्यादा पसंद थे किशोर दा।
0: अच्छा,
1: किशोर दा के गाने बहुत गाता था मैं, स्टेज पे भी गाता था और फिर रफी साहब पे गाता था। किशोर दा के मैं एक्सप्रेशन का बहुत, वो जो एक उनमें कला थी, जिस आर्टिस्ट के लिए गाते थे ऐसा लगता था वो वही आर्टिस्ट गा रहा है।
0: मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि संगीत के सुरों के लिए वो जो एक लगाव होता है वो आपके अंदर पहले से था, और घर में ऐसा कोई माहौल था जिससे आपको और ज्यादा प्रेरणा मिली?
1: ये क्या था कि बचपन से ही घर में ऐसा था कि म्यूजिकल माहौल था मेरे, बट शौकिया तौर पे था। और उसके बाद फिर वहाँ जब जबलपुर से यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने जो गुणी जनों के साथ जो काम करने का मुझको मौका मिला, मैं सोचता हूँ मैं बहुत लकी था। बिगनी में साल दो साल भर पंचम दा के साथ भी था मैं, और मैंने काम किया शंकर जी के साथ भी एज ए म्यूजिशियन, ओपिनियर साहब के साथ, सलीम दा के साथ भी मैंने मौका मिला मुझको। और उसके बाद फिर मैंने 1982 में ज्वाइन किया था अपना श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, जो कि लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी का जो काम करने का जो एक तरीका, एक जो ढंग, वो एक ऐसा लगता था कि ये स्कूल है, और वहाँ इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। और मैं सोचता हूँ कि उसी के कारण आज वही प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो जितनी लंबी इनिंग उन लोगों ने खेली है और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि आज के जितने भी नए संगीतकार हैं वो कोई भी सोच भी नहीं सकता उनके बारे में। जब मैंने ज्वाइन किया था उनको तो उत्सव की रिकॉर्डिंग, बेला महका रे महका,
0: बहुत खूबसूरत गीत।
1: फिर बैकग्राउंड म्यूजिक था उत्सव का, उसमें मैं जब बजा रहा था तो उसमें लयकारी थी पूरी, और जो प्यारे जी ने किया था अरेंजमेंट उसमें 9 मात्रा 6 मात्रा ये सब कुछ आवर्तनों के बाद आके एक साथ सम आता था, और मुझको जो सौंपा गया था वो था सम देना। तो अगर मैं किसी कोई आड़े को सुन रहा हूँ, अगर कान मैंने ध्यान दिया तो मेरा सम गया। और फिर पंचम दा की जो मैं मजा आया, उनके एक रिदम का एक अलग था क्लियरिटी, उनकी हर रिकॉर्डिंग में क्लीननेस बहुत, कि अगर एक

0: हाँ जी, टैमरिन बज रही है तो एक उसका कुछ अगर बीट रखी होना तो उसकी एक अहमियत है उस बीट की। है दिखने में छोटा इंस्ट्रूमेंट है बट वो आपको रजिस्टर हो जाएगा, कभी बोल ना बोल के साथ वो आएगा ही आएगा। जैसे ट्रायंगल एक था, ट्रायंगल का यूज़ बहुत किया पंचमदा ने अपना हम किसी से कम नहीं के गानों में भी किया था, और पहाड़ी तो खैर बहुत उन्होंने यूज़ किया पहाड़ी राग में।
1: आपके म्यूजिक की जो विशेषता क्या है जिसमें आदेश श्रीवास्तव एक मौलिक संगीतकार के रूप में नजर आता है?
0: देखिए मेरा क्या है कि मैं बहुत ओरिजिनल आदमी हूँ, मैं आर्टिफिशियल चीज़ों से बहुत चिढ़ता हूँ, मैं तो वही चीज़ मैंने अपनाई है अपने म्यूजिक में भी। तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा अपना अलग गाना छाप छोड़ूँ। लोगों ने खूब आइटम दिए, लोगों ने डबल मीनिंग्स गाने दिए, बट मैंने कहा कि नहीं, उस दरमियान जो था मैंने कहा नहीं, मैं कोई मेलोडी पकड़नी।

0: श्रोताओं, मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी की ये रिकॉर्डिंग हमने सुनी, आपसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। ये रिकॉर्डिंग जो थी ये हमारे संग्रहालय से हम ढूंढ कर लाए थे और आदेश जी को याद कर रहे थे। हमने आज आपको इस कार्यक्रम का संपादित अंश सुनवाया, कभी मौका मिला तो आपके तो आपको इस कार्यक्रम को पूरा भी सुनवाएंगे। आज की विविधा के अब हम अंतिम सेगमेंट पे आ गए हैं जहां एक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है।
1: जी मनीषा जी, हमने एक संगीतकार को याद किया और एक और संगीतकार को याद करेंगे जो अपने आप में बहुत महान संगीतज्ञ थे, डॉक्टर भूपेन हजारिका।

0: इस अमर गीत के गायक
1: जी
0: असम के डॉक्टर भूपेन हजारिका, बल्कि मैं कहूंगी असम ही क्यों, पूरे भारत वर्ष के हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका, पूर्वोत्तर के संगीत को पूरे भारत वर्ष में प्रतिष्ठित करने और लोकप्रिय करने का महत्वपूर्ण दायित्व डॉक्टर भूपेन हजारिका ने संभाला था।
1: जी, इस महान कलाकार का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था असम के सदियां ग्राम में।
0: हाँ।
1: और हम उन्हें इसी उपलक्ष में आज याद कर रहे हैं। मूलतः इन्होंने असमी भाषा में बहुत से गीत तैयार किए और ये बाद में अनुवादित हुए बांग्ला और हिंदी में।
0: वैसे कई भाषाओं में उनका रचना संसार अनुवादित हुआ, लेकिन बांग्ला में बहुत अधिक पाया जाता है और बांग्ला के बहुत अच्छे जानकार थे डॉक्टर भूपेन हजारिका।
1: और इनके गीतों में विश्व बंधुत्व और एकात्मिकता की बात हमेशा ये करते रहे।
0: जी हाँ, संगीत तो वैसे सार्वभौमिक सार्वकालिक होता है और जब ऐसे सुदूर पूर्वोत्तर के अंचल से आई हुई खुशबू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महकने लगी, तब हमारा हिंदी का जो सिने संसार है वो और अधिक समृद्ध हुआ। डॉक्टर भूपेन हजारिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसे हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। वैसे इस रिकॉर्डिंग की एक खासियत है, इसमें भूपेन जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हम उसका चूंकि कुछ अंश अपने श्रोताओं को सुनाएंगे, उन्होंने उसमें संगीत के, खासतौर पर लोक संगीत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग है इसके लिए हम हमेशा याद करते हैं छाया गांगुली जी को, जिन्होंने डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की ये इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग हमें दी है, विविध भारती के लिए की है, तो उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और आइए सुनते हैं इस अमर रिकॉर्डिंग को, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी धरोहर है। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी से बातचीत की है राम सिंह पवार ने।
2: भूपेन जी, अपने उभरते बालिकाली के बारे में कुछ कहेंगे?
3: मैं एक साधारण सांस्कृतिक मजदूर हूँ और हमारा सदिया गांव जो है उत्तर पूर्व भारत सीमांत में है, अभी अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर में है
2: जी।
3: तो वहाँ, यहाँ नदी, वहाँ पहाड़, सबके बीच हम कूद के खेल के बड़े हुए थे। हमारे माता जी बहुत अच्छा गाते थे, वो बंगाली रविंद्र संगीत गाती थी
2: जी
3: माँ, और पिताजी वैष्णव संगीत गाते थे, स्कूल टीचर थे पिताजी, स्कूल टीचर थे
2: जी।
3: तो वातावरण संगीत का था घर में, तो इसलिए यहाँ पारिपार्शिक जितना छंद है, जितना सूर है, वो तो आया उसी के,
2: ये तो विरासत में
3: आपको मिला। अभी भी याद है, माँ गाती थी लल्ले बाई,

0: मैट्रिक पास किया 14 साल उम्र में। अरे इंटरमीडिएट गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में किए, उसके बाद लड़ाई आया, महायुद्ध आया, अंधेरा हो गया आसाम, तो हम आके कलकत्ता में चले आए थे। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे, बी एम ए पोलिटिकल साइंस में एम ए किए थे हम
1: जी
0: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1946 में। उसके बाद हम जाके थोड़ा राजनीति पढ़ाया एक छोटा कॉलेज में गुवाहाटी में। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया।
1: अच्छा।
0: ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन करके टेक्स हो गए थे, शिलोंग गुवाहाटी स्टेशन ओपन किया हम लोगों ने। उसके बाद दिल्ली आए थे। उसके बाद भारत सरकार हमें मास कम्युनिकेशन में
1: अच्छा
0: मास्टर्स डिग्री करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा
1: जी,
0: कोलंबिया विश्वविद्यालय।
1: मास कम्युनिकेशन में पीएचडी करने तक और इस बीच पढ़ाई के दौरान निश्चय ही आप संगीत से तो जुड़े रहे।
0: हाँ।
1: तो क्या हम आपसे आपका अपना क्रिएशन जनगीत थोड़ा सा गुनगुना
0: मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरा बहुत मशहूर डोला, डोला वाला
1: जी,
0: उसमें हम सोशल कॉन्शियसनेस देना चाहते थे
1: जी,
0: दायबद्धता जो है एक सॉन्ग राइटर का वही देना चाहते थे हम। डोला प्रतीक है शोषण के, डोला राजा महाराजा लोग जाते हैं, तो यहाँ भी जब क्रिएट करने लगे हम
1: जी
0: आधुनिक गीत बोलने समय हमें दुख होता है क्योंकि आजकल आधुनिक गाना सुन के कभी डर जाता हूँ। डोला के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारा इसमें जिसको सब मिला, प्राचुर्य और अभाव का जो संघात होता है उसी को हम गतिशील करके सतर्क कर देना चाहते थे। डोला डोला डोला

0: दुनिया।
1: भूपेन जी, स्वतंत्रता के पहले कुछ अपने जीवन की अनुभूतियाँ।
2: गांधी जी
1: जी,
2: हमारा आसाम में कभी कभी आते थे जब, तब मेरे पिताजी का नाम है नीलकंठ हजारिका, तो गांधी जी आके कहते कि वो हजारिका का दो बच्चा है, भूपेन और बहन का नाम था सुदक्षिणा, ये दोनों का भजन सुनना चाहते हैं। तो पहले हमें आशीर्वाद मिला था महात्मा गांधी दोनों, वो क्या गाए थे, वो भी एक ब्रजावली भाषा में, असम के पुराना असमिया में थे। अच्छा।

0: शंकर देव की अनुभूति, गांधी जी की अनुभूति, इसमें बड़े हुए हैं हम लोग। इसके ऊपर और दो महान कलाकार थे, असम के ज्योति प्रसाद और विष्णु प्रसाद
1: जी।
0: ये दोनों बहुत बड़ा विप्लवी कवि थे और कंपोजर थे। ये दोनों हमें ऐसा इंस्पायर किया था कि 13 साल में हमने भी लिखना शुरू किया। अग्नि युगर फिरिंगति मय नतुन अहम गढ़ीम, नतुन भारत गढ़ीम, नतुन भारत गढ़ीम, सर्वहारार सर्वस्व पुनर्फिलाय आनीम। सर्वहारा का सर्वस्व हम फिर लोटा के ले आएंगे, एक नया भारत बनाएंगे जहाँ धर्म व्यवसायी था नहीं था, जहाँ धर्म व्यवसायी का जगह नहीं रहेगा इत्यादि। तो 13 साल उम्र में वो लिखे थे। एक बात है कि हमारा असम पूर्व प्रांत में है, वहाँ है चाइना, इधर बर्मा है, यहाँ तिब्बत है। तो हम लिखे थे कि हम कुछ प्रतिध्वनि सुन रहे हैं और ट्यून भी ऐसा किए थे, दर डा डा डा डा डा डा डा, प्रतिध्वनि सुनो प्रतिध्वनि सुनो प्रतिध्वनि सुनो मैं प्रतिध्वनि सुनो मोर गाँव रे सीमारे पार्टीर सीपार नतुन सियार तीर प्रतिध्वनि सुनो। I listen to the new sounds that is coming beyond, from beyond the hills. I don't know what are there. Pratidhani, ek Indian youngster ka, ye man ka ek ichha hai ki Asia mein aur kahan kahan kya hai charo taraf. Aaj sunana chahta hu ye Asamiya gana ka beautiful translation kiye the hamara Shivdas Banerjee, Bengal ke kavi, geeti kavi। प्रतिध्वनि सुनी और प्रतिध्वनि सुनी।

0: आजादी से पहले स्वतंत्रता के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे थे। गीत, संगीत, अभिनय, फिल्म और रंगमंच ने भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। और आप भी उस समय इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उस समय के कुछ संस्मरण और उस दिशा में आपके प्रयास।
1: अमेरिका में हम जब डॉक्टरेट कर रहे थे
0: जी,
1: तब सौभाग्य हुआ था पॉल रॉबसन से मिलने का। उसके बाद उनके पीपल सॉन्ग जो थे सारा दुनिया, जैसा ओल्ड मैन रिवर, यू डोंट से नथिंग, यू जस्ट कीप रोलिंग अलोंग, ये सब जब सुना वहाँ, साढ़े चार साल के बाद जब ब्रह्मपुत्र के किनारे फिर चले आए, तब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहे थे, यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर। उसमें कैफी आजमी साहब थे, सलील चौधरी थे गाने में, हम लोग क्रिएट कर रहे थे, भूपेन हजारिका आसाम में, सुरेंद्र कौर पंजाब में, जसवंत ठाकुर बड़ौदा में, इसके बाद थिएटर में शंभू मित्र, उत्पल दत्त, बलराज सहनी यहाँ बॉम्बे में। तो उसमें हम लोग एक नया कंटेंट देना चाहते थे, लोक संगीत वगैरह को फिर उद्धार करके, पुनरुद्धार करके उसको ठीक से फिर नया क्रिएशन में लोक संगीत के ऊपर रचनाएं करके हम लोग स्टेज, फिल्म, माइक्रोफोन, मोशन पिक्चर, स्टेज,
0: तो आजादी के आंदोलन में सबके द्वारा आपने
1: वो तो स्वाधीनता के बाद के बाद इप्टा ज्यादा ये हुआ था
0: जी।
1: और हम आके ज्वाइन किए थे अमेरिका से लौट के आए थे 52 साल में, आफ्टर माय पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ आके जब गाना लिखना शुरू किया, चाय बगान है हमारा असम में, हाईएस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड इज असम। तो वहाँ उन लोगों के बात कह के टू लिप्स एंड ए बड, आदमी आज टू लिप्स और एक बड हो गया, और कौन इनको डिस्ट्रॉय करने आए हैं, ऐसा एक रिवोल्यूशनरी नहीं है लेकिन सोशल कंटेंट स्ट्रॉन्ग था। तो उसी वो एक एटी कोली दुटी पात रतनपुर बागीसात लह बहिया हाते रे कोने नो सिंगीले ओ कोने नो सिंगीले, इसे को हमारा गुलजार भाई,
0: अच्छा
1: मेरे बहुत अच्छा दोस्त है और हमें समझते भी है
0: जी,
1: तो हिंदी में रूपांतर करके ये प्रचार कर रहे हैं अभी भी। एक कली दो पत्तियां, और गुलजार भाई खुद प्रेजेंट किए हैं कमेंट्री देके।
2: एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमूई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी, एक पूरा लैंडस्केप है, और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं।

0: भूपेन जी, विद्या अध्ययन के दौरान और वैसे भी आप तो सारी दुनिया घूमे हैं, तो विश्व एकात्मता अथवा यानी विश्व बंधुत्व के बारे में भी आपने निश्चय ही कुछ सोचा और लिखा होगा।
1: जी, हम जो जब दुनिया देखे थे तो ऐसे देखे थे कि ड्रम मुंबसा से लेकर बेल्जियम कांगो तक
0: जी
1: अफ्रीकन लोग कैसे ड्रम को यूज करते हैं, ये अध्ययन करने के लिए भी हम गए थे। इसलिए सारा दुनिया घूम के जब देखा कि ऐसे जैसे मिसिसिपी में सुना जो

0: मेलांकोली बेब डोंट क्राई, मत रोना मेरा बेटा मत रोना। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैं आके सुना, ओ बिहुरेनो बिरीना ओ आयता बिहुरेनो बिरीना पार। सो आई वांटेड टू बी ऑलवेज एन इटर्नल ट्रैवलर, तो इसलिए एक गाना लिखा था, आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर, पृथ्वी आमाके आपन करेछे, भूले छी निजेर घर, घर ही भूल गए, सारा दुनिया हमारा घर हो गया। तो गुलजार जी ने बहुत अच्छी तरह से तो रूपांतर किए थे, याजाबर ट्रांसलेशन किए हैं, आवारा
1: जी,
0: हाँ आवारा हूँ।

0: संगीत का विस्तार अपार होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। महान संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका को ये हमारी आदरांजलि थी। आज हमने उन्हें याद किया विविधा के इस अंक में, और अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा
1: जी बिल्कुल। और संगीत की इन बातों में, इन्हीं यादों में डूबते हुए, लबरेज रहते हुए हम अपने श्रोताओं से आज विदा ले रहे हैं।
0: जी हाँ, अब दीजिए इस अंक को समेटने की इजाजत। आप सभी से अनुमति लेती हूँ मैं मनीषा जैन
1: और जयंत पात्रीकर,
0: हम दोनों ही का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
1: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है राकेश रोशन के सदाबहार गीतों की माला से। आज राकेश रोशन का जन्मदिन है, उनको विविध भारती परिवार की ओर से, आपकी तरफ से, हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, बिंदिया गोस्वामी और राकेश रोशन की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, धुन है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।
3: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत रचना इंदिवर की, संगीत रचना राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है काम चोर।

साथियों कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं राजेश रोशन, फिल्म का नाम है खेल।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों की प्यास से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सुनेंगे हम नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है किंग अंकल।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत रचना राजेंद्र

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो दिव्या माउस में लाइन लगी होती
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
2: चिट्ठी ना कोई संदेह
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है ढोंगी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

सभी सुनने वाले दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। संगीत के इस सुरीले सफर में आप हैं हमारे हम सफर। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर आपको बता दें क्या है आज की इबारत। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, होली के रंग फीके बेनूर थी दिवाली। एक मोड़ पर वो मुटियार मिली, मुझको तो रांझे की हीर लगी। खोया मैं उसकी वो मेरी बातों में, और समा हुआ रंगीन। जाना था जापान, पहुंच गई चीन। करे पूजा जमाना जिसकी, वो तस्वीर हो तुम न जाने किसकी किस्मत में हो तुम। इजाजत हो तो हम भी मुकद्दर आजमाएं, मीठे पान दी गिलोरी, रास्ता नाप रही जुगनी से कह दूं। तेरे बिन मर जाना मैं तेनु प्यार करना, तुझे पाके जमाने की खुशी पाई है, तेरी उल्फत ये रंग लाई है। हो उजाला या अंधेरा, कहीं ना छूटे हाथ मेरा, कोई मेरा ना तेरे बिन साथ निभाना मेरा। शोला है या बिजुरिया, उतर जाए रगों में तो नशा है, आदत पड़ जाए तो सजा है, इसलिए आज झूम ले आसमां को चूम ले, ये अनमोल जमाने फिर नहीं आने वाले। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर हमें बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं आपके कुछ संदेश। इश्क के रंग में डूबे दिलों की रंगत रौनक को इजाफा करती, रंगीन बनाती रूमानी गानों से सजी इबारत है ये। रस्मों रिवाज त्योहार सभी में महबूब के दीदार की तमन्ना रहती है, इन्हीं हसरतों उमंगों तरंगों में दिलों की दुनिया सिमटी रहती है। सारी बातों की एक ही बात होती है, मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत। आज सुरीला सफर वाहन के साथ रास्ते सड़कों पर तय होने वाला है, मौसम सुहाना है, सफर भी आनंददायक रहेगा। तस्वीर शब्द पर आधारित हिंदी फिल्मों के कई बेहद लोकप्रिय और सदाबहार गाने हैं, इनमें से सबसे हिट गाना तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है जो इनको बहुत पसंद है, पर आज बात तस्वीर की नहीं होगी। आज की इबारत में तो जैसे नए पुराने यादगार गीतों की पूरी महफिल सजी है। इन गीतों का जादू यही है कि इनके बोल हमारी भावनाओं को हमसे पहले पहचान लेते हैं। जो बात हम किसी से कह नहीं पाते, वही बात गीत बड़ी आसानी से हमारे दिल की आवाज बनकर कह देते हैं। शायद इसीलिए गाने सुनते हुए हम सिर्फ संगीत नहीं सुनते, बल्कि अपना ही कोई बीता हुआ पल, कोई रिश्ता और अपने मन की अनकही कहानी सुनते हैं। गीत खत्म हो जाता है, लेकिन उसका एहसास देर तक दिल में गुनगुनाता रहता है। बिल्कुल सच बात है ये। मन में कुछ चीजें समय बीतने के साथ खुद ब खुद स्पष्ट हो जाती है। जिंदगी में खुशी आएगी तो दुख भी आएगा, असुरक्षा आएगी तो डर भी आएगा। सो जो है वो आज इसी पल में है, शोला हो या फिर चमकती बिजुरिया, जिंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा झेलना पड़ता ही है। तो इन चमकते गीतों के सहारे हम तय करेंगे आज का सुरीला सफर। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ मुलाकातें उम्र नहीं पूछती, बस दिल में उतर जाती हैं, और फिर बरसों बाद भी यादों की खिड़की खोलो तो वही रंगीन शाम, वही हाथ और वही अधूरा सा सफर सामने बैठा मिलता है।
मन के खाली नगर में किसी की तस्वीर उभरने के खूबसूरत रूहानी एहसास को बयां करती है। ये वो तस्वीर एक ठंडी हवा के झोंके की तरह पूरे वजूद को महका देती है और सालों का खालीपन को रूहानी एहसास से भर देती है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, फिल्मों में मुख्य अभिनेता का कार, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर का किरदार निभाना भारतीय सिनेमा में काफी लोकप्रिय रहा है। ऐसी फिल्मों में अक्सर एक्शन, इमोशन और सफर का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। तो ऐसी ही कुछ मशहूर फिल्मों के गीत हमने लिए हैं आज के सुरीला सफर के लिए, जिसमें हीरो मुख्य रूप से किसी गाड़ी को चलाने का काम करते हैं। ...1971 की क्लासिक बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी कारवां। धोखे से कराई गई शादी से घर से भागी लड़की सुनीता और बंजारों के दल के साथ ट्रक चलाने वाले मोहन, सफर के दौरान दोनों को हुआ एक दूसरे से प्यार और दूसरी तरफ सुनीता की तलाश में उस कारवां के पीछे उंडे। रोमांचक मूड, एक्शन और गानों के दरमियान साजिश का पर्दाफाश होता है। खलनायक अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और मोहन सुनीता की प्रेम कहानी होती है पूरी। तो बताइए कौन थे मोहन, सुनीता और खलनायक, और इस फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताएं हमें। तब तक आइए सुनते हैं इस गीत को, यानी कि आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ कार्यक्रम की, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

साथियों अपने विचार अपनी बातें अपने पैगाम और संदेश आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में आगे बढ़ते जाएंगे। फिल्म का नाम था कारवा। जितेंद्र आशा पारेख अरुणा ईरानी मदनपुरी और जूनियर महमूद ने इस फिल्म में भूमिका निभाई थी और निर्देशक थे नासिर हुसैन। हमारे साथियों ने लिखा है कि राजेश खन्ना और देव आनंद के बिना कोई सफर सफर नहीं होता जिंदगी का। एक वक्त था जब जिंदगी बेरंग थी, फिर तुम आए और सब कुछ बदल गया। हम एक दूसरे की बातों में ऐसे खोए कि दुनिया को भूल गए। तुम किसी हसीन ख्वाब जैसी हो और तुम्हें अपना बनाने की चाहत इस दिल में है। तुम्हारे साथ से जिंदगी मुकम्मल लगती है, इसलिए अब हर हाल में मेरा साथ निभाना। तुम एक खूबसूरत लत की तरह हो। चलो आज के इस हसीन पल को पूरी शिद्दत से जी लेते हैं क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। मन भी अजीब सा मुसाफिर है, कभी खुद में ही सफर करता है, कभी खामोश रहकर कह देता है सब कुछ, कभी कहकर भी कुछ नहीं कहता। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद और जॉब लगने के बाद मेरे मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे मन के नगर को भरा और सूखी डाली में हरियाली भी आई जब मेरे जीवन में आई मेरी पत्नी यानी के मेरी घरवाली। साथियों टैक्सी कार या बसों से आपने कोई सुहाना सफर किया तो होगा, तो कहां कहां की सैर की उन खूबसूरत यादों को बातों को हमारे साथ बांटिए और लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। टैक्सी चोर इस एक्शन थ्रिलर मूवी में मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिका निभाई थी, पर हम बात करेंगे खुददार। इस सुपरहिट फिल्म में महानायक ने एक ईमानदार टैक्सी चालक का रोल प्ले किया था जो अपने उसूलों के लिए लड़ता है। तो बताइए गोविंदा यानी कि उस महानायक का नाम और इस गीत में कौन सी अभिनेत्री उनके साथ है उसका भी नाम बताएं। और इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राजेश रोशन।

फिल्म आशा का गीत याद आ रहा है, जाने हम सड़क के लोगों से, जितेंद्र उसमें ट्रक चलाते हैं। अगला मैसेज है कि सफर जीवन का हो, किसी मंजिल तक जाने का हो, किसी के दिल तक पहुंचने का हो, या सुरीला सफर विविध भारती के साथ हो, हम तो हर सफर को एंजॉय करते हैं क्योंकि असली मजा और सुनहरी यादें सफर की होती हैं। मंजिल या मकाम पर पहुंचने के बाद भी वही हमारे जहन में रहती हैं। सबसे लंबी सड़क मार्ग का सफर मेरा कटक से पुणे का था। काफी रोमांचक था। चिल्का झील, घने जंगलों, पहाड़ों से गुजरते हुए पहली रात, विशाखापट्टनम समुद्र किनारे दूसरी रात, और हैदराबाद में गुजरने के बाद सोलापुर होते पुणे पहुंचे। मैं, मेरी पत्नी, बेटा, बेटी के संग सफर के हमने खूब मजे लिए। आवाज की दुनिया के हमारे दोस्त तो हमारी ही तरह इबारत लिखना सीख गए हैं। गीतों के इस सफर में बढ़ते हैं अब आगे। बेहतरीन लोकेशन और रोमांटिक फिल्म कश्मीर की कली, जिसमें एक अमीर बिजनेसमैन राजीव लाल को एक सीधी साधी फूल बेचने वाली लड़की चंपा से प्यार हो जाता है, और पेशे से ट्रक ड्राइवर मोहन चंपा पर बुरी नजर रखता है और उसके गरीब पिता दीनू को ब्लैकमेल करता है। कहानी कई उतार चढ़ाव, गलत पहचान का नाटक, खलनायकों की चाली, और अंत में सभी गलत फहमियां दूर होकर एक सुखद मिलन होता है। तो किस खूबसूरत लोकेशन पर यह फिल्म बनाई गई थी। वैसे तो उसमें फिल्म के नाम में ही वो बात छुपी है। और राजू, चंपा, मोहन की भूमिकाओं में कौन से कलाकार थे, और निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे ये जो गाना अभी आप सुनेंगे, इस ट्रक में भेस बदल कर गाना कौन से अभिनेता गा रहे हैं, और गीत में आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार है SH बिहारी, संगीतकार है OP नैयर, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

साथियों आपके जवाब हमें मिले हैं। मुख्य कलाकार थे शमी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण, नजीर हुसैन, मदनपुरी और टुनटुन। कश्मीर की कली इस फिल्म की शूटिंग श्रीनगर और वहां की मशहूर डल झील और उसके आसपास की खूबसूरत वादियों में की गई थी। निर्देशक थे शक्ति सामंत और कश्मीर की कली ये फिल्म थी शर्मिला टैगोर की पहली हिंदी फिल्म। हमारे साथियों ने हमें कुछ और मैसेज लिखे हैं कि फिल्म नमकीन का गीत सफर में होता है ट्रक में संजीव कुमार गाते हैं, ठीक है। फिल्म 9-2-11 का गीत हम है राही प्यार के देव आनंद ट्रक चलाते हुए गाते हैं और फिल्म जौहर महमूद के गाने हम दो दीवाने मिलके भी सफर में गा रहे हैं। साथियों अब बात करते हैं बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक राजा हिंदुस्तानी की, जिसमें आमिर खान एक सीधे साधे टैक्सी ड्राइवर राजा की भूमिका में नजर आए थे, जिसे एक बेहद अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। तो अब ये बताइए कि टैक्सी ड्राइवर राजा किस इलाके में टैक्सी चलाते थे और कौन थी वो अमीर लड़की, और लड़की की माता जी की भूमिका में नजर आने वाली अभिनेत्री का भी हमें नाम बताएं, और साथ में हमें ये भी बताएं कि इस फिल्म में जो छोटा बच्चा था वो आजकल एक बड़ा अभिनेता है, तो उस छोटे बच्चे का भी हमें नाम बताएं। साथियों हम आपसे जानना चाहते हैं कि कभी कभी अक्सर लोग टैक्सी रिक्शा बसों में अपना कीमती सामान भूल जाते हैं, तो अचानक से मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जो टैक्सी चालक होते हैं वो पूरी ईमानदारी से आपका वो कीमती सामान लौटा देते हैं, तो कभी कुछ ऐसी बातें आपके साथ हुई।

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी की ज्यादातर शूटिंग ऊटी तमिलनाडु मैसूर कर्नाटक और उत्तराखंड के रानी खेत में हुई और टैक्सी ड्राइवर राजा एक काल्पनिक इलाके पालन खेत में अपनी टैक्सी चलाते थे। आमिर खान करिश्मा कपूर सुरेश ओबराय जॉनी लिवर कुणाल खेमू अर्चना पूरन सिंह मोनिश बहल टीकू तलसानिया फरीदा जलाल नवनीत निशान और वीरू कृष्णन इस फिल्म में नजर आई थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भूटान में जब मैं गया था तब गर्मी का मौसम था, फिर भी गर्मी में बहुत ही मजा उठाया हम लोगों ने। अगला ये मैसेज है कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सफर में गाए जाने वाले गीत एक दो नहीं बहुत सारे हैं, जैसे कि परिचय में मुसाफिर हूँ यारो। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर का ये सफर सचमुच बहुत ही रोमांचक सफर है, जिसमें हम अपनी बातों को यहाँ पर रखते हैं। साथियों, सड़क पर तो हम सभी रोज चलते हैं गुजरते हैं, पर एक बेहद चर्चित रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आई थी सड़क, जिसमें संजय दत्त ने रवि नाम के एक टैक्सी ड्राइवर का किरदार निभाया था। तो इस फिल्म की अभिनेत्री और संजय दत्त के दोस्त के रोल में नजर आने वाले अभिनेता और खलनायक के नाम भी हमें लिख दीजिए, साथ ही निर्देशक का नाम भी लिखकर भेजें। इस गीत में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है सड़क।

0: साथियों आपके जवाब हमें मिले हैं पूजा भट्ट संजय दत्त दीपक तिजोरी नीलिमा आजम सदाशिव अमरापुर का जो महारानी के किरदार में नजर आए थे अवतार गिल जावेद खान पंकज धीर और निर्देशक थे महेश भट्ट साथियों आपने कभी ट्रक की सवारी की है या उसमें बैठकर किसी शादी में गए हैं या ट्रक से जुड़ी कोई बात हो तो वो भी हमें बताएं खेती करने में ट्रक का कितना और कैसा योगदान होता है वो भी बताएं और अब बात उस ब्लॉकबस्टर मूवी की जिसमें सनी देओल पेशे से एक देसी ट्रक ड्राइवर के रोल में नजर आते हैं और इस फिल्म में ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा भी है तो उस फिल्म का नाम और सनी देओल की भूमिका का नाम निर्देशक का नाम भी बताएं वैसे इस फिल्म में सनी देओल ने एक चीज उखाड़ ली थी क्या थी वो चीज उसका भी नाम लिख दे तब तक आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाजें हैं उदित नारायण और साथियों की गीतकार हैं आनंद बख्शी संगीतकार हैं उत्तम सिंह
1: मैं निकला ओ गड्डी ले

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं हमारे पेज पर. सनी देओल की भूमिका वाले किरदार का नाम था तारा सिंह. साथ में थे अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शोक, सुरेश ओबराय और गदर. एक प्रेम कथा में तारा सिंह ने जमीन से सीधे एक लोहे का हैंडपंप उखाड़ लिया था, जिसे हिंदी फिल्मों के इतिहास के सबसे लोकप्रिय सीन्स में गिना जाता है. और इस फिल्म के निर्देशक हैं अनिल शर्मा. राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म को देखकर जब जब फूल खिले वाले शशि कपूर और नंदा याद आ जाते हैं हमें. साथी ने लिखा है कि मजेदार मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा है और मेरी सात गीतों की लिखी हुई इबारत में से छठे नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल हो गया है. और एक साथी ने लिखा है कि सड़कों के सफर में हम कई बार ट्रक्स और सामान ले जाने वाली गाड़ियों के पीछे लिखी हुई लाइनें जो लिखी होती हैं उसे पढ़ते हैं, जैसे कि अनारकली अरे बढ़कर चली, जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर, नहीं तो गर्दिशों की दौर का मारा है सफर, और बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, वगैरह वगैरह. अब बात करते हैं हाईवे की. इस फिल्म में रणदीप हुड्डा महावीर भाई नाम के ट्रक ड्राइवर और किडनैपर की भूमिका में नजर आए थे और नायिका के साथ भारत के अलग अलग रास्तों पर ट्रक के जरिए वो सफर करते हैं. तो बताइए उन इलाकों के लोकेशन के नाम और फिल्म के निर्देशक का भी नाम बताएं. साथ ही उन जगहों के बारे में आप कोई खास जानकारी रखते हो तो वो भी हमारे साथ आप साझा.

कर सकते हैं और आलिया भट्ट की पहली फिल्म का नाम क्या था वो भी लिख दें और इस गीत में आवाजें किसकी हैं वो भी बताएं गीतकार हैं इरशाद कामिल संगीतकार हैं ए आर रहमान

साथियों आपके जवाब हम पढ़ देते हैं निर्देशक है इम्तियाज अली और उनकी ये जो फिल्म हाईवे है भारत के अलग अलग इलाकों में फिल्माई गई थी जिनके नाम है दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर आलिया भट्ट की पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और संघर्ष में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था और इस गीत में आवाजें थी सुल्ताना और ज्योति नूरानी की साथियों अब हम आपको सुनवा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर का इस फिल्म का गीत और इस गीत का एक जवाब हमें जल्दी से लिखकर भेज दीजिए कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है

फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था साहिर ने, संगीत था सचिन देव बर्मन का, और इस फिल्म में नजर आए थे देव आनंद, कल्पना कार्तिक, जॉनी वॉकर, और ये जो गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री का नाम था शीला रमानी।

साथियों सुरीला सफर के हम सफर बनकर आप हमारे साथ चले और अपने विचार बातें संदेश आपने हमारे साथ साझा किए आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद और आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर

फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज में है। विशाल ददलानी ने इस गीत को लिखा, संगीत विशाल शेखर का। फिल्म है अनजाना अनजानी।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मिली फिल्म से, जिसे गाया A.R. रहमान और शाशा त्रिपाठी ने। जावेद अख्तर के बोल, संगीत A.R. रहमान का।

0: A.R. रहमान और शाशा त्रिपाठी की आवाजों में गाए मिली फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। सागर जिले की बंडा तहसील में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। सागर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवेश पटेरिया ने 9 से 10 लोगों की मौत की जानकारी दी है। वहीं एक दर्जन से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई है। सागर SP समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले में कहा है कि उन्होंने प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और समाधान भी निकाला जाएगा।
2: मैंने अपने प्रभारी मंत्री से कहा है, अधिकारियों से भी कहा है कि वो वहाँ तुरंतगति से एक तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे, जांच भी निकालेंगे और इस तरह की घटना हमारी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं।
0: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से दुबई के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत UAE के प्रमुख निवेशकों, उद्योग समूहों और कारोबारी नेतृत्व से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री AIM कांग्रेस 2026 में भी शामिल होंगे। इंदौर में गोगाल नवमी के अवसर पर सफाई मित्रों के सम्मान में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरवासियों स्वयं सफाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साल भर शहर में झांकियों और जुलूसों के बाद सफाई मित्र शहर को स्वच्छ करने का काम करते हैं, लेकिन गोगा नवमी पर वे अवकाश पर रहते हैं। ऐसे में इंदौर वासियों की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं अपने शहर को साफ रखें। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा है कि गोगा नवमी की रात भर झांकियां निकलती हैं। इस दौरान सभी नागरिक स्वच्छाग्रही बनकर अपने गली, मोहल्ले और सड़क की सफाई करें। यह संदेश दें कि इंदौर हमेशा स्वच्छ रहेगा। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और कई इलाकों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात है। बरगी, भदभदा और कलियासुर डैम के गेट खोले गए हैं, जबकि प्रदेश में अब तक 30 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सीधी में लैंडस्लाइड उमरिया में महिला के बहने और बहियर में मार्ग बंद होने जैसी घटनाएं सामने आई है। आज ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना और सतना शामिल है। अगले 3 दिनों में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले प्रदूषित जल के प्रभाव और उसके समाधान के लिए कलेक्टर ने मेघनगर तथा आसपास के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। विदिशा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की तत्परता से 2 मासूम बच्चों की सांस की नली में फंसे खाद्य पदार्थ को निकाले जाने से उनकी जान बच गई। सीहोर स्थित VIT यूनिवर्सिटी में तमिल प्रांतवासियों की संस्था कम्मन कलगम ने के एक दिवसीय रंगारंग राष्ट्रीय अधिवेशन में देशभर से आए तमिल भाषियों ने भाग लिया। शिवपुरी जिले में 4 दिन से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके कारण सिंध नदी में पानी बढ़ने से मड़ीखेड़ा डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। नीमच के जावद में सावलिया सेठ मंदिर परिसर में श्री कृष्ण पाथय न्यास, मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से श्री कृष्ण पर्व का भव्य आयोजन हुआ। जबलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
4: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
5: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर एनडीएमसी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच एनडीएमसी नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल

0: हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
1: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उप महापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजनियन अयूब और टेन वी क्योंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर, लुधियानवी संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार है गौहर कानपुरी, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है जख्मी।

0: मेरा सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नख्मों का कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

साथियों लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन है राहुल देव बर्मन के, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं अमित खन्ना, संगीतकार हैं राजेश रोशन, फिल्म का नाम है स्वामी।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके पत्र, आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। और कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइशें भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी और शुभम दयाल खटक, चारकोप कांदेवली वेस्ट मुंबई से अनिल कुमार वैद्य, गांव पालधी महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहते हैं संजय पाटिल, नरेंद्र पाटिल, शेखर पाटिल, चेतना पाटिल, मानसी पाटिल, किरण पाटिल और शैला बाई पाटिल, कृष्णा कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद, अलीना जुनैद, रजिया मुआज और आयात मंसूरी, और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंदडाने, अर्चना प्रतिभा ताई और पद्माकर गोंदडाने। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है जांबाज़।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में. नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने. राजनगर कांति निकेतन मधुबनी बिहार से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रिद्धि सिद्धि और कोमल गुप्ता ने, कुंवर कॉलोनी एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा, खाम गांव जिला बुल्डाना से करीम शाह, गणेश गरड़, शेख मोहसिन, लक्ष्मण उपासे, गोपाल काड़े और राम बाड़खे ने.

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। कस्बा हरदुआ गंज अलीगढ़ से मुन्ने मियां अंसारी, अयान अंसारी, नफीस अंसारी, शाहिद अहमद अंसारी और विंस टेलर। सदर नागपुर से कमल गोल्दा, अंकित गोल्दा, अभिषेक गोल्दा, प्रेम लता गोल्दा और समस्त गोल्दा परिवार। आमला ग्राम अंधारिया बैतूल एमपी से वीरेश झारे, योगेश झारे, त्रिवेश झारे और नवदीप। नेरदे वर्धा छिंदवाड़ा से पूजा देवी, बलराम पटेल, जानवी, रामा और देव। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलविंदर कौर धीमान, रोनित, नीशु और भूपेंद्र। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत को लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है उषा खन्ना का और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थी।

साथियों कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है और इसे सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी दोस्त मालेगांव जिला वाशिम महाराष्ट्र से अरविंद साखरकर सुनीता रोहित निखिल और दीप माला साखरकर रणपिसे नगर अकोला महाराष्ट्र से शिवराज भारती कुमारी टीना भारती तनिषा वेनु संगेफर रीना रोहित मनु गयालकर और राज भारती कोपर गांव से पेंटर दारूवाला मतिन दारूवाला मसूदा दारूवाला दिया और दानिश खान बाला चौक यवतमाल से पत्र लिखा है मीना ताई गायत्री भूमि नितिन तनिश मुकेश दीपिका लवीसा शौर्य शुभम कल्याणी कुकू और सुनीता श्रीवास ने रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत आवाज है आशा भोसले की गीत को लिखा है शहरयार ने संगीत है खयाम का फिल्म का नाम है उमराव जान

साथियों कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर खत लिखे हैं आपने। शैलू बाजार जिला वाशिम से नारायण गवार गुरु, सरला गवार गुरु, सचिन खाडेकर, दक्ष, आयुष पुरवा, निर्मोही और आधिराज ने, रिधोरा से बाबूलाल बोराखडे, गोकुला बोराखडे और मंगेश बोराखडे, दुर्ग रायगढ़ से गेंदालाल श्रीवास, कुशल और गेंदू भाई, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बीरक, जय तेग बीरक और मीका बीरक, रामना हरदी से मोहम्मद आरिफ, फातिमा अरफा और एमएच शरीफ, जलगांव सोमनाथ से आपने खत लिखा है डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, कार्तिक और अश्विनी भुतेकर, संभाजी नगर महाराष्ट्र से वैष्णवी जगदाड़े, हर्षुल साउंगी, संभाजी नगर भाव सिंह पूरा से वैभव और गौरव लोखंडे, और बदनापुर से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी और रुद्र कोलकर ने ये पत्र लिखे हैं। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि, फिल्म का नाम है आंखें।

साथियों आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइश पढ़ने में हमें आसानी हो। आपको बता दें आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आकांक्षा विश्वकर्मा और चंचल वर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

0: विविध भारती। आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा।
1: कौन? तुम?
2: क्या पढ़ रही हो? जरा देखूं तो।
1: कुछ नहीं, ऐसे ही।
2: देखूं तो सही। अच्छा, विष वृक्ष पढ़ रही हो, और मैं तो समझा कि कोई गुप्त चीज होगी।
1: मेरे पास गुप्त क्या हो सकता है?
2: जैसे बिहारी की कोई चिट्ठी।
1: क्या क्या कहा तुमने?
2: अरे मैं तो परिहास कर रहा था।
1: छोड़ मेरा हाथ। परिहास किसका कर रहे थे? यदि उनकी मित्रता के योग्य होते तो तुम्हारा परिहास मैं सह लेती। तुम्हारा मन छोटा है, मित्रता करने की शक्ति ही नहीं तुम में।
2: मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ।
3: महिंदा, ओह, बड़े समय में आ गया, किंतु ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। केवल एक बात कहने आया हूं। मैं काशी गया था, जानता नहीं था कि भाभी वहां है। बिना जाने उनके सामने जाकर अपराधी हुआ, पर उनसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मेरे मन को ज्ञान अज्ञान में यदि किसी पाप ने स्पर्श किया हो तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का दुख ना सहना पड़े। बस
2: मैंने तो ना तुमसे दोष स्वीकार करने को कहा है ना स्वीकार करने को, तब तुम क्षमा मांगकर साधु बनने क्यों आए हो?
3: मैं
1: बिहारी लाला जी, तुम कुछ मत कहो। इस आदमी ने जो कहा है उससे इसी के मुंह पर कलंक लगा रहेगा।
3: अच्छा, मैं जाता हूँ।
1: लाला जी मुझसे तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहना। यदि तिरस्कार करने की बात हो तो तिरस्कार करो। लाला जी कुछ तो बोलो। लाला जी
2: हट जाओ मेरे सामने से। अरे तुम्हारे बाएं हाथ की कोनी से खून बह रहा है। ला फिर, मैं अभी पट्टी बांध देता हूं।
1: कुछ मत करो, गिरने दो खून।
2: कैसी बात कर रही हो? पट्टी बांध कर अभी एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा और घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा।
1: नहीं, इस दर्द को बना रहने दो, मुझे अच्छा नहीं करा रहा है।
2: मैंने अधीर होकर

0: सामने तुम्हें अपदस्त किया, इसके लिए मुझे मुझे क्षमा करो।
1: क्षमा किस लिए? अच्छा किया। मैं क्या किसी से डरती हूँ? जो लोग थक्का देकर चोट पहुंचाकर छोड़ जाते हैं, वे ही क्या मेरे सर्वस्व हैं? और जो जो पांव पकड़ कर रखना चाहते हैं, वे कोई नहीं।
0: तो तुम मेरे प्रेम को कभी नहीं ठुकराओगी?
1: नहीं, मैं उसे माथे पर लगा कर रखूंगी।
0: चुन्नी, काशी से लौटने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है।
2: और तुम कैसे रहे?
0: अच्छा ही था। सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ।
2: आज इतनी जल्दी?
0: हाँ, कुछ आवश्यक कार्य है। अच्छा, चलता हूँ। महेंद्र, तू ये क्या कर रहा है? कभी तेरा मन आशा की ओर भागता है, कभी विनोद की ओर। आशा जब जब तेरे पास आती है तो उसकी ओर उपेक्षा का भाव रखता है और विनोदनी के पीछे पीछे भागता है। तुझे क्या मालूम कि उस सरल हृदय पर क्या बीतती होगी? लेकिन आज ना तो भोजन के समय और ना उसके बाद ही आशा आई। मैं तो सोच रहा था कि अपने प्यार दुलार से उसकी सारी वेदना को दूर कर दूंगा। आशा को अब भी मैं कितना प्यार करता हूँ, वो बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है। और विनोदनी, आशा और विनोदनी दोनों के लिए मेरे हृदय में स्थान है और दोनों में से किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। ओह, ये मौसम, ये चांदी रात, लेकिन विनोदनी मुझसे दूर। नहीं नहीं नहीं, मैं भी उससे मिलूंगा। चलो उसे कमरे में। विनोद, बिस्तर बिछा है, विनोदनी कहाँ है?
2: कौन?
0: मैं हूँ, मैं।
3: अरे महेन, इतनी रात को तू यहाँ कैसे? महेन, विनोदनी, महेन बहू को छोड़ इतनी रात के यहाँ क्या करने आया था?
1: मुझे क्या मालूम, शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी।
2: आज भी समय से पहले कॉलेज चले गए, ना हमसे कुछ बोले ना कुछ कहा। चलो उनके कपड़े निकाल दो। अरे चिट्ठी देखो तो किसकी है? ये तो विनोदनी यानी किरकिरी की चिट्ठी, इनके नाम। हे भगवान, जरा पढ़ो तो। कल रात तुमने जो कुछ किया
1: उससे भी क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? आज फिर नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी क्यों भेजी? चिट्ठी, वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम जगत में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रखोगे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? प्रेम? तुम्हारी ये भिक्षा वृत्ति क्यों है? जन्म से तुम केवल प्रेम पाते आ रहे हो, तब भी तुम्हारे लोभ का अंत नहीं है? जगत में मुझे प्रेम करने और पाने का कोई स्थान नहीं, इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेत मिटा लिया करती हूँ। जब तुम्हारे पास अवसर था तब उस मिथ्या खेल में तुमने भी साथ दिया, किंतु खेल की छुट्टी क्या कभी समाप्त नहीं होती? अब घर में तुम्हारी पुकार हुई है, अब धूल झाड़ कर घर जाओ। मेरे तो घर नहीं है। हाँ, मन ही मन अकेली बैठकर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी।
2: हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों? क्या क्या ये हमारा संपूर्ण सर्वनाश है? मौसी, मौसी!

0: आज माँ ने मुझे रोज की तरह अभी तक आवाज नहीं दी, बात क्या है? चलो मैं स्वयं ही उनके पास भंडारे में जाती हूँ।
1: माँ, माँ,
0: माँ, जान पड़ता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बात भी ऐसी है, उस रात देखो ना एकदम पागल की तरह खड़े हो गए, मुझे तो फिर नींद ही नहीं लगी। शायद शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी, फैसले के लिए मुझे धर पकड़ना चाहा। रात भर सब्र कहा, आपके लड़के में माँ और चाहे हजार गुण हो पर धैर्य तो लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए अक्सर मेरे से उनका झगड़ा हुआ करता है।
2: बहू, तुम झूठ बक रही हो, मुझे आज कोई बात अच्छी नहीं लग रही।
0: मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ, तुम्हारे मन को चोट लगेगी इसीलिए झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के गुणदोष ठगने की चेष्टा कर रही थी, किंतु जो हो गया उसे ठगा नहीं जा सकता।
2: अपने बेटे के दोष गुण मुझे मालूम है, परंतु परंतु तुम ऐसी मायावी हो ये मैं नहीं जानती थी।
0: कोई किसी को नहीं जानता माँ, अपने मन को ही क्या सब जानते हैं। तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी से अपने लड़के का मन बहलाने की इच्छा नहीं की?
2: अभागिन, बेटे के बारे में तो माँ पर अपवाद रखती है, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती?
0: माँ, हम सब मायावनी की जाति की हैं। मेरे अंदर क्या माया थी ये मैं ठीक नहीं जानती, तुम जान गई। तुम में जो माया है उसे तुम नहीं जानती, मैं जान गई। माया थी अवश्य, अन्यथा ऐसी घटना ही न होती। मैंने कुछ जाने कुछ अनजाने जाल बिछाया और तुमने भी कुछ जानकर कुछ अनजाने बिछाया था। हमारी जाति का धर्म ही ऐसा है।
2: अभागिन, तू तू
3: विनोद,
0: जाओ मेरे कमरे से, तुम चले जाओ।
3: क्यों, क्या किया है मैंने?
0: क्या किया है? डरपोक, कायर, तुम्हें क्या करने की शक्ति है? ना तुम प्रेम करना चाहते हो ना कर्तव्य निभाना, फिर मुझे क्यों लोगों के सामने नष्ट किया चाहते हो?
3: मैं तुम्हें प्यार नहीं करता ये कह रही हो?
0: हाँ, मैं यही कह रही हूँ। लुका चोरी ठगना उघाड़ना, कभी इधर कभी उधर, तुम्हारी चोरों जैसी प्रवृत्ति देखकर मुझे घृणा होती है। अभी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जाओ यहाँ से।
3: तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद?
0: हाँ, घृणा करती हूँ। बिहारी लाला जी।
3: अरे भाभी, आप कैसे?
0: यहाँ तुम्हारा आत्मीय स्त्रियों में कोई नहीं है?
3: आत्मीय भी नहीं, पराई भी नहीं। बुआ है, सो देश के मकान में रहती है।
0: तुम अपने देश के मकान में मुझे ले चलो।
3: तुम्हें क्या कह के वहां ले चलूंगा?
0: दासी कह के, मैं वहां घर का सब काम काज करूंगी।
3: ये बात मन में उठी कैसे?
0: महेंद्र मुझसे प्रेम करता है।
3: ये बात कोई नई नहीं है कि दोबारा सुनने की इच्छा हो।
0: मेरी इच्छा भी नहीं।
3: महेंद्र जिस रास्ते पर चला जा रहा था उसे उससे किसने हटाया?
0: मैंने, अपने हृदय की आग से मैंने महेंद्र का घर चलाया है। मैंने समझा था कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, पर वो मेरी भूल थी।
3: प्यार करने वाली क्या इस प्रकार आग लगा सकती है?
0: वो तुम्हारे शास्त्रों की बात है, अभी उसे समझकर चलने की बुद्धि मुझ में नहीं है। सुनो लाला जी, मैं निर्लज्ज होकर कह रही हूँ, तुम्हें मुझे बचा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है पर अंधा है, मुझे समझता नहीं। एक बार मुझे लगा था तुम मुझे समझ गए हो, शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी। सच कहना, छिपाना नहीं।
3: हाँ, की थी।
0: तुमने भूल नहीं की थी, किंतु यदि समझ नहीं लगे थे, श्रद्धा ही करने लगे थे, तो वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्रेम करने में तुम्हें क्या बाधा थी? निर्लज्ज होकर तुमसे कह रही हूं, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरा चला भाग्य, तुम भी आशा के प्रेम में थी। नहीं, तुम क्रोध न कर सकोगी, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुम आशा को प्यार करते हो, ये बात जब तुम स्वयं नहीं जानते थे तब भी मैं जान गई थी। आशा में तुमने क्या देखा मैं समझ नहीं पाती। विधाता के पुरुष को आंख के साथ अंतर्दृष्टि कुछ भी नहीं देते, तुम लोग क्या देखकर भूल जाते हो?
3: भाभी, अब तुम जो सुनाओगी सुनूंगा, पर जो बात कहने की नहीं है वो ना कहो, यही मेरी प्रार्थना है।
0: लाला जी, मैं जानती हूं तुम्हें कहां पीड़ा हो रही है, किंतु जिसकी श्रद्धा मुझे मिली थी और जिसका प्रेम पाने पर मेरा जीवन सार्थक हो जाता, उसके पास इस रात मैं संपूर्ण भय और लज्जा छोड़कर आई हूं। उसमें मेरे मन की कितनी वेदना छिपी है, जरा इस पर विचार कर धीरज धरो। मैं सच कह रही हूं लाला जी, यदि तुम आशा को प्रेम ना करते तो मेरे द्वारा उसका सर्वनाश कभी नहीं होता।
3: आशा का क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया?
0: महेंद्र सब कुछ छोड़कर कल ही मुझे साथ ले घर से निकल जाने को तैयार है।
3: नहीं, ये किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं।
0: महेंद्र को आज कौन रोक सकता है?
3: तुम।
0: किसके लिए रोकूं? तुम्हारी आशा के लिए? मेरा अपना सुख दुख क्या कुछ नहीं? तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे महेंद्र के घर गृहस्थी का भला हो, इसके लिए मैं अपने समस्त दावों को छोड़ दूं? इतनी भली मैं नहीं हूं, धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी नहीं पढ़ी हैं। मैं जो छोड़ूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
3: सुनो, मैं भी तुमसे एक बात स्पष्ट कहता हूं कि यह सब जो तुमने कहा है उसका अधिकांश तुम्हारा नहीं। छोटे दर्जे के नाटक उपन्यास तुमने पढ़े हैं और उससे ही चुराया हुआ है। तुम अगर नितांत अबोध बालिका रहती तो भी संसार में प्रेम से वंचित न रहती। नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है, घर में उसे लेकर काम नहीं चल सकता।
0: तुम मुझे क्या करने को कहते हो?
3: असाधारण कुछ न करो, साधारण स्त्रियों की शुभ बुद्धि जो कहती है वही करो। देश चले जाओ, मैं जनानी डिब्बे में बैठा कर तुम्हें देश तक पहुंचा दूंगा।
0: तो आज की रात यहीं रह जाऊं?
3: नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं
0: है। बस इतनी दुर्बलता बनाए रखना लाला जी, की देवता की तरह बिल्कुल पवित्र ना हो जाना, किसी बुरे से प्यार करके सरा बुरे बने रहना।
3: विनोद, मैं
0: जीवन सर्वस्व जानती हूं कि सदा के लिए तुम मेरे नहीं हो सकते, किंतु आज एक मुहूर्त के लिए मुझे प्यार करो, उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी और किसी से कुछ न चाहूंगी। मरण पर्यंत मन में रखने लायक तुम कुछ तो दे दो मुझे, कुछ तो दो।
3: रात 1 बजे पैसेंजर ट्रेन जाती है।
0: मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मुझे चिट्ठी अवश्य लिखना, मैं रोज तुम्हारी चिट्ठी पाने की प्रतीक्षा करती हूं।

0: तुम मेरे विचारक हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारी दो लाइन की चिट्ठी ही मेरे निर्वासन में मेरा आहार है। कहते हैं एकाग्र मन से जिसे पुकारा जाता है वह अवश्य आता है। मैं भी तुम्हें पुकार रही हूँ। मेरा जीवन सूना है, इस सूनेपन में एक बार तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा। मैं किसी तरह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें आना ही होगा। तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। आ गए प्रभु।
1: आ गया विनोद।
0: तुम चले जाओ यहां से। मैं कहती हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।
1: मैं इतना कायर नहीं कि तुम्हें इस लोक निंदा की आग में छोड़कर चला जाऊं यहां से। तुम्हें ले ही जाऊंगा, उसके बाद मुझे छोड़ देने की इच्छा हो तो छोड़ देना। मैं कुछ भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें छूकर कसम खाता हूं कि तुम जो इच्छा करोगी वही होगा। मैंने अविश्वास के कितने ही काम किए हैं, परंतु आज मेरा विश्वास ना करो। चलो, मैं सवारी लेकर आया हूं।
0: चलो, मैं चलती हूं। जल्दी चलकर माँ को देखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें।
2: माँ, प्रणाम माँ।
3: बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं रे, तू है तो अच्छी तरह।
2: माँ, तुमने अपनी बीमारी का समाचार क्यों नहीं दिया? सुनकर मैं एक क्षण भी रुक सकता था।
3: खोकू, अरे क्या मैं जानती नहीं, तुझे सिर्फ पेट पर नहीं रखा रे, अन्यथा तुझसे बढ़कर दुनिया में मेरा कौन है रे? बहुत दुबला हो गया रे, तेरे देख रेख करने वाला कोई नहीं। अब तो बहू लिया, मझली बहू।
4: हाँ जी जी,
3: इसका भार तुम पर रहा, इसे सुखी रखना।
4: न्यारी, जरा बाहर तो आ।
2: कहो काकी।
4: तुझे नहीं मालूम क्या, महेंद्र विनोदरी को लेकर कहीं चला गया है। एक बार महेंद्र को तो बुला नहीं लाएगा, और देरी करना उचित नहीं है।
2: अच्छा काकी, तुम माँ की पथ्य और दवा का ख्याल रखना। काकी काकी, महेंद्र का उद्धार मैं करूंगा।
1: विनोद, ये क्या तुमने फूलों से अपनी बेकी गूंथी? गले में भी फूलों का हार, ये सादा मोटे कपड़े, सारा कमरा, ये बिछौना, सब तर फूल ही फूल। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? ये बिछौना जी चाहता है।
0: नहीं, नहीं, तुम जाओ, इस बिछौने पर मत बैठना।
1: तो फिर ये श्रृंगार किसके लिए किया है?
0: जिनके लिए किया है वे मेरे हृदय के भीतर हैं।
1: कौन है वो? बिहारी?
0: उनका नाम तुम मुंह से न लो।
1: उसी के लिए तुम मेरे साथ इधर उधर घूमती हो?
0: हाँ, उन्हीं के लिए।
1: उसका पता ठिकाना जानती हो?
0: किसी न किसी तरह जान ही लूंगी।
1: मैं किसी भी तरह जानने नहीं दूंगा।
0: न जानने दोगे ना सही, पर मेरे हृदय से उन्हें किसी भी प्रकार निकाल न सकूंगी।
1: ओ, तुम मर क्यों ना गई? तुम्हारे मरने से कितना मंगल होता।
0: जब तक बिहारी की आशा है मैं मर नहीं सकती।
1: अगर तुम मेरी नहीं हुई तो बिहारी की भी नहीं हो सकती, समझी?
0: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
1: मेरी माँ रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है, उनके आंसू मुझे दूर से ही जला रहे हैं। तुम्हारे मरे बिना मुझे उनके आंसू पोंछने का अवसर नहीं मिलेगा।
0: मैं कहती हूँ तुम अपने घर जाओ, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। ओह, तुम नहीं मानोगे क्यों मुझे बार बार तंग करने के लिए आ जाती हो तुम।
2: महेंद्र, महेंद्र,
0: महेंद्र नहीं है, वो शहर गया है।
2: अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम्हें थोड़ी देर बैठना होगा।
2: कहो, क्या कहना है?
0: तुम जो कुछ मन में समझ रहे हो वो बात नहीं है। इस घर को किसी कलंक ने नहीं छुआ है। ये फूल तुम्हारी ही पूजा में सूख गए हैं। तुम्हें यही बैठना होगा, तुम्हें यही बैठना होगा। बैठो।
2: लो, बैठ गया।
0: तुमने दया पूर्वक मुझे ये स्थान दिया है और दूर रहकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगी। अच्छा बताओ, मैंने काम से जो पत्र लिखा था उसे तुमने खोलकर उत्तर दिए बिना महेंद्र के हाथ वापस क्यों कर दिया?
2: मुझे तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला और ना ही महेंद्र के हाथों मैंने कोई चिट्ठी वापस की।
0: अच्छा, अब समझ में आया। सुनो, मैं सब बातें तुमसे कहती हूँ, विश्वास करोगे तो अपना सौभाग्य मानूंगी, ना करोगे तो तुम्हें दोष ना दूंगी।
2: ना ना ना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बिना कुछ कहे ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं खुद तुमसे घृणा नहीं कर सकता। बस अब तुम एक शब्द भी मत कहो।
0: तो भी बताए बिना जी न सकूंगी। मैंने तुम्हें मन में रखा है, इसीलिए पवित्र बनी रही। आज मैं तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है।
1: अच्छा, तो अब रंग भूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश।
2: सुनो महेंद्र, तुम्हें विनोदनी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मैं उससे विवाह करूंगा। और सुन लो महेंद्र, तुम्हारी माँ मृत्युशैया पर पड़ी है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। मैं आज रात की गाड़ी से विनोदनी को लेकर चला जाऊंगा।
1: ठीक है, मैं जाता।
0: सुनो, ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? मेरा उपहास कर रहे हो?
2: नहीं, मैं सचमुच तुमसे विवाह कर रहा हूं।
0: इस पापिष्ठा के उद्धार के लिए?
2: नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए।
0: बस यही मेरा चरम पुरस्कार है। इतना जो तुमने स्वीकार किया है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिलने पर भी वो रहेगा नहीं, धर्म उसे कभी सहन नहीं करेगा।
2: क्यों नहीं करेगा?
0: जी जी, ये बात सोचने पर भी लज्जा होती है। मैं विधवा हूं, निंदिता हूं, समस्त समाज में तुम्हें लांछित करूं ये कभी नहीं होगा।
2: किंतु विनोदनी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं।
0: सुनो, दूसरे जन्म में तुम्हें पाने के लिए तपस्या करूंगी। इस जन्म में और कोई आशा नहीं करती। मुझसे विवाह करके तुम सुखी ना हो सकोगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, मैं भी संपूर्ण गौरव खो दूंगी। तुम सदा से निर्लिप्त और प्रसन्न रहते आए हो, आज भी वो ही बने रहो। मैं अन्नपूर्णा काकी के साथ काशी चली जाऊंगी।
2: भाभी, न जाने इस जिंदगी में फिर आपसे मिलना हो या ना हो, मैं तुम्हारी कोई निशानी अपने पास रखना चाहता हूं।
0: जी जी
2: भाभी, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता?
0: तुम तो बहुत पहले ही मुझे जो दे चुके हो वो मेरे शरीर का भूषण है, उसे मरते दम तक कोई नहीं ले सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
2: मैं समझा नहीं, मैंने ऐसा तुम्हें क्या दिया है?
0: भूल गए लाला जी, ये देखो।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में चोट का निशान।
0: हाँ लाला जी, एक दिन गुस्से में घृणा के साथ तुमने मुझे धक्का दिया था ना, मेरे हाथ में चोट लगी, उस घाव का ये निशान उसी दिन से मेरी आत्मा का आभूषण बन चुका है।
1: भाभी।
0: लाला जी, भगवान तुम सबको सदा सुखी रखे।

आंख की किरकिरी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली के इस रेडियो नाट्य रूपांतरण का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों के। उजाले

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं चौथा और अंतिम भाग।
1: चूंकि बातें गौरी जी की हो रही हैं, तो इसी विषय पर बना रहता हूँ। आपके निर्देशन में उन्होंने किन नाटकों में काम किया?
2: काफी जुलवा में ही थी पहले तो
1: जी,
2: और जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। मतलब जितने शो हो गए, शायद वो एक आध दो शो में नहीं थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन लगभग मैं नहीं होता था कई बार शो में, लेकिन वो जरूर होती थी। तो उन्होंने रेणुका करके उसका कैरेक्टर था सयाजी, और उनका पेयर होता था वो साथ में, वो भी जोगतीन कम्युनिटी की थी और सयाजी जोगत्या था, तो उसको कर्जा देने वाली, उससे वसूलने वाली, ऐसी एक थोड़ी सी रिच उन्हीं के कम्युनिटी की, पर धाकड़ कैरेक्टर था, उन्होंने वो बखूबी निभाया। उसके बाद एक झुंझ वार्याशी जो मैंने नाटक किया, उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया, क्योंकि उस पूरे नाटक में उनके हिस्से में केवल दो छोटे छोटे सीन्स थे।
1: ओके।
2: लेकिन पूरा नाटक उनके हस्बैंड जो जर्नलिस्ट होता है, उसके करियर को लोगों ने कैसे बर्बाद किया, बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए, बड़े अहदे पे जाने के लिए, और वो सारा कैबिन में हो रहा है, और ये कैबिन के बाहर बैठी हुई है, और उनको पीठ ऑडियंस की तरफ करके बिठाया था मैंने। वो पता चलता था इनके पीठ से कि ये अंदर के इसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, इसके ऊपर क्या क्या परिणाम हो रहा है, और जब वो अंदर आके बर्स्ट आउट होती थी,

0: दैट सीन वॉज मेमोरेबल सीन इन दैट प्ले. उसके पास मी राष्ट्रपति नाम का प्ले मैंने किया था, उसमें भी उन्होंने बहुत मेजर रोल निभाया. तो मुझे लगता है ये दो तीन चार नाटक थे. उसके बाद फिर मैं बाहर भी नाटक करने लगा, व्यावसायिक भी नाटक करने लगा. फिर उसके बाद ये भी हो गया कि चार पांच साल पर ऋत्विक का जन्म हुआ. तो वो स्कूल में काम करती थी, हफ्ते में दो बार सेंट कोलंबा जो स्कूल थी वहां जाके बच्चों के साथ क्लास लेती थी. तो इसीलिए वो भी एक उनके लिए मर्यादा हो गई कि व्यावसायिक नाटकों में जाना है तो फिर लंबा जाना पड़ता है, 10-15 दिन के टूर लगते थे उस समय पर. पर उन्होंने अपने लेवल पे स्पर्श नाम के नाटक में काम किया, जो द गोवा हिंदू एसोसिएशन का व्यावसायिक नाटक था. फिर उन्होंने हैंड्स अप नाम के नाटक में काम किया, जो व्यावसायिक नाटक था. तो उन्होंने अपने लेवल पे बहुत सारे, तू का जातो एक उंठाला नाम के नाटक में काम किया. तो बहुत सारे नाटकों में काम किया उन्होंने, सीरियल में काम किया. सह्याद्री की बहुत फेमस ईर्जिक नाम की एक धारा चली थी, उसमें उन्होंने कई सारे एपिसोड किए. विजय मेहता के साथ लाइफलाइन जो उन्होंने सीरियल पहली डायरेक्ट की थी उसमें काम किया. गोटिया जो सीरियल चल रही थी उसमें भी उन्होंने काम किया. बहुत सारी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया. फिर उसके आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्मों में भी काम किया. अशोक सराफ जी के साथ उन्होंने फिल्म संजय सुरकर ने डायरेक्ट की हुई चौकट राजा, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले किया. उसके बाद अक्षय कुमार जी के साथ खिलाड़ी 420 में उन्होंने हिंदी में काम किया
1: जी.
0: फिर मराठी में और सारी फिल्मों में काम किया. और खास उनका बहुत ज्यादा पॉपुलर काम रहा है वो देवयानी नाम की जो सीरियल लगातार 3-4 साल चली, उसमें मेजर रोल था उनका और जिसको हाईएस्ट टीआरपी थी उस सीरियल को. तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि हमें दिल्ली से आता था तब भी वो 30 दिन शूटिंग करती थी और कभी कभी संडे को एक स्पेशल एपिसोड होता था उसके लिए रात दिन वो भी काम करती थी. ऋत्विक भी उसी समय सीरियल में काम करता था लीड रोल में, मानसी था चित्रकार तो स्टार प्रवाह के ऊपर. तो मैं जब दिल्ली में आता था ये दोनों बिजी होते थे. और ये दिल्ली आते थे कभी कभी जब मैं दिल्ली में था तब, तो ये जैसे ही पहुंचते थे तो दूसरे दिन सुबह फोन आता था कि कल के एपिसोड में प्रॉब्लम हो गया, आप तुरंत निकल आइए
1: लीजिए.
0: तो एक या दो दिन से ज्यादा हम रह नहीं पाते थे. तो फिर उन्होंने दोनों ने भी ये तय किया वो सीरियल कंप्लीट करने के बाद कि अब हम ज्यादा समय सीरियल में नहीं देंगे, फिल्म और नाटक यही है. और उनका सबसे अच्छा मुझे लगा कि पैरेलल जो उन्होंने करियर किया वो चिल्ड्रन थिएटर में
1: जी, बहुत बड़ा योगदान.
0: द लीडिंग थिएटर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट इन महाराष्ट्र, कि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने करियर तक पहुंचाने का काम किया है. और अपने किस्म का वो नाटक करती है बच्चों के साथ, उनको एक अपना नैक है, उनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी बनी है कि 10 दिन में वो बच्चों को पूरा आर पार बदल देती हैं और नाटक भी करवाती हैं अंत में. और जो नाटक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल भी होते हैं, ह्यूमरस भी होते हैं और कुछ मैसेज लेके भी वो नाटक करती हैं. तो इसीलिए अपने आप में वो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है. वो एक्ट्रेस भी है, थिएटर की भी है, सिनेमा की भी है, सीरियल की भी है, ये तीनों मीडिया में वो कंफर्टेबल है. और चौथा है वो चिल्ड्रन थिएटर की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटर है. मुझे लगता है कि सुधा कर्मरकर और दो तीन सुलभा देशपांडे और इनके बाद बहुत ज्यादा कंचन सोनटक्की जी के बाद मराठी थिएटर में बहुत ज्यादा उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर में काम किया है
1: जी. यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है.
2: मैंने कहा

0: जब आपके शुरुआती दो तीन नाटक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और ये लगा कि ये अलग ताप के नाटक हैं, इनके तेवर बहुत अलग हैं, और आपने उसमें अपना बहुत कुछ झोंक दिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस डायरेक्टर के तत्व जल्दी चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो क्या चीज थी जो लगातार आपको आगे प्रेरित करती रही? और दूसरा, दलित थिएटर मूवमेंट को आप लगातार जिंदा रखे रहे?
1: दलित थिएटर मूवमेंट की बात तो थी, जैसे मैंने कहा कि दो नाटक में तो मैं उसका हीरो था
0: जी,
1: नायक की भूमिका में था। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद एक्चुअल उस मूवमेंट से मेरा संबंध थोड़ा सा विरल हो गया, कम हो गया, लेकिन मैं जो नाटक करता रहा
0: यस,
1: उसमें वो तत्व जो है, मतलब मैंने जिस काम के लिए मैं नाटक में आया था, मैं आज तक उसको भूला नहीं हूं। मैं नाटक में क्यों हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक करना है ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक नहीं करना है, कितना भी पैसा दे दो, वो भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए मेरे नाटकों के जो विषय है, चाहे वो जुलवा है या जाने मन है, मुझे लगता है जिन लोगों की अभिव्यक्ति को, जिन लोगों की जिंदगी को, जिन लोगों के दबेपन को आवाज नहीं मिली है, मुझे लगता है उनको मैं अपने नाटक का विषय बनाता हूं।
0: हमेशा हाशिए पर जो लोग हैं,
1: हाँ, हाशिए पे जो लोग हैं, जो गांव के बाहर है, गांव के अंदर के भी नाटक किए मैंने, पर जो ज्यादातर जो विषय चुने मैंने वो गांव के बाहर है, उनको गांव में एंट्री नहीं है। अब देखिए, झुलवा झुकते झुकती पर है, एक झुंझ वार्याशी एब्सोल्युटली डायरेक्ट ये मेन स्ट्रीम कंटेंट था कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे सत्ता कारण में हो रहा है और उसमें इनोसेंट टैलेंट का बलि कैसे चढ़ाया जाता है, और वो भी जो जर्नलिस्ट है। उसके बाद मैंने नाटक किया दूसरा सामना, जो सतीश आलेकर जी ने लिखा, जो हमारी ये शुगर सहकार मूवमेंट है उसके अंदर किस तरीके से फिर वही दलित का बलि कैसे चढ़ाया जाता है। पहला सामना तो जो था वो फिल्म थी, उसका सिक्वेल था जो लिखा गया कि जो दलित का बेटा है जो आईएएस है और आज वो अपर कास्ट का है क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया और उसको मालूम नहीं, और एक दिन अचानक उसको मालूम हो जाता है कि वो जिस जाति से और जिस संस्कार को बिलोंग करता है उसका है ही नहीं, जो भी आईएएस होने के बावजूद भी वो तो है दलित। उसके बाद जो टूटना है उसका, वो टूटना विक्रम गोखले वो रोल करते थे और दूसरा विनय आप्टे करते थे और तीसरा इला भाटे का पहला नाटक था
0: जी।
1: तो ये उस नाटक में भी वही बात अलग किस्म से थी, नाती गोती था, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली की वाताहत कैसे होती है, उस फैमिली की जिसको हम मराठी में वाट कैसे लग जाती है और उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है, इस तरीके का विषय था
0: जी।
1: जाने मन का बिल्कुल किन्नरों के जीवन पे विषय था उसका, लड़ी नजरिया पे डेमोक्रेसी की कैसी हम लोगों ने बारा बजा दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के, और हम अपनी तरीके की डेमोक्रेसी कैसे लाद रहे हैं, ये विषय था। तो जितने भी विषय हैं, ती फुलराणी तक रणांगण एक ऐसा विषय था कि ये भारतीय आदमी जीतता क्यों नहीं है, क्या ऐसे उसमें खून में, संस्कार में, उसके जीवन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वो विष घोला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करता, ये बेदिली है, ये धोखा देना है, ये भारतीय स्वभाव में कैसे, और उसके बाद ज्यादा तो मराठी में कैसे है, पानीपत का थर्ड वॉर हम हारे क्या जीते, इसको लेकर वो सारा का सारा असेसमेंट था भारतीय मन का, भारतीय स्वभाव का, बिल्कुल बहुत तटस्थता से किया हुआ और जो नाटक बहुत अंतर्मुख करता था
0: जी,
1: और जिसके 700-750 शो, मतलब दैट वाज सपोज टू बी फर्स्ट 70 mm प्ले ऑन मराठी स्टेज,
0: बिल्कुल,
1: जिसमें भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था, उन्होंने जीवन में पहली बार नाटक के लिए कॉस्ट्यूम किए,
0: वाह,
1: मंगेश पाड़गांवकर जी ने गाने लिखे,
0: क्या बात है,
1: ये ऐसे ऐसे दिग्गज, पहले कुसुमाग्रज गाने लिखने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, फिर उसके बाद फिर हमने मंगेश पाड़गांवकर जी से गाने लिखवाए, अनंत अम्मेम्बल ने उसमें म्यूजिक किया, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि वो भी एक अलग किस्म का विषय था। तो लेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कह रहे कि हमारे पास जीतने का जज्बा क्यों नहीं है, जीतने के बाद भी हमारे आसपास क्या है कि दिल्ली मराठों ने जीतने के बाद भी उस समय मराठों को दिल्ली के गद्दे पे नहीं बिठाया, हमारे नेता ने क्या थी उसके पीछे की सोच, क्योंकि उससे पहले ही हमारे कारोबारियों ने दिल्ली पंजाब के राजा को भेज दी थी
0: जी।
1: तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करने का स्वभाव है, एक तरीके से धोखा देने का स्वभाव है, कभी भी कोई भी आदमी एक दूसरे से बेदिली करने का स्वभाव जो है, इसको उस नाटक में क्या कहते हसीये पे रखा था। और वो एक नाटक लोगों को लगा था पानीपत थर्ड यू आर जैसे हार गए वैसे ये नाटक भी बहुत जोर से गिरेगा, उसकी आवाज सुनने के लिए सारे कान बेताब थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नाटक ने जो खौफ है मराठी मानस में, कुछ भी हुआ तो पानीपत हुआ बोलते हम उसका, डिजास्टरस एक्सपीरियंस इज पानीपत, तो उस पानीपत शब्द से हमने उस नाटक ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया। पानीपत वॉज नॉट डिजास्टर बट इट वॉज द बिगेस्ट वॉरफेयर प्लेड बाय मराठास हेल्प ऑफ अदर पीपल इन इंडिया, और जिसमें मुसलमान भी थे
0: जी।
1: तो ये भूमि पे प्यार करने वाले लोगों का जो एक गठ्ठा था वो मरते दम तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहे मरते रहे, उसकी कहानी थी ये रणांगण।
0: क्या बात है। और फिर ती फुलरानी आया,
1: उसके बाद ती फुलरानी आया, उसके बाद ये मध्यम व्यय आयोग किया, जब एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का पहला प्रोडक्शन कौन सा किया जाए, तो हमने कहा चलो परंपरा से शुरू किया जाए। कालिदास भास ये पहला नाटककार माना जाता है, तो हमने उनके मध्यम व्यय आयोग से शुरू किया। उसमें भी मुझे हिडम्बा है वो मुझे दिखाई दी, मैं क्योंकि केरल में रहा था, द्रविड़ में मातृसत्ता कुटुंब पद्धति है और आर्य में पितृसत्ता है, तो उनकी जो प्रेम की कहानी है भीम की और हिडम्बा की और उनका बेटा जो घटोत्कच है, मुझे लगा कि जो औरत हमारे स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ के अड़े आती हैं, जो भी है, हम किसी को डेरोगेटिव टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम हिडम्बा बोल देते हैं। अरे यार उसके हिडम्बा के क्या चक्कर में आता है, मतलब देखने में वो खूबसूरत भी हो तो जो हमारे स्वार्थ के अड़े आता है उसका कैरेक्टर असैसिनेट करने का हमारा पुराना स्वभाव है
0: जी जी जी।
1: उस स्वभाव को पकड़कर वो नाटक बनाया हुआ है। और फिर आर्य और अनार्य के बीच की जो राजनीति है वो जेंडर बेस्ड भी है, वो क्लास बेस्ड भी है, वो हर तरीके की राजनीति है। और वो जब सवाल पूछती है भीम को, और बेटा सवाल पूछता है कि आप कहाँ गए थे, बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चा बड़ा होने तक वॉरियर होने तक वो वापस आके देखा नहीं उन्होंने, उसके बारे में जो सवाल पूछती है बोलती है कि अगर होती मैं आर्य स्त्री तो क्या होता आपका यही उत्तर।
0: वाह,
1: तब तो राजदरबार बैठते, तब तो तहकीकात होती, चर्चाएं होती, न्याय मंडली बैठती, न्याय होता। चूंकि मैं आर्य नहीं हूं इसलिए आपको लगा कि यू कैन इग्नोर मी।
0: ओहो,
1: तो इस तरीके के मुझे लगता है बहुत बुनियादी जो सवाल है हमारे ही समाज के विसंगति के, वो कहीं ना कहीं मेरे नाटक उठाते हैं। और वो केवल कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं उठाते हैं, मुझे लगता है वो अंतर्मुख करने के लिए उठाते हैं। क्योंकि नाटक का मूल जो स्वभाव है वो किसके लिए नाटक करना है
0: जी,
1: नाटक केवल लोगों को हा हा हु हु करके जाओ घर में,
0: केवल मनोरंजन,
1: केवल मनोरंजन के लिए नाटक नहीं, मनोरंजन तो रुलाना भी है। नौ रसों में से कोई ना कोई एक रस ऑडियंस के मन में पैदा करना नाटक का मूल रस है, मूल स्वभाव है, मूल चिंतन है, मूल भाव है। हम ये कहते हैं कि नाटक इसीलिए करते हैं ताकि हम समाज को उसका आईना दिखाए,
0: बिल्कुल,
1: उसमें विसंगतियां क्या है, संगतियां क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है, वो आईना दिखा के हम समाज में एक अच्छा समाज कैसे हो, कल्याणकारी समाज कैसे हो, ये करने के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण देने के लिए नाटक होता है। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह बार बार दिखाने के लिए नहीं है
0: जी,
1: पर वो विसंगतियां हैं, जो विरोधाभास है, वो सारा तो दिखाना नाटक का काम है ना। सिनेमा नहीं करेगा, नाटक नहीं करेगा, साहित्य नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगी तो कौन करेगा।
0: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
1: क्या बात है।

0: समाज को समृद्ध भी करना है, संवेदनशील भी करना है और आगे अच्छा समाज बनाने के लिए सोच के लेवल पर अग्रेसर भी बनाना है, इसके लिए ये मुझे लगता है कला दालन है।
1: बिल्कुल,
0: ये संस्कृति का दालन यही है कि वो आपको एनरिच करता है
1: जी,
0: एक आपके दायरे का विस्तार करता है, सोच का विस्तार करता है, आपकी दिमाग में जो दीवारें आपने बनाई है उसको ढाने का काम करता है, क्योंकि आखिरी इंसान और आप दोनों एक ही है, क्योंकि आप एक भूमि के हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप एक हैं क्योंकि नैसर्गिक अधिकार आपको दोनों को एक ही दिया है और जिसका नाम है शांति से जीना। मुझे लगता है वो नाटक का मूल पर्पज है। अब वो पर्पज हम किस एंगल से दिखाए वो आपका तरीका है। अगर हम बीरबल की एंगल से दिखाएं तो बीरबल वही करता था जो अकबर को विसंगतियों का, विरोधाभास का वो आईना ही तो दिखाता था। वो भी नाटक ना करे तो कौन करेगा, वो भी सिनेमा ना करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी

0: व्यवस्था में नाटक का रोल यही होता है, व्यवस्था को अपना मन खुला होकर। इसीलिए एक कहावत है ना कि एक ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आपको समझना है, मान लीजिए आप यूरोप गए या किसी भी समाज में कोई भी देश में चले गए, आपको उस समाज को फास्ट समझना है तो आप जाके उसके 5-6 नाटक देख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: उस समाज का आकलन उस 5-6-7-8 नाटकों में से जो आपको जितने जल्दी मिलेगा उतना एक साल भर रहने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आईना दिखाता है। अगर ये सच्चाई है तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये निराशावाद है, ये तुलनात्मक फैसिलिटी का कम आंकना है एक दूसरे को, ये जो दीवारें खड़ी करना है इंसान इंसान में, वो चाहे धर्म की है, जाति की है, परंपरा की है, वर्ण की है, वर्ग की है, कुल की है, परिवार की है, इससे क्या बनने वाला है
1: जी?
0: इससे कुछ नहीं बनने वाला। अगर हमें एक स्ट्रेंथफुल देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सारे समाज की सारी क्षमताओं को साथ लेकर इस देश का जब विकास करेंगे तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें विश्व गुरु बनाइए
1: जी। एनसीपीए में एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था, एक ही दिन में 3 अलग अलग भाषाओं के नाटक हुए।
0: ये मध्यम व्यायोग नाटक जो था, इसको मैंने हमारे एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए एज अ डेमो ऑफ क्लासिकल इंडियन थिएटर किया था। उसके बाद एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई, उसके बाद भूल गए। कुछ सालों बाद जैसे मैंने कहा कि भास ने जो लिखे हुए नाटक में जो अधूरे छोड़े हुए थ्रेड्स है उसका कहीं ना कहीं मुझे हंट आउट करने लगे। बेटा भी पूछ रहा है और माता भी पूछ रही हिडम्बा भीम जी को, वो सारे सवाल बाद में दिखाई देने लगे और मैंने कहा कि यार बहुत इंटरेस्टिंग नाटक हो सकता है, इसका नया संस्करण तैयार करना पड़ेगा। ये रंगावृति नहीं तैयार करनी पड़ेगी, जहां भास रुके हैं उसके आगे भी तो हम नाटक को ले जा सकते हैं। इसको लेके हमने वो नाटक करने की बात सोची, पहले मराठी में करते हैं, फिर करते करते पता चला हम हिंदी में क्यों ना करें इसको।
1: क्या बात है,
0: तो हमने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी शुरुआत की। फिर ऐसा लगा कि यार ये हिंदी मराठी तो ठीक है, लेकिन जो कुछ मराठी या हिंदी भाषी लोग है जिसको जब तक आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करते तब तक वो आपको समझना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, उनके लिए हम अंग्रेजी क्यों ना करें। अब 3 भाषाएं हो गई, तो 3 भाषाओं में हमको लगा कि एक ही टीम के साथ करें, नहीं तो बड़ी सर्कस हो जाती। तो इसीलिए सारे मराठी स्पीकिंग एक्टर्स है मूलतः, उसी को हिंदी भी सिखाई, उसमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी भी हमारी इंडियन इंग्लिश है। तो ये सारे 3 भाषाओं में 3 जुलाई 2011 को एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इस नाटक को लेके हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करेंगे
1: जी,
0: और 3 नाटक एक ही दिन में ओपन करेंगे, एक ही टीम, एक ही डेट, एक ही थिएटर।
1: वाह।
0: तो हमने दोपहर 2 बजे मराठी में नाटक ओपन किया, वही नाटक प्रिया बावरी, उसके 3 अलग अलग नाम जानबूझ के रखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि मराठी कौन सा है, हिंदी कौन सा है। दोपहर 4:30 बजे हमने वही से नाटक किया मोहे पिया हिंदी में, और शाम को 7 बजे वही नाटक किया हमने ओ माय लव इस नाम से, वही नाटक 3 भाषाओं में, सेम फॉर्म, सेम कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सेम, भाषा अलग है, गाने अलग है, सब अलग है।
1: गजब।
0: और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया और आज तक वो विश्व रिकॉर्ड ऐसे ही है, अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की उसको, तो हम ही शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको और एक भाषा में, गुजराती में करके 4 भाषाओं में एक ही दिन में कर लेंगे। तो इसको लेकर ऐसा काम हो गया और वो नाटक ने पूरे देश में गजब ढा दिया
1: जी।
0: मराठी में हमने 150-200 शो किए, हिंदी में अभी भी वो चल रहा है मोहे पिया, अभी 300 शो होने को आए हैं अलग से हिंदी में
1: जी,
0: वो कभी हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अंग्रेजी के भी हमने 70-75 शो किए, तो हम ये 15 दिन के नोटिस पे हम किसी भी भाषा में ये नाटक कर सकते हैं।
1: क्या कमाल है।
0: हाँ, तो अभी बहुत सारे भारत भवन में भी, दिल्ली में भी संगीत नाटक अकादमी है या और कोई है, वो चाह रहे कि ये इस तरीके का एक प्रयोग हम दिल्ली में भी करें या और शहरों में भी करें, इस तरीके के आमंत्रण न्योते आ रहे हैं, अब हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं।
1: एक और कमाल है आपका, NSD के 2 अवार्ड आपको मिले।
0: जैसे

0: लोग हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने भारतीय थिएटर को जिंदा रखा है और उनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही स्वाभिमान पूर्वक है। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें दो अवार्ड स्टार्ट करने चाहिए, नहीं तो बूढ़ा होने तक जब तक उसको दो आदमी उठा के पकड़ के ले जाते तब उसके बाद अवार्ड दे के उसका इंस्पिरेशन क्या है
1: जी।
0: तो हमने एक सुझाव दिया था कि भाई ऐसे दो अवार्ड, एक 50 साल के ऊपर जो रंगकर्मी ने आउटस्टैंडिंग काम किया एनएसडी के एल्युमिनाय ने उसको एक अवार्ड दिया जाए, और 50 के नीचे जो भी नया हो 20-25 साल से लेके उस रेंज में एक अवार्ड दिया जाए, ताकि एनएसडी जब एल्युमिनाय को अवार्ड देगी तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है
1: जी।
0: तो हम एनएसडी के एल्युमिनाय को ही इंस्पायर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते रहे, काम करते रहे। तो फिर वो सोसाइटी ने मंजूर कर लिया, और एक युवा जो आवास पुरस्कार था उसको मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार के हैसियत से उसका नाम दिया, और जो दूसरा था जो सीनियर को मिल रहा है वो बीवी कारण स्मृति पुरस्कार
1: जी।
0: और हम भूल गए वो सोसाइटी में, फिर उन्होंने कोई कमेटी वगैरह बिठा दी, और पहला ही जो पुरस्कार डिक्लेयर किया कि जो सीनियर कैटेगरी में पुरस्कार जो दिया गया बीवी कारण पुरस्कार वो रतन थियाम जी को दिया गया,
1: आपके गुरु।
0: हाँ, हमारे गुरु मतलब
1: जी।
0: और दूसरा जो पुरस्कार युवा रंगकर्मी का पुरस्कार तो अमन केंद्रे को दिया गया,
1: क्या बात है,
0: तब तक के लिए योगदान के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और जब मैं एनएसडी छोड़ने के बाद मतलब मेरा टर्म खत्म होने के बाद 2-3 साल वो अवार्ड दे नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से, उसके बाद 2-4 साल नहीं दे पाए थे, तो फिर हमारे बाद के बाद के डायरेक्टर ने वो सारे पुरस्कार की घोषणाएं की समिति गठित करके, तो उसमें से जो दूसरा पुरस्कार जो मिलता है
1: सीनियर वाला
0: वो मैं पहला एल्युमिनाय हूं कि दोनों भी पुरस्कार, पहला तो स्मृति मिला ही था मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार, और ये बीवी कारण स्मृति पुरस्कार भी मुझे दिया गया, एंड ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई ये दोनों पुरस्कार पाने वाला पहला एल्युमिनाय ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वामन केंद्र है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: और

0: लेकिन एक रिकॉर्ड और भी तो है कि वहीं पढ़ के वहीं के डायरेक्टर भी बने
1: जी,
0: और एक तूफानी कार्यकाल आपने किया जिसमें बहुत वाइब्रेंट काम वहां।
1: यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे, मतलब जब विवेकानंद भी वहीं पढ़े थे वो डायरेक्टर हुए थे, ही वाज फर्स्ट एग्जांपल
0: जी।
1: उसके बाद बीएम शाह तो एनएसडी में नहीं पढ़े थे, लेकिन रतन थियाम हो गए पर उन्होंने अपना डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर हुए वो भी। मोहन महर्षि हुए पर उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे, मोहन महर्षि 2 साल के लिए रहे। उसके बाद कीर्ति जैन रही, उसके बाद अंकुर जी रहे
0: जी।
1: तो ये सारे जो थे वो वहीं पढ़े और वहीं डायरेक्टर हो गए। पर महाराष्ट्र का ये पहला रंगकर्मी था जिसको सम्मान पूर्वक वहां पर विद्यार्थी के हैसियत से नहीं पर बाहर के कंट्रीब्यूशन के हैसियत से आमंत्रित किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो वहां पढ़ा था और उसके बाद डायरेक्टर बना, कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये तो दर्ज हो ही जाएगा। पर वहां के इतिहास में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें से थोड़ा बहुत नाम तो ले ही लेंगे लोग, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए भी वो कार्यकाल वाइब्रेंट रहा ऐसा लोग अब कह रहे हैं। तब तो क्या होता है कि कोई भी कार्यकाल का महत्व योगदान रजिस्टर होने के लिए बीच में काल जाना चाहिए होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो इतना ही था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करने गया था, जितना संभव है 24 घंटे से 36 घंटा कैसे हो सकता है ये कोशिश करके। मुझे लगता है कि वहां की खूबसूरती, मतलब कैंपस की खूबसूरती, कैंपस का आर्टिस्टिक होना, एकेडमिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसको पुख्ता करना, जितनी भी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसको पहले सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाकी चीजों के लिए नहीं, पहले विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है
0: जी,
1: वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें क्या क्या मैं था तब उस समय में कौन सा माहौल था, फिर क्या खामियां थी, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई विश्वविद्यालय में 10 साल अकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स खड़ा कर चुका था, तो यहाँ क्या प्लस पॉइंट्स है, वो सारे उसमें ढालते ढालते ढालते ढालते एक बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले विद्यार्थी पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एक्टिंग में काम मिले, जो एक्टर्स है डायरेक्शन में, डायरेक्टर को स्पेशलाइजेशन 3 कर दिए, 2 ही थे, एक एक्टिंग था और डिजाइन एंड स्टेज टेक्निक्स था, तो इसमें से डायरेक्शन हटाता था वो डिजाइनर को ही डायरेक्ट करने के लिए बोल देते थे। तो मैंने कहा ये उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है ना, डायरेक्टर एक सेपरेट टेम्परामेंट है, वो अलग स्वभाव है, डिजाइनर एक अलग स्वभाव है, एक्टर एक अलग स्वभाव है। तो सिलेक्शन से ही फिर हमने वो सारा माहौल बदलने की कोशिश की और तीनों स्पेशलाइजेशन वापस शुरुआत करके, तो एक ही साथ एक बैच के साथ दो दो नाटक करने से एक्टर को काम मिलना शुरू हो गया, और जो एक्टर भी और डायरेक्टर भी, तो दोनों को भी ये कॉन्फिडेंस मिलना, और डिजाइनर कॉमन होते थे, उनको तो दो दो प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता था, फिर उनको अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन तो करना ही करना है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि एकेडमिक माहौल बहुत स्ट्रांग बन गया, फैकल्टी जितनी संभव था देश की और दुनिया की लाने की कोशिश की गई, तो ये सारा है। उसके साथ साथ उसका विस्तार किया, जो लोग कहते थे कि वो नेशनल नहीं बचा है, उसका थोड़ा सा स्वभाव दिल्ली के आसपास का बना है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसका विस्तार हो। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल एल्यूमिनाई को ये ना लगे कि ये हमारी संस्था है, पर जो भी थिएटर कर रहा है, वो चाहे अमेटर थिएटर कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल कर रहा है, चाहे पैरेलल कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मूवमेंट की हैसियत से थिएटर कर रहा है, चाहे चिल्ड्रन थिएटर कर रहा है, कोई भी किस्म का थिएटर कर रहा है, फार्मर का कर रहा है, कामगारों का कर रहा है, वो हर किसी को कोने में खड़े हुए किसी खेत में थिएटर करने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरी है,
0: वाह,
1: और मैं वहां जा सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंच सकती है और मुझे लाभ दिला सकती है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो, फेस्टिवल के लेवल पर हो। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शंस इन फेस्टिवल्स यहां से हो, क्वालिटी इज द ओनली क्राइटेरिया।
0: यस,
1: मैं हमेशा ये कहता था, भारत रंग महोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जश्ने बचपन हो, बाल संग हो, कोई भी हो, या हमारे आदि क्या कहते हैं ये क्लासिकल थिएटर का फेस्टिवल हमने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल शुरू किए, इस सब में एक ही था, क्वालिटी इज इन सेंटर। मैं ये कहता था भारंगम में कि अगर कल को मेरे पिताजी का नाटक आता है और यहां कंसीडर करने के लायक नहीं है तो उस डीवीडी को फेंक दो और तोड़ दो। कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं, कोई किसी का नहीं है। जो थिएटर क्वालिटी का काम करता है वो हम सबका है।
0: क्या बात है।
1: और उसको ही सेंटर में रख के कोशिश यही की गई कि 5 साल उस एनएसडी का जो क्वालिटेटिव माहौल है उसको भी एनहांस करने की कोशिश की गई। बहुत विनम्रता के साथ ये सब कह रहा हूं। दूसरा, मुझे लगा कि जो विस्तार होना चाहिए था उसका, जैसे बंगलोर में हमारा एक सेंटर था पर वो रिसोर्स सेंटर बन के रह गया, तो हमने कहा ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट किया 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वहां बच्चों को स्कॉलरशिप देके अब वहां 20 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। जो एक सेंटर नया क्लासिकल थिएटर में, जो हमारी धारणा थी कि एक संस्कृत शैली का थिएटर जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, कहीं और से थिएटर सीख के आया और उसको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके लिए मौका ढूंढना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए वाराणसी में 1 साल का कोर्स शुरू किया, सेंटर शुरू किया, और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा सीखने के लिए।
0: जी,
1: जो सिक्किम का सेंटर था वो 1 साल का था, हमने कहा इसको 2 साल करिए, फिर उसको 2 साल करने का सारा जो कुछ था उसको करने की कोशिश की। एक त्रिपुरा में था, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, तो हमने कहा नहीं है, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग जो थिएटर एजुकेशन में निर्माण करना इतना ही उसका काम नहीं है, आर्टिस्ट निर्माण करना भी उसका काम होना चाहिए, थिएटर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर भी निर्माण करे और हम टीचर भी निर्माण करे, इसी के लिए वो सेंटर। और दोनों सेंटर नॉर्थ ईस्ट कन्फाइंड हो कि वहां के लोगों के लिए बनाए, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उस 7 और 8 स्टेट को होना चाहिए। तो इस तरीके से मुंबई सेंटर का जो लेआउट था वो पूरा सैंक्शन करके रखा था। जम्मू कश्मीर में भी अभी अभी सेंटर खुल गया मेरे आने के बाद, तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें वहां करने का मौका मिला। फिर थिएटर ओलंपिक्स, एक सबसे बड़ी जो मतलब भारत रंग महोत्सव का, तो हमने ये तो किया ही किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है। तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो जो पहले ओलंपिक होता था जो स्पोर्ट्स का है, उसमें स्पोर्ट्स भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था।
0: ओके
1: पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया। तो कुछ विद्वानों ने, थिएटर के रंगकर्मियों ने ये तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें, और फिर वो शुरू किया। पहला वो ग्रीस में हुआ और ये मुझे पता चला फिर बाद में तुर्की में हो गया, फिर कहीं जापान में हो गया, चाइना में हो गया, कनाडा में, यहाँ वहां हो गया, और 8वां होना है ये मुझे पता चला। तो मैंने अपने सोसाइटी से कहा कि भाई ये ओलंपिक अगर हमें मिलता है तो हमको लेना चाहिए। फिर हमारी मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की, उनको कहा तो उनकी परमिशन ले ली और 8वां थिएटर ओलंपिक्स भारत में हो, इसके लिए हमने कमिटी से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हमें आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो हमने बुलाया उनको, आइए, न्योता दिया, वो आए, सब देख लिया, दिल्ली देखा, मुंबई देखा, ये 2-4 जगह देखा, और उन्होंने कहा नहीं है, ओलंपिक होने लायक तो यहाँ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनएसडी कैन हैंडल इट, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल तो हैंडल करती ही है। तो फिर उन्होंने वो हमको मौका दिया और सौभाग्य की बात है कि 51 दिन का तो 8वां थिएटर ओलंपिक्स हो गया, जो 17 राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम तक और इधर मणिपुर और गुवाहाटी से लेके आसाम से लेके इधर अहमदाबाद तक, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सारे उसके सेंटर थे। 17 सेंटर में 51 दिन में हमने 450 नाटक, 32 देशों का पार्टिसिपेशन, ये मेजर नाटक जो मेन थिएटर में किए, उसी को यूथ से जोड़ने के लिए हमने 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 300 नाटक सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी 1100 नाटक आए थे, एक कमेटी ने 300 नाटक सेलेक्ट किए, वो 300 शो और फोक, ट्राइबल और स्ट्रीट प्लेयर्स जो है हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ, वो कव्वाली से लेके सारा कुछ, तो उनके 600 650 शो,
0: तो ये तो कितने
1: ये लगभग 1500 शो, 1500 शो हमने उसमें 51 दिन में किए और जिसमें 25-26 हजार आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो गए देश के और दुनिया के।
0: तो बहुत भव्य
1: बहुत हो गया। ये ऐसा माना गया कि ये भारत के इतिहास का नहीं, रंग जगत के इतिहास का नहीं, नाटक जगत के इतिहास का नहीं है, दुनिया के इतिहास का, नाटक जगत के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट किसी ने किया हो तो भारत देश ने किया, और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया।
0: वाह वाह,
1: ये मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट हुआ। और एक बहुत अच्छी बात है, जितने नाटक वाले थे हमने 125 डायरेक्टर को इनवाइट किया, जिन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिस किसी भी भाषा में, उनको हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनवाइट किया कि भाई आप अपना बेस्ट प्रोडक्शन लेके इसमें शामिल हो जाइए। अब 125 तो नहीं हो पाए लेकिन 105 इनवाइटेड डायरेक्टर ने उसमें नाटक किए।
0: वाह,
1: कॉम्पिटेटिव फेस्टिवल में हमने कहा था कि उसमें 1200 नाटक आ गए, उसमें से 250 नाटक चुन लिए गए और विदेशी नाटक 32 देशों के नाटक आ गए। तो ऐसा मिलाकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इवेंट हो चुका है, और इतना बड़ा क्वालिटेटिव थिएटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद तो एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और सौभाग्य से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, और उसका मैं डायरेक्टर था, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है।
0: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
1: क्या बात है।

0: सिनेमा के आकर्षण से आप कैसे बचे रहे अपने पूरे जीवन काल में?
1: नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे पहले अपनी स्पेस नाटक में पैदा करना जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह है। मैं कहीं भी जाऊं, भूला भटका हो जाऊं, पर गिरने के बाद मुझे अपनी एक जगह चाहिए, वो पुख्ता जगह तैयार होना जरूरी था। पर वो क्या हो गया कि मैं एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया पहले से ही।
0: जी जी,
1: एनएसडी हो गया, रिसर्च हो गया, आके एनसीपीएम में 10 साल, फिर वही एसोसिएट हो गया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 साल हो गया। जब भी मैंने थिएटर से फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की, रंग देवता ने किसी न किसी बहाने मुझे वापस खींच लिया।
0: वहां नहीं जाना है,
1: वहां जाने नहीं दिया। मतलब ऐसी कोई परेशानियां या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी की कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करो। मतलब मैं जाने मन नाटक किया और रणांगण किया, दो बहुत मेजर प्लेस थे मेरे हिसाब से। एक ही साल के आसपास किए मैंने, और ये तय किया था कि आप 5 साल में नाटक नहीं करूंगा, तब भी ये नाटक चलते रहेंगे और नाम गूंजता रहेगा। तो अब मैं फिल्म करूंगा। तो कोई एक प्रोड्यूसर उस समय मुझसे बहुत बड़ा मेगा इवेंट करना चाह रहे थे फिल्म में, और मेगा कंटेंट पे वो बजट लेके बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, जो वाइस चांसलर थे मुंबई विश्वविद्यालय के, बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गए, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो उन्होंने एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी में मुझे भी लिया गया और बोले कि 35 साल से मैंने देखा हिस्ट्री मुंबई विश्वविद्यालय में, नाटक का विभाग हो इसके लिए इतनी कमेटियां हो गई, इतना हो गया, पर आज तक वो हो नहीं पाया। उसमें जब्बार पटेल थे, दामू केंकरे थे, मैं था, उसके बाद रघुवीर तड़ाशीलकर थे, जयंत पवार, ऐसे 7-8 लोग थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई कमेटी बिमिटी, आपकी कमेटी है अंतिम है, अब आपको 4 महीने के अंदर मुझे ये विभाग शुरू करना।
0: अरे गजब,
1: आप जो जो चाहिए बताइए मुझे क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा एक सिलेबस दे दो, तो हमने कहीं यहाँ वहां से कटिंग पेस्टिंग करके एक सिलेबस दे दिया उनको, जो उन्होंने एकेडमी काउंसिल में पारित कर लिया, मैनेजमेंट काउंसिल में पारित कर लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है। 4 महीने में उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वो 4 महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि तुमको इसका हेड होना है। तो मैंने मना कि मुझे तो जाना है, मैं तो सिनेमा करने वाला हूँ।
0: कोई मेगा प्रोजेक्ट है?
1: हाँ, मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर उन्होंने जब्बार पटेल जी को, दामू केंकरे जी को, ये सारे हमारे दोस्तों को बोला कि नहीं, इसको राजी करो। तो फिर वो होते होते फिर सुशील कुमार शिंदे जी तक बात पहुंच गई। और एक दिन उनका भी फोन आ गया कि वैसे भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए अगर वो सही आदमी के हाथ में नहीं जाएगा तो फिर ये आप लोग रोते रहोगे। तो वो जो कह रहे हैं मुणगेकर, उसकी बात मानो, और मैं आपको महाराष्ट्र की जनता की ओर से बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि 1-2-3 साल दे दो, 2 दिन 3-3 घंटा 4 घंटा दे दो, बाकी अपना काम करते रहो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है सर, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है तो आप, मैं आपको बता देता हूँ, 10 साल रात दिन काम करेंगे तभी खड़ा होगा। बोले जो भी है कर लो और इसको फाउंडेशन करके फिर बाद में छोड़ के जाओ। तो अब इतने सारे रंगकर्मी भी हैं, राजनेता भी हैं और मित्र भी हैं, ये सारे मेरे नाटक देखने वाले भी थे, तो सभी की ओर से, चारों ओर से वो लगा कि आपको करना, आपको करना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो यार, इसको 2 साल के बाद प्रोजेक्ट को करते हैं, और 3 साल के बाद फिल्म को। तो वो स्वीकारना पड़ा, और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा। 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आया।
0: जो 2-3 साल सोचा,
1: 2-3 साल सोचा था। और रात दिन मैं सुबह 7:45 पहुंचता था, रात को 12 बजे घर पहुंचता था।
0: अरे बाप रे।
1: पर चूंकि वो उतनी इन्वॉल्वमेंट से किया, इसलिए एक नेशनल लेवल का 10 साल में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, और जहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा पसंद करते थे बजाय के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए। तो जो सारा का सारा फ्लो था वो वहां से मुंबई की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में ही जाना है सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को, अपवाद तो बहुत है। तो फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल रही है।
0: जी जी।
1: तो ये भी जिसको एकेडमिक्स में जाना है उसके लिए ये भी और एक शॉर्टकट हो गया। और वो सारे लोगों को हम बुलाते थे जो बाहर जाके, जिनके साथ इनको काम करना है, चाहे वो फिरोज अब्बास खान है, चाहे दिनेश ठाकुर है, चाहे रमेश तलवार है, एमएस सत्यू साहब है, जब्बार पटेल है, डॉक्टर लागू है, नीलू फुले जी हैं, विजया मेहता जी है, जितने भी मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और परेश रावल जी है, नसीरुद्दीन शाह है, मैं ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं हमने जिनको बुलाया नहीं। तो एक तरीके का वो अड्डा बनते बनते वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, वो भी एक अपने आप में एक यूनिक, यूनिवर्सिटी के पूरे प्रेशर में, सेटअप में वो खड़ा करना भी अपने एक में एक चैलेंज था, बट आई एंजॉयड दैट आल्सो। और एक बहुत अच्छे, एक से एक बेहतर प्रोडक्शन भी हो गए। ये मध्यम व्यायोग तो उसी के लिए किया था, फिर ईडीपस किया, दो मंजिला सेट लगा के। मेरे बाद और भी डायरेक्टर्स ने भी काम किया, विजय केंकरे ने किया, चंद्रकांत कुलकर्णी ने आके काम किया, पुरुषोत्तम बेर्डे ने किया, रंजीत कपूर ने आके काम किया, अंकुर जी ने आके काम किया, इतने सारे। और ये पहला विभाग है पूरे देश में यूनिवर्सिटी के मर्यादा में कि पहले साल हमने अपना नेशनल फेस्टिवल शुरू किया।
0: वाह वाह वाह,
1: राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव
0: जी।
1: इसमें ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट नहीं किया, पूरे हर एक, रतन थियाम मणिपुर से दो बार आ गए, बंसी कौल आ गए, उसके बाद रैना साहब आ गए, उसके बाद रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आ गए, मतलब कोई भी, साउथ का बी जयश्री आ गई, अहमदाबाद से फलाना आ गया, सौम्या जोशी आ गए, इतने सारे पुराने भी डायरेक्टर्स और नए भी डायरेक्टर्स सबको वहां लाया। ऐसे प्रोडक्शन हम चुन चुन के लाते थे कि जो अदरवाइज मुंबई में देखने सुनने को मिलेंगे नहीं, तो वो लंबी लाइन में खड़े होके लोग अंदर जाते थे और वो माहौल भी देखा हमने, और सारा का सारा विद्यार्थी ऑर्गेनाइज करते थे, हम सिर्फ उसके पीछे खड़े रहते थे।
0: वाह वाह,
1: कि अंत में अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल लोग बनाने का काम वो यज्ञ जैसा हो रहा था, तो वो भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि मिसाल है, जो माहौल दिल्ली में मैं ले गया वो यही बनाया हुआ था
0: जी।
1: क्या करने से बच्चे के जीवन में परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा वहां तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एड ऑन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कम पड़ा था, क्या ज्यादा था, तो मुझे लगता है कि वो सारा जो एकेडमिक्स है उससे मेरी कहीं दोस्ती नहीं टूटी, जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेरी कोई दोस्ती नहीं टूटी, तीसरा है मेरा रिसर्च का स्वभाव अभी तक वैसा ही है, चौथा है दुनिया भर का जो हो रहा है उसका कॉग्निजेंस रखना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक अपने आप में दिलचस्प बातें थी। मुंबई में जो जो भी आता था, जो किसी भी देश से आए, वो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में आए बिना जा नहीं सकता था
0: जी। जी,
1: ऐसा कुछ हमने, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे अमेरिकन सेंटर हो, चाहे जर्मन सेंटर हो, रशियन सेंटर हो, छोटे से छोटे देश का कोई भी रंगकर्मी आता था वो मुझे पता चलता था, क्योंकि वो नेटवर्क था, दोस्ती थी इन लोगों से, जो दिल्ली में भी बहुत काम आया मुझे बाद में आगे चल के। तो इसकी वजह से ये भी खड़ा हो गया, और अभी तक मैं जब तक था, मुझे लगता है 8 बार राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव हुआ, 8 या 9 बार
0: जी।
1: तो उसमें भी हमारे बच्चों को दुनिया भर का बेहतर नाटक देखने को मिलता था, कोई नॉर्वे से आ रहा है, एक कोई आदिवासी ग्रुप थिएटर लेके उसका परफॉर्मेंस हम वहां करते थे।
0: वाह वाह,
1: मतलब ऐसा नहीं है कोई से भी, कोई भी आए और हमको पता चले कि हम उसको हाथ जोड़ के पकड़ के लाते थे, और जितना भी संभव है हमारी अपनी इसमें सुविधा देना उतना करते थे, क्योंकि एक क्लोज थिएटर कुसुमाग्रज जो भाषा सभागृह है वो हमारे हाथ में था, और एक ओपन एयर थिएटर हमने हमारे लिए हमारे इंजीनियर से कंस्ट्रक्ट करवा लिया था, उससे बेहतर थिएटर तो आज इस देश में कहीं नहीं है। ओपन एयर थिएटर में जाइए, माहौल है कि यहाँ बैठे बैठे आप करियों का आस्वाद ले सकते हो।
0: सही है, सही है। तो सिनेमा के जो आपके सपने है, आपकी धारा को,
1: तो इसीलिए सिनेमा, मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिनेमा नहीं करूंगा, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक स्पेस बननी चाहिए, आपकी जगह बननी चाहिए, और ये मेरा स्वभाव नहीं कि इसको छोड़ के उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उसको ताड़ो। मुझे लगा कि ये जहां काम करना है, जहां आनंद आ रहा है, और हर बार आप अपनी डिस्कवरी कुछ कर रहे हो, मतलब अभी तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया कि मैं अपने आप को रिपीट कर पाऊं, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नया नाटक करना चाहिए
0: जी। जी,
1: सिनेमा का भी सपने आते हैं कि मैं, मुझे ऐसा सिनेमा करना है कि जैसे पहले नाटक ने देश को हिला दिया, वैसे मैं कम से कम पहले फिल्म में दुनिया को हिला दूं, ऐसा कोई कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई कहने का तरीका ढूंढ रहा हूं, ताकि वो माध्यम में जाने के बाद लोगों को ये ना बुलाए मेरा कुछ देखो
0: जी। जी, जी।
1: वो अपने आप इतना बोलना चाहिए कि यार आई शुड गो एंड सी दैट फिल्म।
0: तब तक इस धारा को ऋत्विक आगे बढ़ा रहे हैं।
1: ऋत्विक के 2 या 3 सिनेमा आ गए हैं, और तीसरा ही पिछले हफ्ते में उसके सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल में एक स्क्रीनिंग हुआ है
0: जी। जी,
1: उसके पहले उसका ड्राई डे एक सिनेमा रिलीज हो गया है, अभी रिसेंटली एक बहुत इम्पोर्टेंट सिनेमा है जो उतना अंडरलाइन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया, पर आगे चलकर होगा। सरगम नाम का सिनेमा है और बहुत यूनिक स्टोरी पे बनाया है, और उसका खासियत यह है कि गिरीश कारनाड जी का आखिरी सिनेमा है जिसमें गिरीश कारनाड जी ने स्वतः काम किया है
0: जी,
1: और वो मराठी सिनेमा है और वो बहुत अच्छा रोल किया है गिरीश कारनाड जी ने, और ऋत्विक और गिरीश कारनाड जी आमने सामने हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: ऋत्विक प्रमुख भूमिका में, नायक की भूमिका में है, और वो ऐसा लगता है खलनायक है लेकिन वो है ही नहीं
0: जी।
1: तो ये सारा जो मुझे लग रहा है कि ये जो धरोहर है या ये जो थ्रेड्स है या जर्नी है वो तो आगे चलती रहेगी। ऋत्विक अपने तरीके से वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा में भी काम कर रहा है, और भी कुछ वो करना चाह रहा है जो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है।
0: अच्छा क्या बात है।
1: ये तो चलते रहेगा सिलसिला, पर सिनेमा भी करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव रेजिस्टेंस अबाउट सिनेमा, आई एम वेरी हैप्पी विद सम एक्सप्रेशंस। सिनेमा में भी लोग बहुत यूनिक काम कर रहे हैं और भारतीय सिनेमा भी कर रहे हैं
0: जी,
1: पर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है
0: जी।
1: मेन स्ट्रीम जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें बहुत रेयरली आपको लगता है कि यार ये ठीक है
0: जी।
1: इसलिए मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो वो इसीलिए हूँ कि मैं सिनेमा देखते रहता हूँ
0: हर तरह के
1: सिनेमा देख
0: जी। वामन केंद्र जी, आपकी तमाम अगली अभिव्यक्तियों का हमें इंतजार रहेगा, और इस लंबी बातचीत में बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिनमें अगली बार की बातचीत की गुंजाइश बनी रहे
1: जी, जी, जी।
0: तो मुझे लगता है इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस जी और विविध भारती का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना सारा गपशप करवाने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू, धन्यवाद।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का चौथा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

रात के शांत आकाश में टंगा चांद किसी प्रेम पत्र की तरह लगता है, जिसे प्रकृति ने हर प्रेमी के नाम लिखा हो। उसकी दूध या रोशनी मन की बेचैन लहरों को सहला देती है। जब कोई अपने प्यार को याद करता है तो सबसे पहले उसकी निगाहें चांद की ओर उठती हैं। मानो चांद दूर बैठे उसके प्यार तक उसके दिल का हाल पहुंचा देगा।

जब ये रात अपने आंचल में सितारों के असंख्य दीपक सजा लेती है और चांद चुपके से आसमान की चौखट पर आ बैठता है, तो उसकी चांदनी इस जमी के साथ साथ प्रेम करने वालों के दिलों पर भी उतरती है। वो हर धड़कन से कहती है, सच्चा प्रेम आकाश की तरह असीम है और चांद की तरह हर अंधेरी रात में झिलमिलाती रोशनी का समंदर बनकर लौट आता है।

ये जो रात का रोशन चांद है ना, इसने ना जाने कितनी मोहब्बतों को जन्म लेते देखा है, कितनी ही आंखों में सपने सजाए हैं, कितनी ही दुआओं को अपने उजाले में पनाह दी है। वो जानता है कि प्रेम शब्दों से नहीं, खामोशियों से लिखा जाता है, और चांदनी वही खामोशी है जो दिल से दिल तक बिना आवाज पहुंच जाया करती है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। कभी ये चांद किसी के चेहरे का रूप बन जाता है, तो कभी किसी की याद का। कभी वो मिलन की रात का गवाह होता है, तो कभी जुदाई की लंबी रातों का हमसफर। मगर उसकी चांदनी हर बार यही कहती है, मोहब्बत दूरियों से नहीं हारती, वो तो इंतजार से और भी गहरी हो जाती है।

टाइम भी चांद की तरह है, वो हर दिन एक सा नहीं रहता। कभी पूर्णिमा की उजली मुस्कान बनकर जीवन को आलोकित कर देता है, तो कभी अमावस्या की खामोशी में भीतर ही भीतर धड़कता रहता है। पर जैसे चांद बादलों भरी रात में भी कभी खोता नहीं, बस कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम भी परिस्थितियों के बादलों में छिप सकता है, लेकिन मिटता कभी नहीं।

कहते हैं इश्क अगर सच्चा हो तो प्रेमियों की आंखों में चांद उतर आता है और चांदनी उनकी मुस्कान में खिल उठती है। मोहब्बत अगर चांद है तो विश्वास उसकी चांदनी है। चांद कभी कभी बादलों में छिप जाता है मगर चांदनी का एहसास हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल के आंगन को रोशन करता रहता है।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MM Sky, सीखो भी कमाओ भी।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय। 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी। गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

फिल्म संगीत का आनंद अभी आप उठा रहे थे श्रोताओं। अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम लोक संगीत में जाने का, क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय। 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी। गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

0: सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस पेंशन की बात कर रहा हूँ।
1: एनपीएस पेंशन?
0: हाँ, आज ही एनपीएस में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो।
1: बुढ़ापा सुरक्षित?
0: हाँ भाई, एनपीएस भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम संध्या वंदन का।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय। 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी। गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की। प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शब्दों की सुंदरता देखिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या वंदन। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है, शाम के 7 बजने वाले हैं। तो आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से और सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने बताया है कि 4 लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है, जबकि एक व्यक्ति को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस के अनुसार स्थानीय जांच में पता चला कि इमारत 40 से 50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय इसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर भी प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान भी किया है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन, और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी हैं। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। ईरान और अमरीका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। IRGC ने दावा किया है कि इन पोतों ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी में हिस्सा लिया था। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया है। अमरीकी सेना के अनुसार यह कार्रवाई उस समय की गई जब IRGC ने क्षेत्र में गश्त कर रहे अमरीकी नौसेना के 2 युद्धपोतों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राज।
1: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अभी आप समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से, और अब वक्त है संदेशों का।
0: राजाधिराज भगवान महाकाल अवंतिका।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय। 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी। गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की। प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आ गया सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 4 दिवसीय दुबई दौरे पर। सागर जिले में संदिग्ध जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत, 24 का इलाज जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, शिक्षा ज्ञान कौशल और नागरिकता के संस्कार देने का माध्यम है। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, ग्वालियर चंबल और सागर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 4 दिवसीय दुबई दौरे पर हैं। वे 6 से 9 सितंबर तक इन्वेस्ट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत यूएई के प्रमुख निवेशकों, उद्योग समूहों और वैश्विक कारोबारी नेतृत्व से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।
1: प्रदेश की धरती से जब मैं आज यहाँ अपने निवेशकों से जुड़े हुए व्यापार व्यवसाय के कई कारणों से अलग अलग प्रकार के सेक्टर में बड़ी संभावना लेकर के जब यहाँ आए
0: मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पेवेलियन के जरिए प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, पर्यटन तथा निवेश अवसरों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेंगे। दौरे के दौरान प्रवासी भारतीयों से संवाद, यूएई के वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े कारोबारी समूहों से बैठकें तथा वन टू वन निवेश चर्चा होगी। मुख्यमंत्री 7 सितंबर को मध्य प्रदेश पेवेलियन का उद्घाटन करेंगे, जबकि 8 सितंबर को प्रमुख निवेशकों और शारजाह के कारोबारी प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद 9 सितंबर को दुबई से नई दिल्ली रवाना होंगे। सागर जिले की बंडा तहसील के आसपास के गांव में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोगों का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की तत्काल जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र की 6 शराब दुकानों को एहतियातन सील कर सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग 8-9 की डेथ हो गई है और कुछ उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती है, और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा।
0: आबकारी विभाग के अधिकारियों के प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर उपायुक्त आबकारी को मुख्यालय अटैच और 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सागर छतरपुर मुख्य हाईवे पर चक्का जाम किया। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्य निकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। आज उन्होंने गृह मंत्रालय की बैठक में हिस्सा लिया और मादक पदार्थों के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दिल्ली में हुआ हादसे के मद्देनजर गोवा बीजेपी मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक, निवेश और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश देश के उभरते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर तकनीक भारत के आत्मनिर्भर और विकसित भविष्य की आधारशिला है। सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम 2.0 में मध्य प्रदेश अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद इस क्षेत्र में देश की गति तेज हुई है। उल्लेखनीय है कि इंदौर में 23 और 24 अक्टूबर को एमपी सेमीकंडक्टर समिट 2026 आयोजित होगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान कौशल और नागरिकता के संस्कार देने का माध्यम है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात आज रायसेन जिले के मंडीदीप में आयोजित शिक्षक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक कैसे जिंदगी बदल सकता है, इसका उदाहरण वह स्वयं है।
4: सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षक भाई और बहन यहाँ से लेकर फाटक बैठे हुए, लेकिन आज मुझे भी मेरे गुरुजी याद आ गए। मैं तो बेटा बेटी उनको भी बताना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई मेरे गाँव में हुई, प्रारंभिक सरकारी स्कूल, और एक शिक्षक कैसे जिंदगी बदल सकता है इसका उदाहरण भी मैं हूं। पहली से लेके चौथी क्लास तक मुझे पढ़ाया, मैं एक ही शिक्षक थे, स्वर्गीय रतन चंद जैन जी।
0: इससे पहले श्री चौहान ने शासकीय सिविल हॉस्पिटल मंडीदीप में नवनिर्मित ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण किया। मंडीदीप जाते समय रास्ते में सड़क दुर्घटना देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद का गोल्डन आवर बेहद महत्वपूर्ण होता है और समय पर की गई मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। उज्जैन में होने वाले सिंहस 2028 को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने इंदौर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। सिंहस के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 125 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि यात्रियों पर अतिरिक्त किराए का बोझ न बढ़े, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। चेयरमैन ने इंदौर स्टेशन के रीडेवलपमेंट शास्त्री ब्रिज तथा इंदौर मनमाड़, इंदौर खंडवा और इंदौर उज्जैन रेल सेक्शन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों पर एआई तकनीक वाले कैमरे लगाने की भी तैयारी है। भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने शेंझेन में चाइना मास्टर्स का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू को 11-21, 21-13, 21-17 से हराया। इसके साथ ही सात्विक चिराग ने पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। इंदौर में 11 और 12 सितंबर को यात्री परिवहन विजिट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में आधुनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार के साथ सुरक्षित सफर और ग्रीन मोबिलिटी को प्राथमिकता दी जा रही है। समिट में सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण अनुकूल यात्री परिवहन व्यवस्था को लेकर विशेषज्ञों, निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच विचार विमर्श होगा। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में भारी बारिश अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से कई स्थानों पर नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और जलभराव की स्थिति बनने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और रीवा संभाग के कई जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में कुपोषण से निपटने के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने परियोजनावार कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया है। रायसेन जिले के मंडीदीप में निवासियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नए ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण हुआ। उज्जैन में प्रदेश के प्रतिष्ठित सहकारी डेयरी ब्रांड सांची ने अपनी 45 वर्षों की विरासत को आधुनिक स्वरूप देते हुए उज्जैन में अपनी नई ब्रांड पहचान और रीडिजाइन की गई पैकेजिंग लॉन्च की है। शहडोल जिले के केशवाही वन परिक्षेत्र के कुडेली बीट में मादा भालू के हमले में 73 साल के बुजुर्ग चरवाहे की मौत हो गई है। खंडवा में शिक्षक दिवस के अवसर पर नगर निगम कार्यालय सभागार में गुरु वंदना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राचार्य, प्रधानाचार्य और संस्था प्रमुखों को सम्मान किया गया। शिवपुरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आगरमालवा कुंडालिया बांध का जलस्तर बढ़ने पर डैम के 3 गेट खोले गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं कुछ संदेश।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
9: nmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
10: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय। 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी। गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

0: लापरवाही फसल की उपज और गुणवत्ता पर असर डाल सकती है, जबकि समय पर किया गया सही कार्य कृषि उत्पादन को बेहतर बना सकता है। और इसीलिए हमारे आज के हेलो ग्राम सभा का विषय हमने रखा है खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। तो धान, सोयाबीन, मक्का, अरहर, उड़द, मूंगफली जैसी खरीफ फसलों में इस समय कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज आपसे बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए विशेषज्ञ अतिथि के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र CIAE भोपाल में। आपको बता दें डॉक्टर साहब फसल और खेती के जानकार हैं और इस क्षेत्र में काफी लंबा अनुभव रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका हेलो ग्राम सभा में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होता है, जहां टेलीफोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, खरीफ फसलों में समसामयिक कार्यों से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। वैसे तो हमारे किसान भाई हमारा टेलीफोन नंबर जानते ही हैं, लेकिन जो नए किसान श्रोता हमसे जुड़े हैं उन्हें बता दें भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 और हमारे फोन नंबर है 2660902 और 2660903। इन नंबरों पर आप हमें फोन करें और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह जी, उनसे आप सीधी बातचीत कर सकते हैं। तो और संकेत मिल रहा है कि आज के पहले फोन लाइन पर हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, मैं देशराज सिंह
3: रिकॉर्डेड
2: जी, जिले से ग्राम रामगढ़ पंचायत फिलहाल।
0: देशराज जी कहाँ से बोल रहे हैं?
2: ग्राम रामगढ़ जिला गुना से।
0: गुना से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में। बताएं क्या सवाल है आपका?
2: मैम सवाल यही है, जो आने वाली फसल के लिए जो तैयारी, ये पानी से काफी दिक्कत आ रही है, जिससे क्या है कि खरपतवार तो बढ़ ही रहा है, साथ में किसान उस प्रकार की तैयारी नहीं कर पा रहा जो उसे करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सर।
4: जी देशराज सिंह जी, जैसा कि कुछ जगहों पे थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई है, उसके लिए हमें ये ध्यान देना है, यदि आप सोयाबीन यानी या दलहन की फसल आपने लगाई है, सोयाबीन है आपका, अरहर है या उड़द या मूंग है, यदि इनको आपने लगा रखा है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि खेत में बहुत समय तक पानी ना ठहरने दें, उसको किसी भी तरीके से उसको चैनल बना करके उसको खेत से बाहर निकालें, क्योंकि अगर अधिक समय तक पानी का भराव, जल भराव होगा तो हमारी फसलों में जड़ सलन रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से किसान भाई हमें ये ध्यान दें, अभी बीच ये समय चल रहा है कि खेतों में हमारे फसलों में बहुत सारे जो है कीट और रोग का प्रकोप होता है, तो हमें समय समय पर निगरानी करनी चाहिए फसलों की, जिससे कि किसी भी तरह का जो हमारे फसलों में आने वाले रोग हैं या कीट व्याधियां हैं उनको हम समय रहते पहचान करके उनका रोकथाम कर सकें। तो यदि ऐसी कोई चीजें हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या चीजें हैं। और रही बात खरपतवार प्रबंधन की, तो देखिए अभी खरपतवार, हम जो भी हम खरपतवार प्रबंधन करेंगे वो हम उसकी निराई गुड़ाई निकाल करके ही कर सकते हैं।
0: तो उम्मीद करते हैं देशराज जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ है फोन लाइन पर। जी नमस्कार, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर साहब, इस समय यानी कि सितंबर के महीने में खरीफ फसलों की सामान्य स्थिति को देखते हुए किसानों को सबसे पहले किन कृषि कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है?
4: जी सितंबर का महीना चल रहा है, हमारी ज्यादातर जो भी फसलें हैं फूल वाली अवस्था में या फलियां बन चुकी हैं हमारी फसलों जी, में जी। तो हमें समय समय पर अपने फसलों पे निगरानी करते रहना चाहिए, डेली हमें खेतों पे जाके देखना है कि हमारी फसलों में किस तरह के कीट या बीमारियों का प्रकोप हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं किसान भाई मध्य प्रदेश के परिवेश में, हमारी जो सोयाबीन की मुख्य फसल है, तो सोयाबीन की फसल पे अगर हम बात
0: जी सर हम बीच में रोकना चाहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक और कॉलर लाइन पर है। जी नमस्कार, हेलो, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, आप सुन पा रहे हैं?

0: हेलो, शायद कनेक्शन फिर टूट गया है हमारा। जी सर, आप बात
1: जी,
0: कर
1: तो
0: रहे थे।
1: हम बता रहे थे इस समय सोयाबीन की, जैसे फसल हमारी प्रमुख फसलों में से एक है, तो सोयाबीन की फसल में फलियां इस समय लग चुकी हैं। और तो उसमें हमें क्या चीज इस समय देखने को मिलता है? कई बार हमारे जो कीट हैं, तना जो फली विधक कीट आने की संभावना बढ़ जाती है, और इसी समय हमारा कई बार अगले किसान भाई।
2: नहीं, मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: जी, नमस्कार राकेश जी, सजीव फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं राकेश जी आप?
2: मैं शिमला से बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, शिमला का मौसम कैसा है राकेश जी?
2: जी, शिमला का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत साफ है, और इस समय ऐसे मौसम में आपका जो है ग्राम सभा भी सुन रहा हूँ और कॉल भी लगाया तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताएं क्या सवाल करना चाहते हैं आप हमारे विशेषज्ञ से?
2: विशेषज्ञ से मैं ये सवाल करना चाहूंगा, जैसे कि जैसे सोयाबीन होगी, ये जो राजमा की भी होती है, ये फसलें अन्य फसलें, इसमें जो है पोटाश की कमी रहती है, तो इसमें पोटाश के लिए हमें क्या क्या किस तरह से हमें छिड़काव करना चाहिए और क्या क्या इसमें सावधानी रखनी चाहिए?
0: बिल्कुल
1: जी जी राकेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो सबसे पहले राकेश जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो भी ये फसलें हैं, हमें पोटाश यदि देना है तो सबसे सही जो तरीका होता है, जब हम बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तीन चीजें जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, उनकी हम संतुलित मात्रा हम खेत की तैयारी करते समय ही हमें देना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय यदि हम दे देते हैं तो हमारी मृदा में इन पोषक तत्वों की धीरे धीरे पर्याप्त मात्रा भी हो जाती है और फसलों में भी ये बहुत आसानी से ले लेते हैं। तो सबसे सही तरीका होता है खेत की तैयारी करते समय हमें इन पे दे देना चाहिए। फिर हमारे कुछ जो है घुलनशील पोषक तत्व हैं, अगर उस समय, तो हमारे घुलनशील पोषक तत्वों को भी हम इस समय उनमें फसलों में छिड़काव करके दे सकते हैं। लेकिन अगर सही आप इसका जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि हम खेत की तैयारी करते समय ही दें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता होती है। ज्यादातर हमारी जो फसलें हैं उनको 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटाश की आवश्यकता होती है।
0: जी, तो उम्मीद करते हैं राकेश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपकी परेशानी का आपको उत्तर मिल गया होगा। सर, अगर हम सोयाबीन की बात करें तो इस समय कौन से सबसे ज्यादा कीट और रोग इसमें देखने को मिलते हैं
1: जी,
0: अपने को?
1: सोयाबीन की बात कर रहे थे तो उसमें जैसे मैंने बताया कि फली लग चुकी है, फली
0: जी
1: छेदक कीट आने की संभावना रहती है, और इसी समय हमारे तंबाकू की सुड़ी या बिहार हैरी कैटरपिलर, ये भी आने की संभावना रहती है। तो अगर इस तरह के कीट किसान भाइयों को दिखते हैं, क्योंकि बिहार हैरी कैटरपिलर और तंबाकू की सुड़ी इसकी निचली पत्तियों की निचली सतह में इसको अंडे देते हैं और वो एक साथ गुच्छ देते हैं अंडे, तो उसमें हैचिंग भी एक साथ होती है, एक साथ इल्लियां बहुत ढेर सारी दिखती हैं, तो हम उसे सही समय पे हम अगर उसको देख लेते हैं बीच बीच में जा करके, तो इसके लिए हमें क्विनालफास या प्रोफेनोफास 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देना चाहिए। और आज आवश्यकता है जी।
0: सर बीच में फिर रोकना चाहेंगे, एक और कॉलर फोन लाइन पर है। जी नमस्कार,
3: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, हेलो ग्राम सभा में स्वागत है आपका, नाम बताइए।
3: मैं नारायण सैनी बोल रहा हूँ, ग्राम ककरावदा, जिला विदिशा।
0: जी जी नारायण जी, बताएं क्या सवाल है, आप सर से क्या पूछना चाहते हैं?
3: मैं खेती करता हूँ मैडम, डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि आज जो हमारे खेत में तोड़ू और कचड़ा है
0: जी जी,
3: तो उसमें हम सफाया डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते अभी?
0: बिल्कुल,
1: देखिए नारायण सिंह जी, हम लोग खेत में सफाया, यानी जो आप ग्लाइफोसेट की बात कर रहे हैं या पैराक्वेट की बात कर रहे हैं, तो ये जो सफाया चट या सफाया नाम से जो दवाएं हैं, हम खेतों में डालने के लिए इसे रिकमेंड नहीं करते हैं। ये दवाएं जो हैं, अगर हमारे जहां पर जो बंजर भूमियां हैं, हमारे नहर के किनारे पट्टियां होती हैं, इन जगहों पर, क्योंकि अगर हम इस हानिकारक जो खरपतवार नाशी यदि हम इसको डालते हैं तो हमारे फसलों में फिर जब जब जब हम दूसरे उसके सेलेक्टिव वीडिसाइड डालते हैं, है ना, तो उसका असर फिर काफी कम हो जाता है। तो इसलिए जो है अभी इस समय खेतों में हमें खड़ी फसल में इस तरह के खरपतवारों को नहीं डालना चाहिए। अभी आप केवल और केवल उनको उखाड़ करके ही खत्म कर सकते हैं या काट के खत्म कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो नारायण जी ध्यान रखिए सफाया का इस्तेमाल नहीं करना है, आप हटा सकते हैं उनको, हाथ से निकाल सकते हैं। एक और कॉलर फोन लाइन पर हैं। जी नमस्कार, स्वागत है हेलो ग्राम सभा में, सवाल करें, नाम बताएं अपना।
3: जी मैडम, नारायण सैनी बोल रहे हैं, ग्राम ककरावदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
0: जी जी जी, आप अभी विशेषज्ञ
3: पूछना था थोड़ा सा कि हमारे खेत में कचरा है, टोड़ हो रही है, तो उसमें हमें बताया दुकानदार ने कि बस सफाया डाल दो।
0: जी अभी डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं कि अभी आपको सफाया का इस्तेमाल नहीं करना है। सर एक बार
1: जी, नारायण सिंह जी देखिए क्या होता है ना, फिर जब हम दुकान वाले बताते तो जरूर हैं, हम लोग पहले ही बताते हैं कि हमें पैराक्वेट का इस्तेमाल या सफाया के नाम से, ये जो हमारे इस तरह के जो है खरपतवार नाशी हैं, इनको हमें केवल और केवल ऐसी जगहों में उपयोग करना है, हमें खेत में नहीं डालने का है ना। खेत में भी डालेंगे तो इसका साइड इफेक्ट हमारी अगली फसल में भी पड़ता है, तो इसलिए इसको जो है सुखा तो देगा वो आपकी फसल जो खरपतवार है, लेकिन उसका जो है और भी यदि आपकी फसल होगी तो उसमें भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो यदि सेलेक्टिव हर्बिसाइड यानी जो क्रॉप बेस्ड सेलेक्टिव खरपतवार नाशी आप डालते हैं तो वो डालेंगे तो अच्छा होगा, वो फसल को आपकी बचाएगा और खरपतवारों को समाप्त करेगा। धान के लिए अलग होता है, सोयाबीन के अलग होता है, मक्का में अलग होते हैं, तो हर तरह के, लेकिन समय जो है उसका फसल लगाने के 15 से 20 दिन से लेकर के 30 से 35 दिन तक डालें तो सही होता है।
0: बिल्कुल, तो किसान भाइयों खरीफ फसलों में समसामयिक कार्यों से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। और एक और कॉलर फोन लाइन पर हैं। जी नमस्कार, स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम में।
4: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताएं आप अपना।
4: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था मैडम, आदिवासी बहुल क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: बहुत बढ़िया, और उमरिया में बढ़िया है हालचाल सबके, मौसम के
4: लगातार बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है और उपयुक्त तो पानी यहाँ पे मिल रहा है फसलों के लिए।
0: बहुत बढ़िया, तो बताएं सर से क्या सवाल करना चाहते हैं आप, क्या
4: पूछना? माननीय विशेषज्ञ महोदय से मेरा प्रश्न रहेगा सर, जैसे कि हम लोग राय की जो फसल लेते हैं सर वो अक्सर पितर पक्ष में लेते हैं, क्या उससे पहले यदि बुवाई कर दिया जाए तो अच्छी फसल मिलने की संभावना रहेगी या नहीं, कृपया बताएं।
1: राय यानी सरसों की बात कर, राय सरसों है ना जो हमारी तिलहन वाली फसल है उसकी बात आप कर रहे हैं?
4: हाँ जी सर।
1: तो जैसे ही देखिए राय सरसों का समय हमारा 15 से 20 सितंबर के बाद से भी शुरू हो जाता है, अगर हमारे खेतों में नमी प्रॉपर है, मतलब कि आपको खेत तैयार करना पड़ेगा, तो इस समय ये मान के चलिए कि यदि आपकी बारिश खत्म हो जाती है तो आप जो है अपना खेतों की अच्छी तरीके से तैयारी करके 20 से 25 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आप राई या लाहा के नाम से भी जानते हैं तो इनकी आप बुआई कर सकते हैं।
4: जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बिल्कुल सर, हमारे ज्यादातर किसान भाई जागरूक हैं और सजीव फोन इन कार्यक्रम से अपनी फसलों से जुड़ी समस्याओं का हल भी ले रहे हैं और जान रहे हैं कि खरीफ फसलों में कौन कौन से समसामयिक कार्य उन्हें करने हैं। सर हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं, तो अगर सोयाबीन की जो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और या पौधों की बढ़वार रुक जाती है तो किसान कैसे पहचाने की समस्या पोषण की है या किसी रोग की?
1: जी देखिए सोयाबीन जैसे कि हमारी दलहन फसल है तो पोषण की वजह से बहुत कम उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, रोग के ही कारण वो लक्षण दिखते हैं। किसान भाई हाँ, तो ये रोग के लक्षण होते हैं, तो जिस तरीके से अगर हमें पीले धब्बा रोग आता है उसमें और आप देखते हैं कि पीला मोजेक रोग आ जाता है, ये बहुत ज्यादा हमारी फसलों में देखा जाता है, तो यदि पीला मोजेक रोग आपके उसमें फसल में दिखता है तो आप देखेंगे कि अन्य फसलों की अपेक्षा हमारे फसल पौधों में जिन पौधों में ये रोग दिखेगा उनकी बढ़वार कम हो जाएगी, पौधे छोटे रह जाएंगे और ये रोग हमारा खेत के बाहरी भाग की तरफ से शुरू होता है, हिस्से से होता है, क्योंकि इस जो रोग का फैलाने का काम करता है वो सफेद मच्छर जिसे हम व्हाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं, तो उसे हमें कंट्रोल करना है, तो किसान भाई यदि इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है येलो स्टिकी ट्रैप, पीले रंग का जो स्टिकी ट्रैप आता है उसको हमें खेत में अपने लगाना चाहिए, एक एकड़ में 10 से 12 जगह यदि हम येलो स्टिकी ट्रैप लगा देते हैं तो हम सफेद मच्छर को रोक सकते हैं, ये बहुत वायरस जनित बीमारी को ये जो है फैलाता है। इसके साथ-साथ में अगर हम देखते हैं फिर हमें जो है जाना चाहिए नीम के तेल में जो हमारे रस चूसक कीट हैं उनके लिए हमें नीम का तेल का इस्तेमाल करना बहुत क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है इसलिए हम सबसे पहले संस्तुति करते हैं किनकी जो हमारे अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक ना हो तो पहले हमने बताया आपको एलोएस्टी की ट्रैप लगाएं अगर उससे नहीं रुकता है तो हमें फिर नीम ऑयल 3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर दें इसके अलावा किसान भाई अगर जाते हैं अगर बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो फिर हमारा इमिडा क्लोरपीट 3 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो इस तरीके से हम ये एलोवेन मोजेक का कंट्रोल कर सकते हैं और किसान भाई दूसरी जो बीमारी इसमें दिखती है जो हमारी पत्तियां भूरे रंग में धीरे धीरे चकत्ते बढ़ते चले जाते हैं
0: सर हम इस पे आगे बातचीत करेंगे एक कॉलर फोन लाइन पर है जी नमस्कार स्वागत है हेलो ग्राम सभा में आपका
5: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला दीदी मनोज नामदेव
0: मनोज नामदेव जी बहुत बहुत स्वागत है हेलो ग्राम सभा में आपका
5: धन्यवाद दीदी
0: कैसे हैं भैया आप
5: बस दीदी बढ़िया है आपको आशीर्वाद है भगवान की कृपा से बहुत ही बहुत बढ़िया है दीदी
0: बहुत ही बढ़िया होना चाहिए और आज का प्रोग्राम भी सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है आपकी जानकारी मिल रही है आपको
5: बिल्कुल दीदी आपका प्रोग्राम बिल्कुल सुन रहा हूँ बहुत बढ़िया लग रही है और जो भी सर जी आज आए हैं बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो आपको सर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद
0: बिल्कुल अब आप सर से सवाल कर सकते हैं कि क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं क्या समस्या आ रही है आपको
5: दीदी मेरा ये सवाल है कि उर्द मूंग में बहुत एदर हो चुका है जैसे चारा है और उसमें चौड़ी पत्ती वाली वो होती है वो भी हो चुका है तो अब उसको मैं कुछ उसमें दवाई डाल दूं या फिर उसको हाथों से पटाकर फेंक दूं सर से पूछना चाहता हूं
0: बिल्कुल
1: जी मनोज नामदेव जी अभी क्योंकि उर्द और मूंग की फसल आपकी इस समय फूल की अवस्था में होगी या तो फलियां लग गई होंगी
5: बिल्कुल सर फलियां आ चुकी हैं
1: जी जी तो नामदेव जी हम यही संस्तुत करेंगे कि जो भी चौड़ी पत्ती खरपतवार या हमारे फसल से जो ज्यादा बड़े हो गए खरपतवार उनको आप जो है हाथ से उखाड़ करके ही हटाएं वही आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि अब हमारे फसल को बहुत ज्यादा उनसे नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम ये पहले ही इनको जो हम संस्तुत करते हैं खरपतवार नाशी दवा देने के लिए तो हम कहते हैं कि 30 से 35 दिन की अवस्था तक खरपतवार नाशी डालेंगे तो उसका अच्छा जो है आपको लाभ मिलेगा और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं
5: बिल्कुल सर आपने अमूल्य समय दिया बहुत अच्छी जानकारी आपको दिल से धन्यवाद
0: बिल्कुल तो किसान भाई लगातार हमें कॉल कर रहे हैं और किसान भाइयों आज हमारा विषय जो हमने रखा है खरीफ फसलों में समसामयिक कार्यों से संबंधित है तो इससे संबंधित जो भी आपके सवाल हैं आपके मन में कोई समस्या आ रही है खरीफ फसलों से जुड़ी हुई है तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर है 2660902 और 2660903 इन नंबरों पर आप हमें फोन करें हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह जी उनसे सीधी बातचीत करें सर धान की अगर हम बात करते हैं तो धान में इस समय पानी का प्रबंधन किस तरह किया जाना चाहिए
1: जी देखिए जैसा कि हम जानते हैं इस समय हमारे धान के लिए उस हिसाब से बारिश हमारे पूरे मध्य प्रदेश में काफी अच्छी हो रही है तो हमारी धान की फसल जो कहीं ना कहीं शुरुआती अवस्था में देखने को मिली थी हमारी धान की फसल थोड़ा कमजोर हो रही थी लेकिन अभी हमारी धान की फसल बहुत अच्छी हो गई है तो पानी भी हमारे धान के खेत के लिए पर्याप्त है बस किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है कुछ रोग और कुछ कीट इस समय आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कीट है इस समय तना भेदक कीट तो तना भेदक कीट क्या करता है कि हमारी जो मुख्य जो हमारा तना होता है जो बढ़वार वाला होता है उसी की गांठ के पास जो कोमल भाग होता है वहां पे तना भेदक कीट का मादा वयस्क जो है उसमें अंडे दे देती है उसके बाद धीरे धीरे वो जो अंडा जब सूड़ी में बदल जाता है तो उसको खाते तने को खाते हुए पूरे तने को खोखला कर देता है जिससे हमारे पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है और कुछ किसान भाइयों की यदि फसल जहां की बाली वाली अवस्था में आ चुकी होगी जिनमें फसल में बालियां आ गई होंगी तो बाली वाली अवस्था में भी जो है हम इस तरह का प्रकोप देखने को मिलता है
0: बिल्कुल सर और हमें संकेत मिल रहा है कि हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर है जी नमस्कार स्वागत है हेलो ग्राम सभा में हेलो
6: मैम नमस्कार मैं नरेंद्र दांगी बोल रहा हूँ जिला
0: सिवनी जी नरेंद्र दांगी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम में बताएं क्या सवाल है आपका सर से क्या जानना चाह रहे हैं
6: हमारे सोयाबीन में फली लगी है, कुछ करे भी है तो मैम सफेद मच्छर लग रहे हैं, तो वो कौन सी दवा से कंट्रोल होंगे?
1: जी जी नरेंद्र जी, सफेद मच्छर का प्रकोप काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और तो सफेद मच्छर के लिए नरेंद्र जी सबसे अच्छा जो है, मैं पहले एकीकृत प्रबंधन की बात करूं तो एलोस्टिकी ट्रैप, पीले रंग का जो ट्रैप आता है, एक एकड़ में यदि हम 12 से 15 जगह लगा देते हैं अपनी फसल से, 1 से 1.5 फीट हाइट पे यदि लगाते हैं तो सफेद मच्छर उसमें जाकर के चिपक जाते हैं। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो सबसे पहला आप उसमें छिड़काव करिए नीम ऑयल का। वैसे हमें इस सफेद मच्छर की रोकथाम के लिए हमें समय समय 10 से 15 दिन के अंतराल पर नीम का तेल 3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर समय समय पर छिड़काव करते रहना चाहिए, तो इससे हम निजात पा सकते हैं। यदि फिर भी यदि किसी कारणवश कंट्रोल नहीं हो पाता, यदि आप दवाओं के द्वारा यानी रसायन के द्वारा यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो इमिडा क्लोरपिट नामक दवा 3 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। और छिड़काव करते समय ये ध्यान देना है कि ये सफेद मच्छर जो है निचली पत्तियों में, पत्तियों के निचले भाग में जो है छिपे रहते हैं, तो वहां पे भी हम नोजल को नीचे से ऊपर की तरफ से डालें जिससे कि दवा वहां तक पहुंचेगी और आसानी से जो है हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी तो उम्मीद करते हैं नरेंद्र दांगी जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर अभी हम बात कर रहे थे कि इस समय धान में तना छेदक, पत्ती लपेटक और अन्य कीट जो हो जाते हैं, तो उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं किसान?
1: तो जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, तो जो इस अवस्था में यदि हम देखते हैं कि कुछ किसान भाइयों की हमारी फसल बाली वाली अवस्था में आ जाती है, तो आप दूर से ही देखेंगे कि बालियां हमारी सफेद रंग की दिखने लगती है, लगता है कि धान हमारा पक चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन बालियों में दाने भी नहीं। और हम बालियों को यदि निकालते हैं तो बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। तो यदि हमारे खेत में 10 से 15 जगह 20 जगह यदि ऐसा प्रकोप देखने को मिल जाता है, हम जाकर के बालियों को आसानी से निकालेंगे तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। और फिर उसको यदि हम डंठल को फाड़ करके देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको तना भेदक की छोटी इल्ली दिख जाएगी। तो उसके ऐसा प्रकोप यदि आपको देखने को मिलता है तो उसके लिए किसान भाई हमारे सबसे अच्छा जो है प्रोफेनोफास या क्यूनोलफास नामक दवा 1.5 से 2 मिलीलीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। और एक एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन के लिए यदि जाते हैं तो हम फेरोमोन ट्रैप लगा करके भी इनके वयस्क को रोक सकते हैं जिससे कि इनकी संख्या काफी कम हो सकती है। तो किसान भाई, और इसी तरीके से पत्ती लपेटक कीट भी इस समय आता है धान में। पत्ती लपेटक कीट जो है देखते हैं कि पहले उसकी जो एडल्ट है मादा वो अंडे देती है, और फिर जैसे सूढ़ी अवस्था में आता है तो धीरे धीरे वो पत्ती को रोल करके अंदर जा करके और पत्तियों को खाता है और हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए भी हमारा यहाँ पे क्यूनोलफास या प्रोफेनोफास का हमें छिड़काव करना चाहिए।
0: बिल्कुल जी सर, अगर हम मक्का की बात करते हैं तो इस समय कौन कौन से प्रमुख कीट रोग चिंता का विषय किसानों के लिए बन सकते हैं?
1: किसान भाई
0: लगता है एक कॉलर फोन लाइन पे है, हम अपने सवाल को बाद में दोहरा करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है हेलो ग्राम सभा में।
7: हाँ जी मैडम, ये पत्तियां में इल्ली पड़ने लगी, पत्तियां जो है अपने सोयाबीन की,
0: जी जी
7: इसमें पत्ती अपने आप जैसे इल्ली पड़ जाती है तो पत्ती सब खत्म हो गई, तो इसके क्या कैसे क्या
0: पत्तियां खत्म? जी नाम बताए सर आप अपना।
7: ठीक है, नीला मोजक पड़ने गया इसमें।
0: जी सर नाम बताएं आप अपना।
7: पवन मेहता, नागदा।
0: पवन मेहता कहाँ से बोल रहे हैं सर?
7: नागदा जिला उज्जैन।
0: उज्जैन से जी स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में। बिल्कुल सर आपके
1: जी पवन जी, मैंने आपकी प्रश्न को सुना, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ आपके प्रश्न के अनुसार आपकी सोयाबीन की पत्तियों में जो इल्लियां आप कह रहे हैं वो इस समय जो आती हैं बिहार हैरी कैटरपिलर या तंबाकू की सुड़ी, ये काफी मात्रा में छोटी छोटी आप उसको देखेंगे तो रोएं उसके ऊपर लगे होते हैं, है ना? तो ये वही है, तो इस समय क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंडे ये पत्तियों के निचले भाग में अंडे देती है और एक साथ अंडे देती है और एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती हैं। तो इसके लिए हमें क्यूनोलफास या प्रोफेनोफास नमक दवा 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना, और छिड़काव यहां पर भी हमें यह ध्यान देना है कि हम इसको नोजल को जब करें तो पत्तियों के निचले भाग को भी हम अच्छी तरीके से भिगोते चले। दूसरा एक बहुत अच्छा आपका इसका उपाय है, एक तो फेरोमोन ट्रैप भी हमें लगाना चाहिए अपनी फसल की शुरुआती अवस्था से ही, हमें एक एकड़ में 10 से 15 जगह हम फेरोमोन ट्रैप लगा दें, और दूसरा एक बहुत अच्छा सरल उपाय है जिसे हम कहते हैं चिड़ियों के बैठने के लिए टी आकार की खूंटियां बना देते हैं, और वो फसल की हाइट से लगभग 1.5 से 2 फीट ऊंचाई पे टी आकार की खूंटियां बना देते हैं, तो हमारे जो पक्षी हैं उनमें बैठेंगे और वहां जो इल्लियों को देखेंगे उनको खा करके भी उनकी संख्या को कम कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है इनका रोकथाम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो पवन मेहता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, हम अभी बात कर रहे थे कि किसानों के लिए मक्का की फसल में कौन कौन से प्रमुख जो कीट रोग होते हैं वो चिंता का विषय बन
1: जी। मक्का में देखिए आज के समय में सबसे प्रमुख और हानिकारक जो कीट है उसे फा बोलते हैं, फाल आर्मी वर्म। एक हमारे किसान और जुड़ रहे हैं।
0: जी जी नमस्कार, स्वागत है हेलो ग्राम सभा में आपका।
8: जी बहन जी नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, नाम बताएं अपना।
8: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ, ग्राम सनोतिया जिला गुना से।
0: जी मांगीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम में, बताएं क्या सवाल करना चाहते हैं आप।
8: बहन जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तो मक्का का समय तो अब तो पकने की अवस्था में है मक्का
0: जी,
8: लेकिन अगले भविष्य में मैं कुछ अगले भविष्य की जानकारी मक्का के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि इसमें मतलब यूरिया खाद अपन को के बार डालना चाहिए, नाइट्रोजन के बार डालना चाहिए इसमें।
1: जी जी जी मांगीलाल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मक्के में हमें यूरिया खाद कब डालना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें मक्के में हमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लगभग 140 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं, तो इतने जो हम इसमें लगभग 300 किलोग्राम के आसपास यूरिया देते हैं तो उसकी आधी मात्रा हमें खेत की तैयारी करते समय डाल देनी चाहिए और आधी मात्रा को हमें दो बराबर भागों में बांट करके रख लेना चाहिए। तो जो दो बराबर भागों में हमने बांटा एक हेक्टेयर के लिए मैं बता रहा हूं यानी 2.5 एकड़ के लिए, तो उसकी आधी मात्रा हमें पहली मात्रा जो हमें डालनी है टॉप ड्रेस करना है वो जब हमारा मक्का का पौधा निहाई स्टेज में आ जाता है हमारे घुटने के बराबर हो जाता है उस समय हमें डालना चाहिए, और जो दूसरी फिर आधी मात्रा है जिस समय हमारे मक्के में फूल आने वाली अवस्था आ जाती है उस समय हम डालें, तो ये सही अवस्थाएं होती हैं हमारा नाइट्रोजन यानी यूरिया डालने की।
0: बिल्कुल, आखिर में डॉक्टर साहब अभी हमने आप से बात की खरीफ फसलों में समसामयिक कार्यों के, तो इस विषय से संबंधित कोई ऐसी बात या जानकारी जो इस दौरान चर्चा के दौरान हमसे छूट गई हो और किसानों के लिए जानना बहुत जरूरी है तो संक्षेप में जानना चाहेंगे।
1: किसान भाइयों के लिए जैसा कि एक छोटा सा मक्के में आपने पूछा था तो मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं कि फॉल आर्मी वर्म काफी हानिकारक कीट है, उसके लिए हमें जो है कंट्रोल के लिए एक तो हमें लाइट फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें और साथ में हमें जो है इमामेक्टिन बेंजोएट नामक दवा से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सही समय पे हमें देना चाहिए। अब रही बात किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे अरहर या तुअर लगा रखे हैं वो भी हमारी बहुत ही दलहन की हमारी बहुत ही मुख्य फसल है, तो उसमें भी कई बार आप देखते हैं कि अधिक पानी के कारण हमारी फसलों में जो है पीले रंग के चकत्ते आने दिख जाते हैं, हमारी पत्तियां पीली रंग की होने लगती है फिर भूरे रंग के होकर के धीरे धीरे वो समाप्त होने लगती है जिससे हमारे पौधे का बढ़वार खत्म होने लगता है। तो उस ऐसा यदि हमें दिखता है खेतों में तो हमें कार्बंडाजिम 1 ग्राम या मोनोक्रोट जो हमारा मैंकोजिब M45 है उसका हमें 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर देना चाहिए जिससे हमारा इनका रोकथाम हो सकती है।
0: बिल्कुल, तो किसान साथियों याद रखिए समय पर किए गए कृषि कार्य ही फसल को मजबूत बनाते हैं और हमें अच्छी पैदावार दिलाते हैं, इसलिए हमें अभी से कदम उठाने होंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके खेत और फसलों दोनों के काम आएगी, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ सवाल जवाब का नहीं है, किसानों की अपनी ग्राम सभा है जहां हर सवाल हर आवाज मायने रखती है। इसी के साथ धन्यवाद सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमें फोन किया या करने की कोशिश कर रहे थे। आभार डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह जी आपका भी, आप यहां आए और इतना कीमती समय हमें दिया, किसानों के भी आपने लगभग सभी सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। किसान भाइयों ये था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जिसमें हमने विषय रखा था खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ थे डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह जी, कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा जी ने, कर्तव्यस्थ अधिकारी थे अमृतांश नायक, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें सहयोग दिया था तकनीकी प्रशांत गोस्वामी और राजू वासे ने, और उद्घोषक के रूप में हमारे साथ थे जावेद खान, और सूत्रधार के रूप में आपके साथ थी मैं यानी राधा चौरे। अब भी आ गया, नमस्कार, राम राम।
9: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में।
10: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जल संरक्षण में भागीदारी की बढ़ती भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज डिवीजन के प्रोग्राम डायरेक्टर युगल किशोर जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
11: पानी सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जल की कमी, भूजल का लगातार गिरता स्तर, जलवायु परिवर्तन और पानी की दिनों दिन बढ़ती मांग जैसी चिंताओं ने जल संरक्षण को भारत समेत दुनिया भर की सरकारों के लिए बड़ी प्राथमिकता बना दिया है। जल संरक्षण में जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी यानी कि JSJB कार्यक्रम लॉन्च किया था, जो भारत में जल स्थिरता के लिए समुदाय आधारित एक पहल है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आज हम इस पहल के पिछले 2 सालों के सफर, जल संरक्षण में जन भागीदारी की बढ़ती भूमिका, और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री युगल किशोर जोशी। जोशी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
12: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए।
11: मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि भारत के जल संरक्षण प्रयासों में जन भागीदारी अहम क्यों है?
12: पानी, जैसा हम सब जानते हैं कि एक संसाधन ही नहीं है, बल्कि जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और मानवीय गरिमा का आधार है। और हमारे जैसे विशाल देश में, 140 करोड़ से अधिक आबादी के देश में और इतनी विविधता भरे देश में जल संरक्षण का कार्य, खासकर जब हम अभी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, चातुर्मास की बात अब नहीं होती, अब 9 या 10 दिन में बारिश का पानी आ जाता है और पानी का पोल्यूशन के बारे में हर कोई चिंतित है, जानता है, तो ऐसे में यह जल संरक्षण का कार्य केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए जन भागीदारी नितांत आवश्यक है। जन भागीदारी मतलब समुदायों की भागीदारी हो, स्थानीय संस्थाओं की हो, पंचायतों की हो, नागरिक समाज की हो और हर नागरिक की सक्रिय सहभागिता हो। हमारी भारत की हाल की ही जो जल यात्रा रही है, खासकर 2014 के बाद, उसमें भी ये जल यात्रा सुनिश्चित करती है कि हम सिर्फ अब ढांचागत निर्माण, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जन आधारित जल सुरक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं।
11: जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से पिछले 2 सालों में जल संचय जन भागीदारी जो ये पहल, इसमें कितनी प्रगति हुई है? इसके अंतर्गत कितने स्ट्रक्चर्स बने हैं जो जल संचय के लिए, जल संरक्षण के लिए बनाए गए हैं?
12: जैसा कि आप जानती हैं, 6 सितंबर 2024 से यह आरंभ हुआ था और पिछले साल 2025-26 में बहुत व्यापक रूप से यह पहल आगे बढ़ाई गई और इसके केंद्र में समुदाय के स्वामित्व की भावना है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें बहुत कम लागत वाली जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात है, जिसको हिंदी में भूजल पुनर्भरण कहते हैं, या वाटर कंजर्वेशन की जो संरचनाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, और जो निष्क्रिय बोरवेल हैं, जो बोरवेल अभी सूख गए हैं, उनको दोबारा से रिवाइटलाइज करना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वैज्ञानिक समाधान अपनाना, इन पर जोर दिया गया था। तो जैसा कि मुझे अनुमान है, जो JSJB के अंतर्गत जो पहला राउंड अभी 2 साल का हुआ है, 27 लाख से अधिक इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से मई 2026 तक करीब करीब 1.5 करोड़ से अधिक की संरचनाएं, और अभी सितंबर के शुरुआत तक के जो आंकड़े आए थे वो था कि 1.58 करोड़ से अधिक जो कृत्रिम भूजल का रिचार्ज है, उस तरह की संरचनाएं रिपोर्ट की गई। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि ये जागरूकता का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज इसको बहुत बड़े ढंग से अपना रहा है और ये एक जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ चुका है।
11: इस साल जून में जल संचय जन भागीदारी को एक और पहल, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसके साथ जोड़ा गया और अब ये अभियान जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन कहलाता है। तो अभियान का दायरा बढ़ाने के पीछे क्या सोच थी?
12: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी शायद भारतवर्ष के इतिहास में अकेले और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जल को लेकर के एक चहुमुखी, एक होलिस्टिक कंजर्वेशन और डेवलपमेंट, या वाटर मैनेजमेंट अगर मैं कहूँ, उसकी ओर ध्यान दिया, चाहे पिछले 25 वर्षों में उनका गुजरात का मुख्यमंत्रित्व का काल हो या पिछले 12 सालों से भारत के प्रधानमंत्री का। पानी और जल संरक्षण उनकी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। तो जो जल संरक्षण के प्रयास हैं, यह 2014 से ही भारत भर में उनके विजन से आगे बढ़ते रहे हैं और इन वर्षों में हमने देखा है कि बहुत तरह की नई नई इनिशिएटिव्स उन्होंने आरंभ किए, चाहे अटल भूजल योजना हो, चाहे नमामि गंगे प्रोग्राम हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जल जीवन मिशन हो। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक वर्ष 2019 में उन्हीं के नेतृत्व और प्रेरणा से जल शक्ति अभियान शुरू हुआ था, जो बहुत तरह की चीजों को, जिनमें कि जलागम विकास होता है, तालाबों का पुनरुद्धार होता है, जल स्रोतों की मरम्मत और जीर्णोद्धार, वर्षा के पानी का संचयन और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ट्री प्लांटेशन और जो पारंपरिक हमारे ट्रेडिशनल वाटर टेक्नोलॉजीज हैं उनको कैसे पुनर्जीवन दिया जाए, इन सब चीजों पर यह कार्यक्रम जल शक्ति अभियान 2019 में आरंभ किया गया था। उसके बाद अगले साल ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन के रूप में और अधिक सशक्त हुआ। इसमें बेसिकली 5 मोटी मोटी चीजों पर ध्यान था कि कैसे पानी का कंजर्वेशन किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को दोबारा से रिवाइटलाइज करें, बोरवेल्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना, ये सब चीजें लेकर के ये चीज हमने उस समय से करनी आरंभ की थी। अब ये जन भागीदारी से इसे जोड़ देने से ये और अधिक सशक्त बनकर सामने आता है। इसमें टेक्नोलॉजी भी है और लोगों का जुड़ाव भी है।
11: जल सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें समुदाय की भागीदारी हमारे लिए यानी कि भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं है। सदियों से हमने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में बावड़ी, टैंक, तालाबों और जोहड़ों के जरिए पानी जमा करने और बांटने के तरीके विकसित किए गए हैं, जो कि दिखाते हैं कि पानी की सुरक्षा हमेशा एक सामूहिक जिम्मेदारी थी। तो JSJB पहल के क्रियान्वयन और उसकी सफलता में हमारी पारंपरिक प्रणालियों और स्थानीय ज्ञान ने क्या भूमिका निभाई है?
12: कुछ वर्ष पहले मैंने इस पर अध्ययन किया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के लगभग प्रत्येक हिस्से में ट्रेडिशनल वाटर टेक्नोलॉजी या जो पानी के प्रबंधन की जो मैं कहूंगा लोकलाइज्ड टेक्नोलॉजीज हैं, वो सदियों सदियों से चलती रही हैं। चाहे आप उत्तराखंड जाइए, चाहे आप लद्दाख जाइए, या आप अरुणाचल चले जाइए, या अंडमान जैसी जगहों पर जाइए, हर क्षेत्र ने अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के हिसाब से इस तरह की टेक्नोलॉजी पुनर्जीवित की। अब अफसोस की यह बात है कि जब हमने पूरी तरह पाश्चात्य जो ये वाटर कंजर्वेशन की चीजों का खासकर यह भावना आ गई कि सरकार ही इन सब का प्रबंध करेगी, तो लोग इससे विमुख हो गए जो प्राचीन टेक्नोलॉजी थी। अब यह जो नया JSJB अभियान है, इसमें कोशिश यह है कि पारंपरिक टेक्नोलॉजी को भी न भुलाया जाए, उनका भी जहां जहां हो समुचित उपयोग किया जाए और उनका सशक्तिकरण नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाए। देखिए, एक बात बहुत साफ है इस देश में कि बिना जन भागीदारी के कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। वो हमने स्वच्छ भारत अभियान में भी देखा, वो हम जल जीवन मिशन में भी देख रहे हैं, वो हमने आजादी के आंदोलन में भी देखा था। तो इस मिशन में हम दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, पारंपरिक टेक्नोलॉजी को भी और नई टेक्नोलॉजी को।
11: इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूत जल डेटा गवर्नेंस की जरूरत पर जोर दिया और डेटा इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के उपयोग की भी सिफारिश की। इसके साथ ही इसी साल जून में जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने देश में जल संसाधन प्रबंधन के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष आधारित एप्लीकेशन के इस्तेमाल को मजबूत करने के लिए एक MOU पर भी हस्ताक्षर किए। तो पारंपरिक जो हमारी जानकारी है उसके साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी समुदायों को पानी बचाने और उसके प्रबंधन के प्रयासों के लिए कितनी जरूरी है और इसमें कैसे मदद कर सकती है?
12: देखिए, जैसे अपने घर का हम बजट बनाते हैं, घर में कितनी कमाई हो रही है और घर का खर्चा कितना है, इसी तरह भविष्य में अगर हमें क्लाइमेट चेंज और बाकी चीजें देखनी है तो हमें देर सबेर पंचायतों में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में या फिर राज्यों में या फिर पूरे देश का अंततः वाटर बजट बनाना पड़ेगा। अब अगर हम जब वाटर बजट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक ब्लॉक या एक पंचायत के पास कितना पानी उपलब्ध है। पानी की उपलब्धता सतह पर भी हो सकती है, पानी की उपलब्धता ग्राउंड वाटर पे भी होगी और पानी की उपलब्धता वर्षा के जल से भी हो या जो भी और तरीकों से पानी आ सकता है। इसके लिए कि हमें सही सही क्वांटिटी पानी की अवेलेबिलिटी की पता हो, बिना टेक्नोलॉजी के प्रयास के नहीं हो सकती। आपने बहुत सुंदर बात करी इसरो और बाकी चीजों की, कई तरह तो भुवन आदि पर ये सारी जानकारियां उपलब्ध भी हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल क्या है। जल शक्ति मंत्रालय के कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह की सूचना को पब्लिकली मुहैया कराते हैं। दूसरा पहलू है कि कितने जल का कहां पर प्रयोग हो रहा है। मैं अपने घर में कितना इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे घर तक कितना पानी आ रहा है पीने का, मेरे लिए जो पशु हैं किसानों के लिए उनमें कितना यूज हो रहा है, कृषि में कितना यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में कितना यूज हो रहा है, जब तक इस सब का पुख्ता डेटा हमारे पास नहीं होगा, जो कि मेरा ख्याल है डेटा कन्वर्जेंस से नीचे से ऊपर तक सही डेटा आने से, टेक्नोलॉजी आईओटी बेस्ड सेंसर सिस्टम से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें करना पड़ेगा। उसके बिना हम वाटर सिक्योरिटी या वाटर मैनेजमेंट की बात नहीं कर सकते। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारा पानी के बारे में जो डेटा है वो न सिर्फ सही हो बल्कि समय पर भी हमें मिले ताकि उसके हिसाब से प्लानिंग की जा सके।
11: जोशी जी, हम चाहेंगे कि आप जीएसजेबी पहल से जो जुड़ी हुई कुछ सफलता की कहानियां है वो हमारे साथ साझा करें। इन दो सालों में जब से ये पहल शुरू हुई है, विभिन्न राज्यों में ये चल रही है, किस तरह की सफलता की कहानियां आगे आई हैं?
12: यहाँ पर दो चीजें तो मैं कहना चाहूंगा। पहली बात कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे जमीनी स्तर पर लोग कैसे आत्मसात करते हैं। जहां तक जल संरक्षण अभियान की बात है, ये 2019 से ही जब मैं आरंभ में भी इससे जुड़ा था, मेरा ये देखने में आया है कि कई क्षेत्रों में, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की समस्या है, गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं या इवन लद्दाख के भी कुछ क्षेत्र हैं, वहां पर महिला सरपंचों ने खासकर इसमें बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने गांव वालों को जागरूक किया है, छोटे छोटे चेक डैम्स बनते हैं, कई तो नए जो नवयुवक सरपंच हैं उनकी प्रेरणा से जानवरों के लिए अलग तालाब बन रहे हैं, मनुष्यों के पानी के इस्तेमाल के लिए अलग बन रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन फेज टू के अंतर्गत अब लोग इस पर जागरूकता लेने लगे हैं कि कैसे जो यूज्ड वाटर है जो किचन से या आपके बाथरूम से आ रहा है उसका कैसे अलग प्रबंधन करें, सोफ्ट की व्यवस्था करें ताकि आपका भूजल जो है वो प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो अगर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेटा दिया था कि लाखों चेक डैम्स बन रहे हैं, लाखों बावड़ियां बन रही हैं, एक तो बड़ा आता, मैं आपको नीति आयोग का ही उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में हमने एक सरोवर समृद्धि करके एक कार्यक्रम आरंभ किया ब्लॉक के सहयोग के साथ
11: जी।
12: एक साल से कम समय में बहुत कम लागत में गांव वालों की ही मदद से हम लोगों ने करीब 800 के आसपास एक एकड़ से बड़े साइज की वाटर बॉडीज का पुनरीकरण किया। इस तरह की स्टोरीज अगर आप जाएंगी तो पूरे देश भर में आपको मिल जाएंगी।
11: जोशी जी, पानी बचाना महज सरकारी अभियानों से जुड़ी कोई चीज ना होकर नागरिकों और समुदायों के लिए रोजमर्रा के व्यवहार का एक नियमित हिस्सा कैसे बन सकता है?
12: एक तो काम कहते हैं IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन
11: जी।
12: जब तक हम अपने बच्चों को स्कूल में या घरों में ही पानी के मूल्य के बारे में जागरूक नहीं करेंगे कि पानी अनमोल है, जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इसकी शुरुआत तो घर से ही हो जाती है कि हम बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें एक उदाहरण बनकर दिखाएं कि पानी का बेजा इस्तेमाल न करें या अपव्यय न करें। यही बात खेती में लागू होती है कि कैसे मैं कृषि में वाटर यूज एफिशिएंसी ला सकूं। सरकार इतने इंसेंटिव देती है, आप पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात है या स्प्रिंकलर से सिंचाई की है या ड्रिप इरिगेशन है, बहुत तरह की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। तो सरकारी जो इंसेंटिव है, सरकारी जो योजनाएं हैं, इनके साथ कैसे हम गांव वालों को, कैसे एक एक जन को जोड़ सकें, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज होगी लोगों को प्रेरित करने की। और सबसे बड़ी बात तो पानी का मोल पहचानने की ही है।
11: पिछले दो साल में जल संचय जन भागीदारी जो एक अभियान है काफी सफल हुआ है, हमने अभी आपसे बात की, इसने काफी बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन फिर भी देश में जन भागीदारी के अंतर्गत जल संचयन और प्रबंधन के प्रयासों को बड़े पैमाने पर फैलाने में क्या अब भी कुछ बाधाएं हैं और ये किस तरह से इन्हें पार किया जा सकता है?
12: सबसे बड़ी बाधा तो मुझे लगता है अब हमारा जो पंचायत स्तर पर है वहाँ लोग कैसे, जो पंचायत स्तर पर जिनके हाथों में नेतृत्व है या जो जिले स्तर पर जो अधिकारी हैं, कैसे वह इसको आम जन से जोड़ते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2014 से पानी से लेकर जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, उनसे एक बहुत बड़ा विकास का संदेश निकलता है। वो संदेश ये है कि जो जल संरक्षण है वो केवल पर्यावरण का ही सवाल नहीं होता। आपके पास पानी का अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो ये आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार करता है, ये आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है, ये सामाजिक न्याय देता है, ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहित करता है और महिला सशक्तिकरण का भी यहाँ पर ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। इसलिए ये सारे जो कार्यक्रम है अगर आप मिला जुला कर देखें तो ये सिद्ध करते हैं कि जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं तब परिणाम कहीं अधिक मजबूत और स्थायी होते हैं।
11: युगल किशोर जोशी जी, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।
12: बहुत धन्यवाद।
10: अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण में भागीदारी की बढ़ती भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के वाटर एंड लैंड रिसोर्स डिवीजन के प्रोग्राम डायरेक्टर युगल किशोर जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
13: सुर्खियों में
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार श्रोताओं, डगर विकास की ये कार्यक्रम आज केंद्रित है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन पर। भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत संचालित 8 मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण की रक्षा करना, उसका पुनर्वास करना और देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वनों को बढ़ाना है। इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हरित भारत मिशन भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई है। ग्रीन इंडिया मिशन के संदर्भ में जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं नागदा से प्रकाश जैन।
1: श्रोताओं नमस्कार। हमने विकास तो बहुत किया पर एक चीज मानव भूल गया, वो है प्रकृति। हमने सड़कें बनाई, बिल्डिंगें बनाई पर पेड़ काट दिए। नतीजा क्या हुआ? गर्मी बढ़ गई, बारिश कम हो गई और हवा खराब हो गई। इसी समस्या को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया है। इस मिशन के 4 बड़े लक्ष्य हैं: हरा भरा भारत, देश में 33% हरियाली लाना है। अभी भारतवर्ष में 24% हिस्सा ही ऐसा है जहां पर हरियाली है। और इसमें एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आंकड़ा भी, इसमें भी जो बढ़ोतरी हुई है वो पिछले कुछ सालों में हुई है। इसके पहले जो देश में हरियाली का प्रतिशत था वो 23% था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ माह के नाम अभियान का शुभारंभ करने के बाद से ही लगातार आम जनमानस पर्यावरण को हरा भरा रखने में और पेड़ लगाने की श्रृंखला में जुटे। और इसका नतीजा हुआ कि वर्तमान में अब भारत 24% हरियाली वाला देश हो गया है। बिगड़े जंगल को सुधारना सिर्फ एक पेड़ नहीं लगाना बल्कि जो जंगल खराब हो गए हैं उन्हें फिर से हरा करना, ये इस मिशन का दूसरा बड़ा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है कार्बन कम करना। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। चौथा है आदिवासियों को रोजगार। जंगल में शहद, आंवला, तेंदुपत्ता जैसे चीजों को स्थानीय लोगों को रोजगार देना, यह भी एक लक्ष्य इस मिशन में शामिल किया गया है। सरकार इसको लेकर गंभीर है और इसको लेकर कई योजनाएं सरकार ने शुरू की है, जैसे एक पेड़ माह के नाम अभियान। 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य इस अभियान के तहत लिया गया है। सरकार ने प्रत्येक शहर में एक हरित वन हो, इस उद्देश्य को लेकर नगर वन योजना का शुभारंभ किया है। जंगल के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड सरकार ने रिजर्व किया है। छत्तीसगढ़ में तो विशेष काम हो रहा है, हमारे सरनगढ़ क्षेत्र में भी सामुदायिक वनीकरण चल रहा है। मित्रों, किसी भी लक्ष्य को पूर्ति करने में अकेली सरकार सहायक नहीं हो सकती। सरकार उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रोडमैप तय कर सकती है, लेकिन उस रोडमैप पर निरंतरता के साथ लगातार काम करने का काम आम जनमानस को करना पड़ेगा, तभी सरकार की कोई भी नीति सफल हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इस महानतम अभियान में हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं। तो मित्रों, कम से कम हम अपने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं। घर में पीपल, नीम और तुलसी जैसे पौधों को भी हम लगा सकते हैं। जितना हो सके उतना प्लास्टिक का उपयोग कम करें। कपड़े को थैले को अपनाएं। हम अगर बाजार जाते हैं तो कपड़े के थैले को लेकर जाएं ताकि बाजार से कोई भी सामान हमको पॉलिथीन में नहीं लेना पड़े। पानी बचाएं, क्योंकि पानी है तो पौधा है, इसलिए हमको पौधारोपण के साथ साथ पेड़ लगाने के साथ साथ पानी बचाना भी आवश्यक है। अंत में मैं यही कहूंगा, ग्रीन इंडिया मिशन सिर्फ एक योजना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी जिम्मेदारी है। हरा भरा रहेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। धन्यवाद। जय हिंद।

0: श्रोताओं, आपने जाना ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। इस मिशन के बारे में हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं। इस मिशन के तहत स्थानीय समुदायों, ग्राम वन समितियों और पंचायतों को वनों के संरक्षण और प्रबंधन में सबसे आगे रखना है। इसमें केवल अलग अलग जंगलों पर ध्यान न देकर पूरे भूदृश्य जैसे बंजर भूमि, कृषि भूमि और जल ग्रहण क्षेत्र के एकीकृत विकास पर जोर दिया जाता है। यह मिशन वनों के संवर्धन के साथ साथ स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीण समुदायों के लिए गैर इमारती वन उपज के जरिए रोजगार और आय के साधन पैदा करता है। आइए इस मिशन के बारे में किस प्रकार से कृषि में स्टार्टअप किया जा सकता है जानते हैं कृषि महाविद्यालय इंदौर के डीन डॉक्टर भरत सूद से।
1: नमस्कार किसान भाइयों, अभी मुद्दा ये चल रहा है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी नौकरी को लेकर के काफी परेशान रहती है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का कहना है कि हमारे देश के युवा जितने भी हैं वो नौकरी मांगने वाले न होकर के नौकरी दाता बने। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कृषि महाविद्यालय इंदौर के अधिष्ठाता के तौर पर कि जो भी देश में शिक्षा प्रणाली चल रही है उस शिक्षा प्रणाली में हमारे देश में हमारे जो कृषि महाविद्यालय और कृषि विषय के छात्र हैं उन छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है। उन छात्रों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे छात्र हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो कृषि के क्षेत्र में देश में योगदान देने के लिए अपना कदम रखे हैं। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान और कृषि से संबंधित जितने भी उद्योग अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी उद्योग हैं वो 90% कृषि आधारित होते हैं और कृषि में अपार संभावनाएं हैं। कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि अगर आप स्टार्टअप्स बनाना चाहें तो कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप्स की अपूर्व संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं में जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आप देखेंगे बड़े बड़े होटल्स में, मॉल्स में या अलग अलग जगह पे आप जाएंगे तो आपको खाने की अलग अलग वेराइटियां मिलती हैं। उन वेराइटियों में जैसे मशरूम का हो गया तो आप बहुत आसान तरीके से हमारे महाविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह लेकर के और आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। आगे अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो आप पादप रोग के चिकित्सक के रूप में भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने जो चिकित्सक हैं इंसान के रूप में दवाई देते हैं तो हम लोग जाते हैं तो उनसे लेते हैं तो उस संबंध में आप एक प्लांट हेल्थ के रूप में भी अपना चिकित्सक का काम करा सकते हैं। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में अनेक स्टार्टअप्स की योजनाएं हैं। आप देखेंगे और सोचेंगे तो आपको तमाम तरह की चीजें निकल करके आएंगी बीच बीच में। बस आपको जागरूक होना है, मन से चीजों को सोचना है। ऐसा नहीं है कि हम कृषि शिक्षा को पढ़ लिए और जा करके कोई काम कर रहे हैं। आप खेती की बात करिए, खेती की बात में आप ले लीजिए स्टार्टअप्स के रूप में। आप देखिए बहुत से ऐसे हमारे IITian हैं और MBA जो मैनेजमेंट कोर्स किए हुए हैं उन लोगों को आप देखेंगे कि अमेरिका में और बाकी दूसरी जगहों पे जा करके ढेर सारे चीज कर रहे हैं। यहाँ पे आ करके नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी का आपका चल रहा है, डेयरी में भी आप काम कर सकते हैं। डेयरी में ऐसा नहीं है कि केवल पशुपालन ही करना है, पशुपालन के साथ में पशु से जो मिल्क प्रोडक्ट के रूप में चीजें निकल के आती हैं उस मिल्क प्रोडक्ट से बाजार में आप देखिए तमाम तरह की जो है प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो आप अपने यहाँ बेहतर लोगों के मन में आकर के और उनके विश्वास को लेकर के और शुद्ध प्रोडक्ट तैयार करके और अपना डेयरी का भी कर सकते हैं, पिगरी हैं, पोल्ट्री हैं, इस टाइप की चीजें भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये अगर कोई संस्था चला करके कोई आदमी प्रोडक्ट कर रहा है, कोई ये बना लिया है तो उससे बायबैक कर सकते हैं। उनके जो मिल्क हैं, उनके जो पोल्ट्री के मुर्गी हैं, अंडे हैं या मशरूम हैं, इनको लेकर के आप प्रोसेसिंग यूनिट भी बना सकते हैं। स्टार्टअप्स के कई हैं। आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि उस जगह पे स्टार्टअप्स तैयार कर रहे हैं तो वहां की तमाम तरह की जो संभावनाएं हैं कि जो स्टार्टअप्स या जो प्रोडक्ट्स आप बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की जहां आप अपनी यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं उस जगह पर कितनी डिमांड है इसको भी देखना है। इसके साथ ही आपकी इच्छा क्या है, आप मन से क्या चाह रहे हैं कि किस क्षेत्र के स्टार्टअप्स को लेकर के आप आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि मन में अगर आपके विश्वास है, भाव है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित मान करके चलिए कि अगर उस क्षेत्र का स्टार्टअप्स अगर आप बनाएंगे और उसमें अगर आप काम करेंगे तो आप दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी ही करते जाएंगे, अनमने से नहीं। और दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों को और इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को कि अनमने से कभी भी स्टार्टअप या कोई उद्योग या धंधा शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में भाव है कि हम इस क्षेत्र में जाएं तो उसी क्षेत्र में जाएं, देख करके न जाएं कि कोई दूसरा व्यक्ति एक किसी विशेष क्षेत्र में कर रहा है तो उस क्षेत्र में जाएं। तो ये आप लोगों की अपार संभावनाएं हैं स्टार्टअप्स के क्षेत्र में। हमारे कृषि महाविद्यालय में अगर किसी को जरूरत हो तो हमारे यहाँ इससे संबंधित वैज्ञानिक भी हैं और हम लोग काम भी कर रहे हैं कि भारत सरकार की ढेर सारी स्किल इन्हांसमेंट की योजनाएं हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति में तमाम तरह के कोर्सेज हैं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्किल इन्हांसमेंट के माध्यम से हम लोग अपने विद्यार्थियों को सिखाते भी हैं, केवल पढ़ाते नहीं हैं, उनको खेत में लेकर के हम सिखाते भी हैं।

सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हिमालय की गोद में। इस फिल्म का एक गीत, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफी, उषा टिमोथी और साथियों की आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और लीजिए सुनिए ये गीत।

हिमालय की गोद में ये गाना भी आपने सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्री 420 का एक गाना, आवाज है लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफी और साथियों की। गीत शैलेंद्र ने लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: 2 टीम में करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
3: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
3: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1 करोड़ 19 लाख किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा, उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
7: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने
9: की मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
11: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसके एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबंध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
12: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया और भारत के पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satya Niketan area of Delhi. Three persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a three-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines four-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China Masters in Shenzhen. And now the news in detail. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satya Niketan area of Delhi this afternoon. Three persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said, relief and rescue operations are continuing on a war footing. Ms. Gupta said, those found responsible for the incident will not be spared. Whether it is the building owner or any official found responsible, guilty will not be spared. It was an old building and was undergoing construction and renovation, and excavation in the basement reportedly caused a pillar to shift, leading to the collapse. The building was being used as a paying guest accommodation with children inside. All agencies are working round the clock with saving lives a top priority. The rescue operation will continue with full resources and all officials are present at the site. Later, the Chief Minister visited All India Institute of Medical Sciences AIIMS Trauma Center to meet the individuals undergoing treatment at the hospital. She instructed the team of doctors to ensure every necessary medical assistance. Ms. Gupta said the Delhi government is also in contact with the families of victims. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Mr. Sandhu directed all concerned agencies to work in complete coordination to ensure swift rescue efforts. Talking to Media Inspector General of the National Disaster Response Force, N.S. Bundela said that two NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site.
14: Two NDRF teams comprising around 70 personnel immediately reached the spot and are actively engaged in the rescue operation. Canines, cutting tools and other technical equipments are also being deployed.
13: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. The Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. Prime Minister Modi in a social media post said that authorities are working at the site and assisting those affected in the mishap. The Prime Minister extended his condolences to those who lost their loved ones and prayed for the speedy recovery of the injured. Union Home Minister Amit Shah said he spoke with the Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and the Director General of NDRF and took stock of the situation. Union Health Minister J.P. Nadda also spoke with the Delhi Chief Minister and took stock of the situation. Mr. Nadda showed all possible support from the Ministry of Health. He also directed the Director of AIIMS and Central Government Hospitals to provide all possible medical support and assistance. Defense Minister Rajnath Singh has said in this hour of sadness, his thoughts are with the bereaved families. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a three-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a four-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047.
15: 2029
16: We have prepared a roadmap to make India drug-free by 2029. We have identified the period from 2026 to 2029 as a mission mode period with clearly defined timelines and targets. Our vision document is based on four key pillars. First, intelligence and operations-based enforcement. Second, effective control over precursors and synthetic drugs. Third, demand reduction and harm reduction. And fourth, capacity building and cooperation.
13: Mr. Shah stated that drugs worth around 1.89 lakh crore rupees

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हुई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई।

6 सितंबर 1949 को मुंबई में जन्मे राकेश रोशन, संगीतकार रोशनलाल नागरत के पुत्र और संगीतकार राजेश रोशन के भाई हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। और अब तो राकेश रोशन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है। लेकिन पिता संगीतकार रोशन के अचानक देहांत के बाद राकेश रोशन के लिए अपने करियर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को राकेश रोशन का नाम सजेस्ट किया एक्टिंग के लिए और आखिर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से राकेश रोशन की एक्टिंग की कहानी शुरू हुई।

गाना जो अभी आपने सुना अभिनेता जलाल आगा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन सपोर्टिंग रोल में थे। बतौर अभिनेता उन्होंने अधिकतर सपोर्टिंग रोल्स ही किए। सोलो हीरो के रूप में उनकी कम ही फिल्में आईं, लेकिन जो भी आईं वो भी यादगार रहीं और उनका संगीत तो सुपर डुपर हिट रहा।

0: इन दोनों ही फिल्मों में हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में गोविंदिया गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं। इनमें एक फिल्म याद आती है, फिल्म खूबसूरत। हालांकि फिल्म में टाइटल रोल रेखा का था, लेकिन राकेश रोशन और रेखा की जोड़ी ने बहुत ही कमाल अभिनय किया।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं जिनमें राकेश रोशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे राकेश रोशन खुश नहीं थे। इसीलिए 1980 में राकेश रोशन ने स्थापित की अपनी फिल्म निर्माण संस्था फिल्म क्राफ्ट और फिल्म बनाई आपके

ये फिल्म कामचोर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था और यहीं से शुरू हुआ राकेश रोशन की फिल्मों में क शब्द का कमाल। यहां से आगे राकेश रोशन ने जो भी फिल्में बनाई उनका शुरुआती अक्षर क रहा और अब तो राकेश रोशन एक ब्रांड बन गए। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान भी संभाल ली। फिल्म थी खुद

खुदगर्ज की सफलता के बाद राकेश रोशन सफलता की गारंटी माने जाने लगे। खून भरी मांग 1988 में रेखा के साथ, फिर किशन कन्हैया 90 में, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला, और इसके बाद कुछ वर्षों तक बतौर अभिनेता कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आए। लेकिन सन 2000 में बिग बैंग के साथ आए अपने बेटे को लेकर ऋतिक रोशन के साथ कहा, कहो ना प्यार है।

इस फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता को तो सभी जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फिल्म का नाम है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। इसके बाद राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी ने सफलता का एक नया मकाम हासिल किया। यहाँ ये

भी बता दें आपको कि खूबसूरत फिल्म में रेखा के साथ अभिनय करने वाले राकेश रोशन ने अपनी दोस्ती को निभाया और रेखा को कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में बहुत ही दमदार भूमिका दी। तो अब वो फिल्में जिन्होंने सफलता का इतिहास रचा, कोई मिल गया।

0: फिल्मकार राकेश रोशन पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

कई साल पहले की ये बात है। भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था?
1: नहीं, आ रहा था।
0: नहीं नहीं, जा रहा था।
1: बताता हूं बताता हूं।
0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आप।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस पुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय

0: मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said relief and rescue operations are continuing on a war footing. She said those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Talking to media, Inspector General of the National Disaster Response Force, NS Bundela, said that 2 NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Union Home Minister Amit Shah said he spoke with the Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and the Director General of NDRF and took stock of the situation. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047.
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है।
3: We have prepared a roadmap to make India drug-free by 2047.